जंगम सर्प है जग के रिया बिखमाए, बिख का मारन हर नाम है गुरगरड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मेरे सतगुर निर्मल हो।

नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिर है चल चित मनमुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछ है मित गुरमुख

तेर के अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सच्यार, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान।

गुरुमुख वेदं गुरुमुख रया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विन पाने के नाय करी जेती सिर्ख उपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता तो मैं विसर न जाई जे जुगचारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जप कीरत जगले जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न

असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पस्तार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख ठाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाहा, अखरी ज्ञान गीत गुणगाहा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारे कहन कतेबा असलू इक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद न जानिए समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहना अंत अंत ना करने देन ना अंत अंत ना देखन सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत।

ऊंचा नाव केवड़ ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अपा।

रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांसी कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करें विपूत खिंसा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कटवा जैनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चिलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किच पाया सो एकावार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साचीकार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बोला खोए लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आछिए एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िए होए इक्कीस हूं गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर च पैने जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मरन न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक

निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा कह जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते दे

केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिते नाद विनोद कोड आनंद धर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारत करिए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध तिथे करिए सुरा सिदा की सुध।

के रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरे ना ठागे जाहे, जिनके राम वसे मन माहे, तिथे भगत वसे के लो, करें आनंद सच्चा मन सोए, सत खंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पंड, जे को कथे तांत ना अंत, तिथे लो आकार, जिव जिव हुकम तिवे स्वीकार, वेखे विदसे कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत पहारा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत चित ताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल, श्लोक पावन गुरु पानी पिता, माता तरस महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाया बुरियाया वाचे तरम हदूर, करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया, जय मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल, सोदर राग आसा महला पहला, इको अंकार, सतगुरु प्रसाद, सो दर तेरा केहा, सो कर केहा, जित बै सर्व सम

दावन सुदनो पवन पानी बैसंतर दावे राजा तरम द्वारे। गावन सुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे। गावन सुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोम तेरे सदा सवारे। गावन सुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दरनाले। गावन सुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुदनो साध विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ की रतनाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे। ते तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई। ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई। सो पाता ओसा पत साहिब नानक रहन जाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा जीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा रहा। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह ना जाई तेरी तिलवड़े आई। सब सत सब तप सब चंगिया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुदवे सिद्धि किने न पाया कर्म मिले ना ही ठाक रहाया। आखन वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे पंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा। आसा मेला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आखन औखा साचा नाऊं। साचे नाम की लागे पूख उत पूख है खाए चलिए दुख। तो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए राव। साचे नाम की तिलवट आई आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलके आखन पाए वदा न हो वे काट न जाए।

जेवड आप तेवड तेरी दात। जिन दिन कर कह की रात खसम विसारे ते समझात। नानक नामे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदार प्यार।

हर हर नाम मिले तृप्ता से मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन सुरमस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित में उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजक आ गए कर तरया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया तू के कास्त हरिया रहा जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरया सिर सिर रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पौ करया उड़े उड़ आवे सह कोता पिस्ता से बतरे चरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर कल तरया जन नानक बल बल सद बल जाये तेरा अंत न पारा वरया रागासा में।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हम कुछ बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक परे बहु सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई तुद आपे सिरज सब उपाय जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जनोई आसा मेला चौथा तू करता सत्यार मैं।

कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गुआया, सुध आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

खबर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवर लै पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जति पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिनकू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लागे पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हमनी।

नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे, तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल। देहो सज्जन आशीषड़िया, जो होवे साहिब त्यों मेल। कार

छह गुर छह उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए हो कर राख वडाई तोए रहाओ रित्वे चत्या घड़िया पहरा थित्ती वारी माओवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के तेवेश राग तनाश्री मैला पहला गगन में फाल रल चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती रूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत बेरी राव सहस तव नैन नन नैन है तोय कहो सहस मूरत नन्ना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दै चानन सब में चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मुहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा है ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे जम काल सह सिल डंडा है हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर बहु कोब खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है रागौड़ी पूर्वी मैला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे नाओ सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला।

चंद सूरज दो गुफे न देखा, सुपने सौन न खाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हों केवड आखाना, साचा निरंकार।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब एक तू होर जिया के तेलो, नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच

पर निंदा परमल मुख सुदी अग्न क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ रस सोयना।

रस रूपा कामण रस परमल की वास रस कोड़े रस तेजा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कह कट नाम निवास जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले जिन हृदय रहा समाए तिन का क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए श्री राग महला पहला अमल गलोला कूड़ का दित्ता देवनहार मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार नानक साचे को सच जान जित सेवे सुख पाये तेरी दरगह चले मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए थाओ नाओ नीर चंगे आईया सत परमल तनवास तामुख हो वै उजला लख दासी इक दात दुख तिसे पे आखिए सुख जिसे ही पास सो क्यों मनो

कागज कर सार पाओ कलम कर चित लिखारी गुर पुछ लिख विचार लिख नाम सलाह लिख लिख अंक न पा।

तीर कमान सांग तेग बंद गुण ताक, वाजा ने जा पक्षियों प्रगट कर्म तेरा मेरी जात। बाबा होर चढ़ना खुशी खुआर, जित चढ़े तन पीड़िए मन में चले विकार। रहाओ कर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार। हुक्म सोई तुद पावसी होर आखन बहुत अपार। नानक सच्चा पाप सा पूछ ना करे विचार। बाबा होर सोना खुशी कुआर, जित सुत्ते

का अग्रवास तन पास अक्षर तीर्थ का मुख टिक्का तित कप मत विगास ओत मत्ती सालाहना सच नाम गुणता।

साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, गुर हर ध्यान निहाल। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोहे तो गुर कीरत दरियाओ। जे किस पा

सच मिलै सच उपजै सच में साथ समाए सुरत होवे पत उगवे गुर बचनी पौ खाए नानक सच्चा पातशाह आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला पली सरी जे उब

प्यार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार तिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

आप सुजान ना पुल्लई सच्चा वद किरसान पहला तरती साध के सच नाम दे दान नौनिध उपजे नाम एक कर्म पवे निशान गुर को जान न जानई क्या किस चज अचार अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर चोआ चंदन बहु कणा पाना नाल कपूर जे तन कंतना भावई ता सब अडंबर कूर सब रस पोगन बाद है सब सिगार विकार जब लग शब्द ना पेगी है क्यों सो है गुरुद्वार नानक तन सो

निरोध कर्म मिले सच पाए गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार सच मिले गुरमत पल्ले पाए सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्जे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर अवगुण फिर लागू भय पूर्व जावे तूर बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे।

निर्मल मेला ना किया शब्द रते पत होए। इ मन साथ संतोखिया नदर करे तिस माहे

ओ बेपरवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार लख सियाणप जे करे लक्ष्यो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नावे दुख संताप हर जप जिये रे।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभ सेव।

तीसरा रोग वड्डा मन माहे क्यों दर्गे पत पाये जहाँ हर नवसे मन माहे गुर मिले सुख पाये अगन मरे गुण माहे मन रे एनिस हर गुण सहारे।

मन में माणिक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई दया करे हर हीर श्री राग महला पहला परने पाए ना विजवे जे पवे दिसंतर देश।

मिल सत्संगत हर पाए गुरमुख हर निविलाए आप गया सुख पाया मिल सलल सलल समाए जिन हर हर नाम न चेत्यो सो अवगुण आवे जाए जिस सतगुरु पुरख न पेट्यो सो पाउ जल पचे पचाए ए मानक जियो निर्मूल है क्यों कौडी बदले जाए जिना सतगुरु रस मिले से पूरे।

कैसी वस्त विसाही है, जैसी निभ है नाल अग्गैसा उस जान है, लैसी वस्त समाल पाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर ले।

मन के शान हर हृदय जमाए ले, क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया। पित सुतो सगल कालत्र माता, तेरे हो है ना अंत सखाया। रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे, इन तज आत्मे होए त्याई। जप तप संयम हो है जब राखे, कमल बिकसै मद आश्रमाई। बीस सप्ताह रो बासुरो संग्रे, तीन खोड़ा नित काल सारे। दस अठार में अपरम्परो चीने, कह नानक इव एक तारे।

उस्ताद हित पाथिया बोले क्यों बूझे जाने बुझाई आखन सुनना पौन की बानी ए मन रत्ता माया खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक त्याया ती कर रखे पन कर साथी नाव शैतान मत कट जाए नानक आखे।

जाने नाम खुदाई। जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना पढ़िए पाई। सोई काजी जिन आप तजिया।

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में आनो आपे वे खै सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई परवान।

आपे सच पावे तो सच, अंधा कच्चा कच न कच रहाओ, जाके रुख बिरख आ रहाओ, जे ही ताप ते हाथ नाओ, फूल पाओ फल लिखिया पाए,

सतगुरु मन कामना तीर्थ है, उसनु दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना, जो इच्छा सो फल पाए, नाउ पिलाई।

जिसनो आप दयाल होए सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंगत जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध पवी न बुझई अंतर लोभ विकार। लक्ष 84 परम दे परम परम होए खुआर।

मिले सेवा पवे सब थाए पारस परसे पारस होए ज्योति ज्योत समाए जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए मन पुखा पुखा मत करें

गुरमति सालाए सच हर पाया गुणतास शब्द रते से निर्मले हौ सद बलिहार जास हृदय जिनके हर वसै तित कट है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरमुख रहे लिवलाए रहाओ हर संतो देखो नदर कर निकट।

गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा त्याए मल हो मैं कदे तोए रहा। मनमुख नाम न जाननी विन नावे पत जाए, शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए। विस्ता के कीड़े पवे विच विस्ता, से विस्ता माहि समाए। तिनका जन्म सफल है जो चलने सतगुरु भाए, कुल उधारे अपना तन जनेंदी माए। हर हर नाम के आई है जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्हें गुरुमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए। ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है जिन गुरुमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा, हर पगता हर तन रास है गुरु पूछ करे वापार। हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया हर पगता अतुट पंडार। पाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करें गुरमुख नाम ते आए रहा। हर पगत हर

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याए सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच सिउ रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर शरणाई सुख लहे। अंदिन नाम त्याए रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हौ मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे होए खुआर। तातुर बाजी पलस रहे ना उरवार ना पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है।

ऐनस भगत करें दिन राती, होमे मार निचिंद वड्डे पाग सत्संगत पाई, हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई, हृदय नाम वसाए अंतर लाग ना तामस मूले, विच्चों आप गवाए नाम निधान सतगुरु।

गुर प्रसादी मन वसे हों मैं दूर करे एहो मन तावत तां रहे जा आपे नदर करे। पाई रे गुरमुखर नाम से आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट चा।

आए लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जो

मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर न जाई। रहाओ इहो शरीर माया का पुतला, विच हो मैं दुष्टि पाई। आवन जाना जम्मन मरना, मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रहे दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए।

पाई रे गुरु बिन भगत ना होए, बिन गुरु भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुरु नींद ना आवे दुखी रहन विहाए, बिन शब्द है।

अंत ना पाया जाए, कतनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चै, आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे।

पूरे शब्द समाए। आपे दे ता पाईए, होर करना किछु ना जाए। देवन वाले के हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए। जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए। जात सत संजम नाम है।

काया सादे उर तप करे विच्चों हो में न जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए गुर के शब्द जीवत मरे हर नाम वसे मन आए। सुन मन मेरे पाच सत गुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है बिख पवजल शब्द गुर तरना रहाओ त्रै गुण सभा तात है दूजा पाओ विकार पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा ने बूझे बिखिया प्यार सतगुर मिले तृप्ति छूटे चौथे पद मुक्त द्वार गुर ते मार्ग पाई।

अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए रहाओ। सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार हर का नाम मन वसे हो में क्रोध निवार मन निर्मल नाम से आई है ता पाए मोख द्वार हो में विच जग बिन सदा।

तू आप गवाए हम दिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए नाम पदार्थ मन वस्या नानक सह समाए श्री राग महला तीजा। जिन्नी पुरखी सतगुर ना सेवियो से दुखिए जुग चार कर होंदा पुरख ना पछाणिया अभिमान मुठे अंकार सतगुरु क्या फिटकिया

मन तन शीतल सास्यों सास न बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तासी है जा हर वसे मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पा।

नाम ते आए विन कर्मा पाया ना जाए पूरे पाग सत्संगत लहे सतगुर पेटे जिसे आए अंदिन नामे रत्या दुख बिखिया विच्चों जाए नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम समाए श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकायन।

सच्ची वाणी हर पाये हर स्यों रह समाए रहाओ। सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए गुरमुख एहो रंग पाये जिसनो कृपा करे र जाए। संसार एहो संसार है सुतिया रहन विहाए एक अपने पाने कड लयन आपे ले उन मिलाए। आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए। गुरमती हर पाये

सैया सुहागणी जिनको नदर करे खसम पछाणे आपना तन मन आगे दे कारवार पाया आपना हों मैं दूर करे नानक सोभावंतिया सुहागणी अंदिन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावे आपना हों कै दर पूछो जाए सतगुर सेवी पा

अन दिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए रहाओ। शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिगार, हर वर पायन कर अपने गुर के हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार, सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहारे।

गुरमती नाम सलाही है, दूजा अवर न कोई रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह विमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान। शब्द ना चीने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर ना कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमा

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मन मुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मन मुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजा।

कर पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले कर आए जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे दुख जाए जाए पूछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मिलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवरना कोए हम मूरख मुगत शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाओ सतगुर दाता हर नाम का प्रभ आप मिलावे सोए सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जेवड अवरना कोए हौ गुर शरणाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए।

कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास प्रभ, तुद्दो खाली को नहीं दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड़ ले जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास, हों तिस विटो चौखनी है मैं नाम करे परगास, मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लग्या कड़ रतन देवे प्रगास, तन वड़ पागिया जो आए मिले गुरपास, जिना सतगुरु पुरख ना पेटेओ से पागहीन बस काल, ओए फिर जोन पवाइए विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल, सतगुरु पुरख अमृत सर वड़ पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की निवलाए। श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरे हीर मिल बेदिया रंग चलू लेनाए, मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपत मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए, रहाओ मन रंगो वड़ पागियो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हों सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बे लख कोटि कर्म कमाओ, बिन पागा सतगुर नाम मिले कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास, बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास, सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले विच बोहित बैठा आए, तन तन वड़ पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा। हों पंथ दसाए।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बै रोए जो हर प्रभ पाना सोचिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जले समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए ओए वे परवा ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिर सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हौ मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पागहीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आगे ना निले ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचे पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वज दे दर सच्चे शोभा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवा।

रस भोगें खुशियां करें माने रंग अपार बोध करें फुरमाइसी वरते हुए अपार करता चितना आवई।

शोषण तुझे अनित, अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत, तिन प्रभु आप बुलाया ना तिस जात न पत, सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे दर फेर न पावे कोए, नानक रता रंग हा।

छत्र तार बाद साइया विच सहते परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थान सनंतरा तेते पाव आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लेन बिन नावे खाक रलिया कोट तेपी सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिए बिन बुझे मुगद अजान सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंगमान प्राणी तू आया लाहा लैन लगा कित कु पकड़े।

पंजवां कड़ी मौत का पाहुना काज सवारन हारे माया काम व्यापिया समझे नहीं गवार उठ चलिया पछताया परया वस जंदार अंधे तू बैठा कंधी पाहे जे हो भी पूरब लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही नै डडुरी पक्की वडन हार ले ले दात पहुत्या।

चाख चखाया चौथे पोर पया तद ही चितना आयो जिन जियो पिंड दिया साध संगत को वारिया जियो किया कुर्बान जिसते सोजी मन पई मिलिया पुरख सुजान नानक डिठा सदा नाल हर अंतर जामी जान। श्री राग महला पंजवा सबे गल्ला विसरन इको विसरना जाओ तंदा सब जलाए कै।

कहत जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुर ते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

जपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवरना कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो तिस

उपाव स्यान सगल छाड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रव्याप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस सरनाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विसरे जिन सब किछ वस कीता कर इको बाहर इको थान सनंतर आप जी जंत सब जिन

जिना सतगुर से चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजय मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया।

काल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थान अंतर रव रहे।

पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आए अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए मिल साधु मुख उजला पूरब लिखिया पाए गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचे नाए मेरे मन गुर सबदी सुख होए गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए रहाओ मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान अंतर जामी सदा।

ज्ञान। पाया लाहा लाभ नाम पूरन होए काम, कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया आप हुआ मेरवान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार, हालत पलत मुख उजने साचे के गुण।

पूरा सतगुरु जे मिले पाए शब्द निधान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान, मेरे मन प्रभ शरण।

वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा।

हर जपिए आ राजिए आठ पहर गोविंद। जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए। ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा समाए। दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए। अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार। सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार। बालक बिरद ना जानिए।

फिरै मन तन होवे शांत, एक मन एक त्याए मन की लाए भ्रांत। गुण निधान नव तन सदा पूरन जाकी दात, सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद, तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद। देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद, अकिरत कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा, मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार, सर्व कला कर था पिया अंतर जोत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरिय अंतर रख उधार, मेरे मन हर बिन अवर न कोय, प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना।

मनमुख पसना पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भक्ति नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पाया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज किते न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारिये

अठसठ तीरथ नाओ जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार रहाओ गुण गोविंद नित गावी है अब गुण कटन हार बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वड़ पागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब चूके सोग संताप रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच परीत चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ श्री राग महला पंजवा सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ मेरे मन हर पज सदा एक रंग कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद जिन चाखिया से तृप्तास्या ओह रस जाने जिंद संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान रसना उचरे गुणवती कोई न पुजे दान दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान जियो पिंड तन तिसदा हों सदा सदा कुर्बान मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार पूला मार्ग पायुन गुण अवगुण ना विचार नानक तिस शरणागति जे सगल कटा आधार श्री राग महला पंजवा रसना सच्चा सिमरिए मन तन निर्मल होए मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए मेर करे जे आपनी चसा न विसरे सोए मन मेरे साचा सेव जिचर सास बिन सच्चे सब कूड है अंते होए विनाश रहाओ साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार सदा सदा सालाही है अंत न पारावार
परवदगार साला ही है जिस दे चलत अनेक सदा सदा आरा।

संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल तोसा बंदो जी का एथे ओथे नाल गुरपुरे ते पाईए अपनी नदर निहाल करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल मेरे मन गुर जेवड़ अवर न कोए दूजा थाओ ना पोस जाए गुर मेले सच सोए रहाओ सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा सेवड़ पागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब में रहा समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा ले तराए कित मुख गुर साला ही है करण कारण समरथ से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड गुर नाल तुल ना लग गई खोज डिठा ब्रह्मंड नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन में।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब का हाथ जा उठी चलसी कंकड़ा ता कोई ना पूछे तेरी बात। पेई अरणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरै वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहागणी जिन सै नाल प्यार। श्री राज महला पंजवां कर छेवां।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधारण है, पाप सगले जाहे, हौं तिनके बलिहारणे जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर पर।

सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणी है सचो बुद्ध विवेक सर्व निरंतर रव रहा जप नानक जीवे एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजिए तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब चार मेरे साजन हर हर नाम समाल साधु संगत मन वसै पूरन होवे काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वड पागी दर्शन होए गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड अवर न कोय गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास पूरब लिखे पावणे साच नाम दे रास सतगुर सरणी आया बहुड़ नहीं विनाश हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो छूटन सा चैन आए गुर के चरण सरेवणे तीरथ हर का नाम।

रहाओ। सतगुरु विटो वारिया जिन दिता सचनाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूर्व लिखिया सेई नाम ते आए, नानक।

जे सौ शायर मेली है तिल ना पुजावे रोए, कीमत किने न पाया सब सुन सुन आखें सोए। पीर पे कामर सालक साधक सौदे और शहीद, शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद, बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद। पुछन ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले, अपनी कुदरत आपे जाने आपे करण करे, सबना वेखे नजर कर जय पावे ते दे। थावा नाम ना जानी है नावा केवड़ नाओ, जिथे वसे मेरा पासाओ सो केवड़ है थाओ। अंबड़ कोई ना सकई हो किसको पुछन जाओ, वरना वरन ना पावनी जे किसे वड़ा करे, वड़े हाथ वड़े आईया जय पावे ते दे। हुक्म सवारे आपने चसा ना तिल करे, सबको आखे बहुत बहुत लैने के विचार, केवड़ दाता आखी है।

पाखंड प्रेम ना पाईए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर सबदी सिगारिया, तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माए समाए। फिर रिसालू नौ तनो साचो मरे न जाए। नित रवे सुहागणी साची नजर जाए। साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार। निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय। अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए। जा तन कंत न राविया ता बिरथा जोबन जाए। सेजै कंत महेलड़ी सूती बूझ न पाए।

त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हाँ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यो पंखिया जाली बद्धक हाथ, गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ। बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ, सच्चो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान, जिनी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिए गुरमुख जिना ज्ञान, सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मिलाए। साजन मिले सुख पाया जम दूत मुखाए, नावे अंदर हों वसा नाव वसै मन आए। बाज गुरु गुबार है बिन शब्द बूझ न पाए, गुरमति प्रगास होए सच रह लिव लाए। तिथे काल न संचर ज्योति ज्योत समाए, तू है साजन तू सुजान तू आपे मेलनहार। गुर शब्दी साला ही है अंत ना पारावा।

मुख झूठे झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए, बिन अब शब्द न मांझिए साचे ते सच होए, मुंदे गुणहीनी सुख के है पिर रलिया रस मानसी साच शब्द सुख ने है, रहाओ पिर परदेसी जेसी है तन वांडी चूरे, ज्यों जल सोड़े मछली करण पलाव करे, फिर पावे सुख पाईए जा आपे नदर करे, फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल, तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल, सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल, कामन काम ना आवे खोटी अवगणियार, ना सुख पेई है सहुरे झूठ जली बेकार, आवन

विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म न छुटसी कह सुन आख वखान सब गुणवंती आखिए मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं पावे प्रव सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधिए तीरथ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिन साचे क्या तास जेहा रा दे तेहा लुणे बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुणदासी सुख होए अवगण त्याग समाये गुरमत पूरा सोए रहाओ विन राशि वापारिया तके कुंडाचार मूल न बुझे अपना वस्त रही कारबार विन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ियार लाहा एनस नौतना परखे रतन विचार वस्त लह कार अपने चले कारज सार वन जा रहा स्यों वनज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मेलनहार मिलिया होए ना विछुड़े जिस अंतर जोत अपार।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चा डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ न।

कर ठाक न होए, नानक एक और अव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर। पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए। रहाओ हर का मंदर सोहन।

निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख न मांगे कोई। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम न होए। भगती पाए विहूनिया मुह काला पत खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हों मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला। सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागणी क्यों थिर रहे सुहाग।

रहाओ। गुरुमत पत्सावा तिस तिसके संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवऊ बिन नावे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधुला चेले ना ही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ। आए गया पछतावना ज्यो सुन्ये कर काओ, बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत। तब लग महल न पाइए जब लग साच न चीत, शब्द रपै कर पाइए निर्बाणी पदनीत। हौ गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हौ मैं दुख जल जाओ। सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ, शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सद सदा हर राखें उर्धार, सो क्यों मनो विसारिये सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार। बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार। दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार, मन रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए। रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हे प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया कीमत कह न जाए। हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार। संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार, खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए। शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, वापारी बन जा रहा।

छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाइए बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाइए रतन विचार मन दीजे गुर आप।

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरी आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार अवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नावे तन बाद है पूलो मार गयाथ साचो साहिब सेविय गुरमुख अकथो काथ आवे जाए पवाईए पये किरत कमाए पूरब लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन हर नाम न छुटिए गुरमुत मिले मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हौं मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभिमान नानक।

तुम जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे दिन प्यार, गुरुमुख अंतर रल रहा, बक्से भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों सुख करो, मन तन शांत शरीर। दिन जल करी न जीवई, प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी चात्रिक में है, सर पर थल हरियावले, एक बूंद न पवे के है। कर्म मिले सो पाई है, किस पया सिर गे है। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत कर, जैसी जल दूध होए, आवतन आपे खवे।

जिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सो जी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सोए ताकी कीमत ना पवै जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा निहो ना तुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाए।

नहीं, ना फिर अंत समाय रहाओ। पूली फिरे दिसंतरी, पूली द्रोह तज जाए, पूली डूंगर थल चढ़े, पर मैं मन डोलाए। तुरों विछनी क्यों मिले, गर्भ मुठी बिरलाए। विछड़िया गुर मेल सी, हर रस नाम प्यारे, साथ सहज शोभा कनी, हर गुण नाम आधार। ज्यो पावे क्यों रख तू, मैं तुझ बिन कवन पतार। अखर पढ़ पढ़ पुली है, पेखी बहुत अभिमान। तीरथ नाता क्या करे, मन में मैल गुमान। गुरु बिन किन समझाई है।

जिन कन मन साज सुधारिया तुस सोती निवलाए रहाओ। तन दे संतर होमी है इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नाम में तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए। अर्ग शरीर कटाई है सिर करवत धराए, तन है मंचल गाली है ती मन से रोग न जाए। हर नाम में तुल न पुजई सब जिथी ठोक बजाए, कंचन के कोट बत करी।

सबको ऊंचा आखिए नीच ना दूसे कोई। इतने पांडे साजे इक चानन के होलोए। कर्म मिले सच पाइए थोर बख्श ना मेटे कोई। साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकथ कथा विचारी है जो सतगुर माहि समाए। ई अमृत संतोखिया दर्गे पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए। विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

आओ आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मिलाए जी जंत एक आवे चारे क्या को आप सुनाए गुरुमुख आपे देव डियाए आपे सेव कराए देख पुटंब मोह लुभाना चल दिया नाल ना जाए सतगुरु से गुण निधान पाया किसकी कीम ना पाए प्रभ सखा हर जियो मेरा अंते होए सखाई तेरी अड़े जग जीवन दाता मनमुख पत गवाई बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई हर सुख दाता मन नहीं वस्या अंत गया पछताई तेरी अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अंग दिन भगत करे दिन राती हूं मैं मोह चुकाया जिस यो राता तैसो हो गए सच्चे सच समाया आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार सतगुर सेवे सहज उपजे हूं मैं तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निधान हर मन वसे हो मैं दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलिहारे जाऊं अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए हर जियो भगत वचन सुख दाता कर कृपा मन वसाई नानक सोबा सुरत दे प्रभ आपे गुरुमुख दे वलियाई।

मन दे गुरमुख नाम ते आए। गुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए। रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ, सुपने सुख ना पावई, दुख में सवे समाए। जे हर हर की कह बहुत लोची है, किर्त नामे ते आ जाए। हर का पाना पगती मन्या, से पगत पे दर्शाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों, बिन कृपा ले आना जाए। जे सो अमृत नीरी है, पी दिख फल लागे ताए। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार, सतगुर का पाना।

प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावना सच चुग गए गुरु।

लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास न बैठी है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना सबदना ना।

सच समाओ। हुकम ना जाने बपुणे पूले सिरे गवार, मन हट कर्म कमाउंदे नित नित होए कुआर। अंतर शांत न आवई ना सच लगे प्यार, गुरमुखिया मोह सोने गुर के हेत प्यार। सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार, आए से परवा

नानक नाम वडाइया करम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मन मुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए, पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए। सदा फिर निंचल पाये ना ओ मरे न जाए, शब्द मिली ना बिछड़े फिर कै अंक समाए। हर निर्मल अप उजला बिन गुर पाया न जाए, ताक पड़े ना बुझई तेसी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए, माया मोह चुकाया गुरमति सह सुवाए।

आए बिन शब्द परम न चूके ना विचो हो मैं जाए बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए शब्द हो मैं मारिये माया का परम जाए नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुभाए बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए भगत वसल हर मन वसिया सहज मिलिया।

सोए नानक सब दे हासा लाही है करम प्राप्त होए श्री राग महला की जा। माया मोह मेरे प्रभु की ना आके परम पुलाए।

न मिलते पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संयम ना पड़े दूजा पाव ना जाने। सतगुर पेके निर्मल हुआ अंधन नाम बखाने। एको पड़े एको नाम बूझे दूजा अवर न जाने। खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पुलाए। सतगुर सेवे ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए। सच्ची बाणी सोचित लागे आवन जान रहा है। पंडित पर पढ़वा

सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए पूरे शब्द सब सोजी होई हर नामे रह समाए मन मेरे सतगुरु से चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई ज्यो राखे त्यों रहना गुर के शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल करना वड्डे पाग नौ पाईए गुरमुख शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई इतना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया लक्ष्यो राशि फिर आवे दिसा जन्म गवाया पगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते अंगिन गुण गावे सद निर्मल सहजे नाम समाते गुरुमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराधे गुरुमुख अकथ कहानी सच्चा साहिब सेवी है गुरुमुख वसे मन आए।

आओ सच्चे शब्द पत उपजे सच्चे सच्चा नाओ जिन्नी हो मैं मार पछाणिया हो तिन बलिहारे जाओ मन मुख सच ना जानी तिन ठौर ना कतहु उठाओ सच खाना सच पहनना सच्चे ही विचवास सदा सच्चा सलाहना सच्चे शब्द निवास सब आत्म राम पछाणिया गुरमति निज करवास सच वेखण सच बोलना।

रोग ग्रस्त पुतंग पले त्या कदे हरक कदे सोग गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए चित आवे।

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काटना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता, सगल उकत उपावा त्याग शरण पावा, नानक गुरचर।

नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। एहो जगत परम पुलाया आपो तुध खुआया पर पाप लगा दोहाजनी पाग जिना के नाहे जियो। दोहाजनी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमानिया मैले वेस्तिना कामनी दुखी रहन विहाय जियो। सोहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै अपनी आपे ले मिलाए जियो। हुकम जिनानो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सैया से सोहागनी जिनसे नाल प्यार जियो। जिना पाने का रस आया तिन विच्चों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। सतगुर मिले फल पाया जिन विच्चों ए करम चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्त।

सब संजम रहस्य आन पा, मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोक करे जयकार जियो, मेरे गुण अवगुण ना विचारिया, प्रभ अपना बिरज समारिया, कंठ

तिस जेवड अवर न कोई जियो रहाओ गोसाई महिंदा इच्छड़ा अम अब्बे थावो मिचड़ा तैन पाई सब सजना तुझ जेहा नाही कोई जियो तेरे हुक्मे सामने आया मैं सतका हल जो आया नाव बीजन लगा आस्तर हर बोल बख्श जमाए जियो हौ गुर मिल इक पछाणदा दोया कागल चित ना जानदा हर इक तै पाणे लायो ने ज्यों पावे तिवें निभाए जियो तुसी पोजो पुंचो पाइयो गुर दी बाण कवाए पहनाइयो हौ होआ।

لگا پائے جیو سن گلاں گر کہ آیا نام دان اس نام دڑایا

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाण है उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुड़ी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरवास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाए वन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाए प्राणी माप है सुत मेरा चेत अचेत मूर मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने मन भीतर तर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा तन जोबन स्यो चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुटे जित हर का नाम न चेते प्राणी विकल पया संग माया तन स्यो रता जोबन मता अहला जन्म गवाया कर्म से की वापार ना की तो कर्म ना की तो मित कहो नानक की जय पहरे प्राणी तन जोबन स्यों चित चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा लावी आया खेत जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे न मिलिया पेत पेत चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दो आले छिन में पया पराया साई वक्त प्राप्त होई जिस्यों लाया हेत कौन नानक प्राणी।

ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। कीरत वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तार।

जोबन कटै जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जा जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया पराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा

मेरा मेरा कर पालिया वन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा जिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

कर्म कमाने, जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता, तिन पीतर प्रभु संजोया, कर्म सो कर्म कराए आपे, इस जनते वस किस ना।

जिन पेवकड़े नाम संभालिया सब सफल हो जन्म तिना दा गुरमुख जिना मन जिन पासा टालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी हर प्रभु मेरे बाबुला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सवरे मेरा काजो हर हर पंक्ति काज सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंड वर पंड हर शोभा होई इहो दान ना रलै रलाया और मनमुख दाज जे रख दिखा ले सो

मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए। मन सिंदे से ही फल पावे चरण कमल चितलाए। जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर दिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जी

आठ पहर प्रवजा पे आप जुगादी सेवक स्वामी पगता नाम आधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे।

रूप मिटाया। चित्रगुप्त का कागज फाड़िया, जमदूता कछु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा, कर संता संग निवासो, मन प्यारिया जियो मित्रा, हर नाम जपत परगासो। सिमर स्वामी सुखे गामी, इच्छ सगली पुनिया, पुर्बे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरी विचुनिया। अंतर बाहर सर्वत रविया, मन उपजिया दिशासो, नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना, मन प्यारिया जियो मित्रा, हर जल मिल जीवे मीना। हर पी अघाने अमृत बाने, सर्व सुखा मन उठे, श्री तर पाए मंगल गाए, इच पुनी सतगुर तुटे। लड़ लीने लाए नौ निद पाए, नाओ सर्व सुखा कर दीना, नानक सिख संत।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोई जियो, हर जी सबे प्रतपाल दा खट खट रमैया सोए, सो हर सदा ते आई है तिस बिन अवर न कोए, जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए, जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए, मैं हर दिन अवर न कोए, हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ, विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यों वेसुआ पुत ने नाओ, पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ, वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ, जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ, मन हर हर लगा चाओ गुरपुरे नाम दृढ़ाया, हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ, जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए, चल दिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए, हौ बलिहारी तिन तो जिन हर मन उठा आए, जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए, मन हर हर प्रीत लगाए वड पागी गुर पाया, गुर सबदी पार लगाए रहाओ, हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले, हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे, गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के, हौ बलिहारी तिन कौ जिन हर पाया गुरमते, जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है, मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई पज पो, जिंदु सब किलिक दुख पर हरे रहाओ, कट कट मैया मन वसे क्यों पाये कित पत, गुर पूरा सतगुर पेटिये हर आए वसे मन चित, मैं तार नाम आधार है हर नाम में ते गत मत, मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत, जन नानक नाम से आया रंग रतड़ा हर रंग रत, हर त्यावो हर प्रभ सत गुरु बचनी हर प्रभ जानिया, सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ, जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास, सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास, तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास, गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास, जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुठा गुणतास, हर त्यावो सांस गिरास मन प्रीत लगी।

जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै नेचल मत अपार रतन अमोलक पाया गुरखा शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर आकार नानक सच्चा सतगुरु सेवै सदा सच वापार महला तीजा और बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत न होए इहो मन माया मोया वेखण सुनन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजे अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी हर इको करता इक इको दीवान हर इक सैदा है अमर इको हर चित तार हर किस बिन कोई नाहे डर परम पौ दूर कर हर किसे नो सालाहे जे तुद रखे बार कर हर जिसनो हुए दयाल सो हर जप पौ बिखम।

मेरे मन हर चेत सोदर है जे पाप कमावदा तरमी विगसेत तू सच्चा आप न्याओ सच ता दरिया केत जिना नानक सच पछाणिया से सच रलेत। श्लोक महला तीजा। कलम जलो सन मसवाणी है कागज भी जल जाओ लिखण वाला जल बलो जिन लिखिया दूजा पाओ नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए। महला तीजा। होर कूड पढ़ना कूड बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामे को थिर नहीं पढ़ पढ़ हो एक वार। पौड़ी। हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है जा न्याओ है धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का हर की वड्याई वड्डी है जा ना सुनई कहा चुगल का हर की वड्याई।

पौड़ी सिस्त उपाई सब तुद आपे रिजक समाया एक वल छल करके खाम दे मुंह कूर कुसत तिन्नी ताया तुद आपे पावे सो करें तुद ओते कम कोई लाया इकना सच बुझायोन तिना अतुट पंडार देवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने माया मोह सुआए दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूरख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते जो देंदा रिजक समाहे जम का पाथा गलो न कटी है फिर आवे जाए मन मुख किछु न सूजे अंगले पूरब लिखिया कमाए पूरे पाग सतगुर मिले सुखदाता नाम वसै मने आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विहाए नान सो ना मनो ना विसारिये जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुण तास गुरमति आप पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिस्ता शिव करे अरदास सच्चे सब सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संजम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमती नाव पाई है मन मुख मोह विनाश ज्यों पावे त्यों रास तू नानक तेरा दास। पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब ना रास सब तू दे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे तिस सब किछ मिले इक ना दूर है पास तुद बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगी है मन वेखो को निर्जास सब तुदे नो सलाह दे दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा माया मोह प्यार अंतर ब्रह्म न ची नहीं मन मूरख गावार दूजे पाए जगत प्रबोध दा न बुझे विचार बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार सदा सांत सुख मन वसे चूके कूक पुकार आपे नो आप खाए मन निर्मल होवे गुर सबदी विचार नानक शब्द रते से मुक्त है हर जियो हेत प्यार। पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे थाए जिस हर पावे तिस गुर मिले सो हर नाम त्याए गुर सबदी हर पाए हर पार लगाए मन हट किन न पायो पुछो वेदा जाए नानक हर की सेवा सो करे जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा नानक सो तूरावरियाम जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया आप होवा सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया सोहन सच द्वार नाम प्यारिया मन मुख मरे अंकार मरण विगारिया सबो वर्ते हुकम क्या करे विचारिया आपो दूजे लग खसम विसारिया नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा गुरपुरे हर नाम दिलाया तिन विच्चों परम चुकाया राम नाम हर कीरत गाई कर चावन मद दिखाया हों में मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया गुरमति जम जोहे न साके साके नाम समाया सब आपे आप वर्ते करता जो पावे सो नाई लाया जन नानक नाम ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया। पौड़ी जो मिलिया हर दीवान स्यों सो सबनी दीवानी मिलिया जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू उसके मोह जिथे सब पापी तरिया उस अंतर नाम निदान है
नाम परवरिया, नाव पूजिए, नाव मनिए, नाए किलविक सब है।

सो ऐसा हर नाम से आए मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय चढ़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नामे अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा वेस करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिरके पाणे ना चले हुकम करे गावार। गुर के पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम।

प्यार पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उधार पौड़ी हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख ली।

इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, देखत ही जमराव हसे, ऐसा तैं जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जात पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विचों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे, इत संगत ना ही मरना, हुकम पछाण ता खसमे मिलना, रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटंब देख बिगसे कमला ज्यो, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना, तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीतला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे, प्राणी संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंख चालना प्राणी, रव सत तहना परवे संग, माया मो तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ए जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाए, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता, और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी।

अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो।

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम ते आया। गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हौ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हौ रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हौ हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वडपागी, मैं हर तक प्यारा दसै जियो। हौ मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया।

कथा। हर गुण पढ़िए, हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत्संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर

पूरा जाने, हाँ रह ना सका बिन नाम वखाने। मैं औखद मंत्र दी जय गुरपुरे, मैं हर हर नाम उधरिय जियो। हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई। हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो। माज महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे भाई। मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई। मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन भाणी। हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड पागी हर संगत पावे, पागहीन प्रम चोटा खावे। बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे। गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा, हर गुरु ज्ञान हर रस हर पाया। मन हर रंग राता हर रस पी आया। हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल में लाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए। हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया। पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौदा जियो। आप दयाल दया प्रवतारी, मल हो मैं बिख्या सब निवारी। नानक हट पट्टन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा, हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई। मिल संगत मन नाम वसाई। हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता। पाप मलोवा मल मल तोवा, मिल हर जन हर रस पी चै जियो। सतगुर दाते नाम दृढ़ाया, वड पागी गुर दर्शन पाया। अमृत रस सच अमृत बोली, गुर पूरे अमृत ली चै जियो। हर सत्संगत सत पुरख मिलाइए, मिल सत्संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी।

तिसके हो वारिया मिल सतसंगत लद्दा हर सज्जन हो सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपुर हर नाल दिखा लिया हो सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी एक नदरी आया हो सतगुरु विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौक दे घर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों को लीजियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सो देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हौ कोली हौ कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदे तू उठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निध तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहारे सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद बाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में ता

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगह अगोचर बे अंत अथाह, तेरी कीमत कहन ना जाई जियो। खास संतन की देहो प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे, दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहु विदतावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायण मंत्र पायण, गुरुमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई, ए सुमत गुरु ते

मेहरवान किरपाल दयाला सगले तृप्त अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तुन हरिया करण हार खिल पीतर करिया गुरमुख नानक तिसे अरादे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ताबो के आकारा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाना तू मेरी ओत तू है मेरा माना तुझ बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुद उपाय जित जित पाना तित तित लाए सब किछ कीता तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन शीत लाया गुरपूर।

भगत जीवें गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे, पेटत गुर दर्शाया जियो, अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी।

प्रीतम ठाकुर अचपारी तुमरे कर्तव तुम ही जानो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे कथा सुनत मल सगली खोवे पेटत संग साध संतन कै सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो ए मत गुर प्रसाद मन तारो तुमरी कृपा ते होए परगाता सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई।

सर्व जियां को देवन हारा, गुर प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छ पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया।

जल फल मैयल दैद स्वर साया सांख पई बुझी सब कृष्णा आनंद पया सब थाई जियो सुखदाता दुख पंजन हारा आपे बख्श करे जी सारा अपने कीते नो आप प्रतपाले तै पैरी तिसे मनाई जियो जाकी शरण पया गत पाये साप साप हर नाम ते आये तिस बिन होर ना दूजा ठाकुर सब तिसे किया जाई जियो तेरा मान तान प्रभ तेरा तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा नानक दास कह बेनंती आप पहर तुझ आई जियो माज महला पंजवा सबे सुख परे प्रभ तुठे गुरपूरे के चरण मन उठे सह समाध लगी लिव अंतर सो रस सोई जाने जियो अगम अगोचर साहिब मेरा कट कट अंतर वरते मेरा सदा अलिप्त जिया का दाता को विरला आप पछाने जियो प्रभ मिलने की ए निशानी मन इको सच्चा हुकुम पछाने सहज संतोष सदा तृप्ता से आनंद खसम कह पाने जियो हकी दिखी प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माने जियो माज महला पंजवा तीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार किया तिन करते है दुख का डेरा काया जियो मन तन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा खान न दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किस करे सो आपे आपे बुद्ध सियाणप किछु न जापे अपने संतानो आप सहाय प्रभ परम पुलावा लाया जियो चरण कमल जन का आधारो आप पैर राम नाम वपारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाया जियो माज महला पंजवा सो सत मंदर जित सच त्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा करत सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितो कुर्बानो जियो सत वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवे जन तेरे सत शब्द मन मानो जियो सत सालाहन बड़ पाजी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरे तुद पावे हैं सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान संतर सच्चा सोई नानक सच त्याई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला करी मूरत सिमरत पल वंजे जीवन सफल तिथाई जियो सिमरत नाम दोख सब लाके अंतर बाहर हर प्रभ साथे तै पाओ परम खोया गुरपूर है देखा सब नी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊंच अपारा नौ निज नाम परे पंडारा आद अंत मद प्रभ सोई दूजा लवे न लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचित जाचे सादर वाला देह दान ना

खाते, खुद बिन अवर न कोई करते, मैं कर ओत तुम्हारी जियो। रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेव्या तिन ही सुख पाया, सो जन्म न जुए हारी जियो। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत दिन होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मन तन रत्ता राम प्यारे, सर्व सु दीजे अपना वारे, आठ पैर गोवे।

कटिए जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलग अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आशा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्थ उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जां कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन में थाप उठापन हारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन विजोगा जियो। अंचल लाए सब शिष्टाई, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपा ते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन दीठा जियो। तेरी महिमा तू है जाने, अपना आप

जिन देखे सब उतरे तलमल, नानक नाम त्याय त्याय जीवे, दिनस्या परम पौ तीथा जियो। माज महला पंजवा, चूठा मंगन जे कोई मांगे, तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो सद ही सेवे, सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी, गुण गावे अंदिन नित जागी, बाह पकड़ तिस स्वामी मेले, जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की तूड़ नित बांचे, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाय, जिस सिमरत वर ने चल पाये, नानक कहो प्रभु होए दयाला, तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदिया, महला पहला कर पहला, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए, सच्ची दरगे मैल बुलाए, सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा, सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी सबद सुहावणिया, अमृत नाम सदा सुख दाता, गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा, साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा, हों मैं कर कर जाए कनेरी, कर अवगण पछोतावणिया। हुकुम पछाणे सो हर गुण वखाणे, गुर के शब्द नाम निशाने, सबना का दर लेखा सके, छूटत नाम सुहावणिया। मनमुख फूला ठौर ना पाए, जम दर बद्दा चोटा खाए, बिन नामे को संग ना साथी, मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच ना पावे, दुबदा बांदा आवे जावे, लिखिया लेख न मेटे कोई, गुरमुख मुक्त करावणिया। पेयड़े फिर जातो नाही, झूठ विछुन्नी रोवे ताही, अवगण मुठी महल न पाए, अवगण गुण बख्सावणिया। पेयड़े जिन जाता प्यारा, गुरमुख बूझे तत बिचारा, आवण जाना ठाक रहाए, सच्चे नाम समावणिया। गुरमुख बूझे अकथ कहावे, सच्चे ठाकुर साचो पावे, नानक सच कहे बेनंती, सच मिले गुण गावणिया।

सेवा सुरत सबद चित लाए, हों मैं मार सदा सुख पाया, माया मोह चुकावणिया, हों वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया, गुरमति प्रगास हुआ जी अंगन हर गुण गावणिया। रहाओ तन मन खोजे ता नाउ पाए, तावत राखे ठाक रहाए, गुर की बाणी अंगन गावे सहजे भगत करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साच मिले ता वेखा, नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया। सच्चा साई शक्की नाई, गुर प्रसादी मन वसाई, अंगन सदा रहे रंग राता, दर्श कै सो जी पावणिया। पाप पुन की सार न जाने, दूजे लागी परम पुलाणी, अज्ञानी अंधा मग न जाने, फिर आवन जावणिया। गुर सेवा ते सदा सुख पाया, हों मैं मेरा ठाक रहाया, गुर साखी मिटिया अंधियारा, बजर कपाट खुलावणिया। हों मैं मार

कृष्णो नजर करे तिस गुरु मिलाए, किलबिख का सदा जन निर्मल दर सच्चे नाम सुहावणिया। लेखा मांगे ता किन दिए, सुख नाही फुन दूए तीए, आपे बख्श ले प्रभ साचा आपे बख्श मिलावणिया। आप करे तै आप कराए, पूरे गुर के शब्द मिलाए, नानक नाम मिले वड्याई आपे मेल मिलावणिया। माज महला तीजा, इको आप फिरे परछन्ना, गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना, तृष्णा तज सहज सुख पाया एको मन वसावणिया। हों वारी जियो वारी इकस क्यों चित लावणिया, गुरमति मन इकट कर आया सच्चे रंग रंगावणिया। रहाओ एहो जग पूला तें आप पुलाया, इक विसार दूजे लोभाया, अन दिन सदा फिरे परम पूला, दिन नावे दुख पावणिया। जो रंग राते कर्म विदाते, गुर सेवा ते जुग चारे जाते, जिसनो आप दे वड्याई हर के नाम समावणिया। माया मोह हर के तै नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाई, अन्ना बोला किछ नजर ना आवे, मनमुख पाप पचावणिया। इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावणिया। हर जियो तेरी सदा शरणाई, आपे बख्शे देवड़े आई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम ते आवणिया। अन दिन राते जो हर पाए, मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए, सदा सदा सच्चे तेरी शरणाई, तू आपे सच बुझावणिया। जिन सच जाता से सच समाणे, हर गुण गावे सच वखाणे, नानक नाम रते बैरागी निज कर ताड़ी लावणिया। माज महला तीजा, शब्द मरे सो मोआ जापे, काल न चापे दुख ना संतापे, ज्योति विच मिल जोत समाणी, सुन मन सच समावणिया। हों वारी जियो वारी हर के नाए शोभा पावणिया, सतगुर सेव सत चित लाया, गुरमती सहज समावणिया। रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए, दूजे लागी महल न पाए, अन दिन जल्दी फिरे दिन राती, बिन फिर बहुत दुख पावणिया। देही जात न आगे जाए, जिथे लेखा मंगिए तिथे छुटे सच कमाए, सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावणिया। तै पाए सिंगार बनाए, गुर प्रसादी महल कर पाए, अन दिन सदा रवे दिन राती, मजीठे रंग बनावणिया। सबना पिरवसे सदा नाले, गुर प्रसादी को नदर निहाले, मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा, कर कृपा आप मिलावणिया। माया मोय इहो जग सुत्ता, नाम विसार अंत विगुत्ता, जिसते सुत्ता सो जा गाए, गुरमत सोजी पा।

सदा मन नहीं चले निज कर वासा पावणिया। गुर के शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सच्चा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी हर नाम संभाले सेवड पागी सच्चे शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे अंदिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ था के सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख बिहाजे बिख मोह प्यासे कूर बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाना नानक एको नाम वरत है मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरते सब तेरे मर मर जमे फेर पवे कनेरे तू एको ने चल अगम अपारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हों वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया तिस रूप ना रेखिया वरन ना कोई गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरते सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना अगन जले संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्म पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूझे आप मारे ता

गुर के सब सदर है समाए, सच सलाहे सब खट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के शब्द रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच निश्चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सा लाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हों वारी जियो वारी, सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर सब सलाही, सबदो सुन तिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ तिथे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, होमे मैल गुर सबदे तोवे, निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी, दर सच्चे सोबा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो सबदे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहे, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले छाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मन मुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे भाए, नानक नाम वसे मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सोहे, अत उजल नाम ते आवणिया। हौ वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावणिया, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुहावणिया। रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए, गुर कै पै उजल होमे मल जाए, सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर कै शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, शब्दे नृत करावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोहया जमकाले, माया मोह इस मने नचाए, अंतर तप्त दुख पावणिया। गुरुमुख भगत जा आप कराए, तन मन दाता सह सुभाए, बाणी वजे शब्द वजाए, गुरुमुख भगत थाए पावणिया। बहुताल पूरे वाजे वजाए, ना को सुने ना मन वसाए, माया कारण पिड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत न पाए कोई, नानक नाम गुर भगत।

सुख दाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया। औ वारी जियो वारी सुख सहज समाध लगावणिया। जो हर सेवै थे सदा सोहै शोभा सुर सुहावणिया। रहाओ सबको तेरा भगत कहाए सही भगत तेरे मन पाए। सत बाणी तुदे सलाहन रंग राते भगत करावणिया। सबको सके हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूके फेरा। जा तुद पावे ता नाए रचावे तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया। इक स्यों लिव लागी सधी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए नौ निद नाम वखरा मन आए। पूरे पाग सतगुर पाया सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता तू आपे मेले गुरमुख जाता। तू आपे देवे नाम वडाई नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुझ सलाही गुरमुख जाता दूजा को नाही। एक स्यों मन रहा समाए मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है साचे ठाकुर वे परवाहे। नानक नाम वसे

कछू ना होए, तू कर कर वेखे जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामन गुणवंती हर पाए, पै पाए सिगार बनाए, सतगुरु सेव सदा सुहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ, तम पूले ज्यो सुन्ने कर पाओ, हलत पलत तिनी दोवे गवाए, दुखे दुख विहावणिया। लिख दिया कागज मस्त होई, दूजे पाए सुख पाए न कोई, कूड़ लिखे ते कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चितलावणिया। गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार, से जन सच्चे पावे मोख द्वार, सच कागज कलम मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुरु प्रसादी मिले सोई जन लेखे, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रवास गुरते होवे, हो मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे, मन निर्मल अंदिन भगती राता, भगत करे हर पावणिया। हों वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावणिया, तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे, जो अंदिन हर गुण गावणिया। रहाओ आपे करता कारण कराए, जित पावे तित पारे लाए, पूरे पाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते सुख पावणिया। मर मर जीवे ता किछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाए, सदा मुक्त हर मन वसाए, सहजे सहज समावणिया। बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए, देशंतर पवे दूजे पाए खुआए, बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्द दुख पावणिया। तावत राखे ठाक रहाए, गुर प्रसादी परम पद पाए, सतगुर आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावणिया। एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड़ बोल बिखावणिया। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाले पगत जा हों में सोखे, सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावणिया। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावणिया। माज महला तीजा, इस गुफा में अकुट पंडारा, तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा, आपे गुपत प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप मनावणिया। हों वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावणिया, अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमती अमृत पियावणिया। रहाओ हों मैं मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणिया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावणिया। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए, मनमुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावणिया। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हों में मैल जाए, बैस सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावणिया। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा, सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावणिया। गुपत प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई, नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे, काल न जो है दुख न संतापे, हौमे मार बंधन सब तोड़े, गुरमुख शब्द सुहावणिया। हों वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावणिया,
गुरमुख गावे गुरमुख नाचे हर से ती चित लावण्या रहाओ। गुरमुख जीवे मरे प्रवाण आरजा ना छीजे शब्द पछाण। गुरमुख मरे न काल न खाए गुरमुख सच समावण्या। गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच्चों आप गवाए आप करे कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारण्या। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हो मैं चूके पीर। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सह समावण्या। गुरमुख नाम मिले वड्याई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावण्या। गुरमुख अन दिन सब दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता। गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावण्या। बाज गुरु है अंध अंधारा जम काल गरठे करे पुकारा। अन दिन रोगी बिष्टा के कीड़े बिष्टा में दुख पावण्या। गुरमुख आपे करे कराए गुरमुख हृदय उठा आप आए नानक नाम मिले वड्याए पूरे गुरते पावण्या। माज महला तीजा एका जोत जोत है शरीरा सबद दिखाए सतगुर पूरा। आपे फर्क की तोन कट अंतर आपे बनत बनावण्या। हों वारी जियो वारी हर सच्चे के गुण गावण्या। बाज गुरु को सहज न पाए गुरमुख सहज समावण्या। रहाओ तू आपे सो है आपे जग मोह है तू आपे नदरी जगत परोवे तू आपे दुख सुख दे रहे करते गुरमुख हर देखावण्या। आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आप सुनावण्या। आपे करता आपे पुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे अलख लखावण्या। आपे माया आपे छाया आपे मोह सब जगत उपाया आपे गुण गाता।

आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरुमुख सहज समावणिया। आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसे कट अंतर, आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ पर पूर

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपो दाता, गुरमत सह समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहे सुख दाता, गुरमत सह समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सह समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रहे सुखदाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति जोत मिलावणिया, अंदर महल वतनी परे पंडारा, गुरमुख पाए नाम अपारा, गुरमुख वणजे सदा वपारी, लाहा नाम सद पावणिया, आपे वस राखे आपे दे, गुरमुख वणजे केई के, नानक जिस नजर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया, माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए, गुर के शब्द पाओ दूजा जाए, हर निर्मल सदा गुण दाता, हर गुण में आप समावणिया, हो वारी जियो वारी, सच सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया, रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेवे गुरमुख हर जाता, अमृत नाम सदा जन सोवे, गुरमत हर वस पावणिया, इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरे गुर हो में परम चुकाया, अंदर नाम सलाहन रंग राते, गुर कृपा ते पावणिया, गुर के शब्द एहो गुफा विचारे, नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे, हर गुण गा

कामन पिर राख्या कंठ लाए सबदे पिर गावे से सुहावणिया आपे देवे सब बुलाए अपना नाम मन वसाए नानक नाम मिले वडियाई अंदिन सदा गुण गावणिया माज महला तीजा उत्तम जन्म सुथान है वासा सतगुर सेवे कर माहे उदासा हर रंग रहे सदा रंग राते हर रस मंत्र तावणिया हो वारी जियो वारी पढ़ बुझ मन वसावणिया गुरमुख पढ़े हर नाम सलाहे दर सच्चे शोभा पावणिया रहाओ अलख अपेयो हर रहा समाए उपाय ना किती पाया जाए कृपा करे ता सतगुर पेट है नदरी मेल मिलावणिया दूजे पाए पड़े नहीं बूझे त्रिविद माया कारण लूजे त्रिविद बंधन टूटे गुर शब्दी मुक्त करावणिया त्यो मन चंचल वख ना आवे दुबदा लागे दह दिस्तावे बिखा कीड़ा बिखने राता बिखी माए पचावणिया हौ हौ करे तै आप जनाए बहु कर्म करे किस खाए न पाए तुझते बाहर किछु न होवे बसे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अंदिन दूजे पाए फिराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश सिगार बनाए मन मुख अंग ऐसे कर्म कमाए हल्क न सोभा पलत न टोई बिरथा जन्म गवावणिया हर का नाम किने विरले जाता पूरे गुर के शब्द पछाता अंदिन

संगत होई आस करे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चख साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौनिद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे ने कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एनस प्रीत सबद साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इस नाम करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया तै गुण दिसे मोहे माया गुर प्रसादी को विरला बूझे चौथे कद लिवलावणिया हौ वारी जियो वारी माया मोह शब्द जलावणिया माया मोह जलाए सो हर्षो चित लाए हर दर मैली सो बा पावणिया रहाओ देवी देवा मूल है माया सिमरत खास जिन उपाया काम क्रोध पथरिया संसारे आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन इक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जप सत संजम सच कमावे गुर पूरे नाम ते आवणिया पेयड़े तन परम पुलाणी दूजे लागी फिर पछो ताणी हलक पलक दोवे गवाए सुपने सुख न पावणिया पेयड़े तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखे नाले फिर सहज रह रंग राती शब्द सिंगार बनावणिया सफल जन्म जिना सतगुर पाया दूजा पाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहा कट अंतर मिल सत्संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मन मुख नाम चेतना आवे बिन नावे बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मेले शब्द पछाने नानक नाम मिलिया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लिखावणिया माज महला चौथा आद पुरख अपरंपर आपे आपे थापे थाप उथापे

गुर प्रसाद करे नाम देवै नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा भगती परे तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करे तू लह मिलाई।

आपे करता देव ने आई, जिनको आप लिखत तुर पाई, नानक नाम मिले पौ पंजन, गुर शब्दी सुख पावणिया। माध महला पंजवा कर पहला, अंतर अलख ना जाई लखिया, नाम रतन ले गुजा रखिया, अगम अगोचर सबते ऊंचा, गुर के शब्द लखा।

कौन सो बकता है, कौन सो गिरही, कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बांदा, किन बिद छूटा, किन बिद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन ने कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो। कौन सो सुखिया, कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिए किन बिद बिछरे, ए बिद कौन प्रगटाए जियो। कौन सो अक्षर जित तावक रहता, कौन उपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन बिद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिरही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आवन जावन टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख बिद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तावत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुख दाता, तू करे सोई सुख पावनिया। हों वारी जियो वारी, गुरमुख मन तन पावनिया, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवे ना लावनिया, रहाओ तेरा कीता जिस लागे मीठा, कट कट पार।

चाड़े कर कृपा दास नव निहाले गुण गावे पूरन अविनाशी कह सुन तोट ना आवणिया ऐथे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाल।

तू साहिब सरण सुखदाता सत्संगत जप प्रगटावणिया तू ऊंच अठाओ अपार अमोला तू साचा साहिब दास तेरे गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दया संभालिए मूल न मनो विसारिए रहाओ संता संगत पाइए जित जम के पंख न जाइए तोसा हर का नाम ले।

मस्तक जिस दे पाग जियो मन मंदे प्रभ अवगाहिया ए रस पोगण पातशाहिया मंदा मूल न उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल नान।

सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे कट कट एक वर्तदा जल फल महियल पूरे पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे करते किया तपाव सो।

ਸਮਾਂ ਜਿਤ ਕਰ ਹਰ ਕੰਸ ਨਾ ਪਗ ਤਈ ਪਥ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਬ ਸਿਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ।

पास तब तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आषाढ़ सुहंदा किस लगे जिस मन हर चर

कोख तो खार न व्यापई कंठ मिलिया हर ना हो, कोख तो खार न व्यापई कंठ मिलिया हर ना हो, मन बेदिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा।

हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निज चरण हरे।

नानक जीवे जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरे सो हरिया होवे जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमानी थाओ हर ओट दही मन

जग तू का कवल हर पौरी, तू करता पुरख अगम है, आप सृष्ट उपाति, रंग परंग उपार्जना बहु गोविध पाती, तू जाने जिन उपाय सब खेल तुमाती, एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती, गुरुमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती, तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती, जो मन चित तुद त्याय दे मेरे सच्चा बल बल हों तिन जाती।

जिन रच रचिया अतिशय न जाने अंधा अंध कमाए। जा पजे ता ठीक होवे कारक करी न जाए, नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार न पाए। महला दूजा देंदे थावो दिता चंगा, मनमुख ऐसा जानिए सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आंख वखाणिए। अंतर बहके कर्म कमावे सोचो कुंडी जानिए, जो कर्म कमावे तिस धर्म नाव होवे, पाप कमाने पापी जानिए। तू आपे खेल करें सब करते क्या दूजा आंख वखाणिए, जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, बिन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियाणिए। नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगड़ सुजानिए। पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे तंदे लाया, मोठ गौली पाय कै तुद आपो जगत खुआया। तिसना अंदर अग्न है कितना पुखाते आया, सहसा यो संसार है मर जमे आया जाया। दिन सतगुर मोह न तुटई सब थके कर्म कमाया, गुरमति नाम ति आई है सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना तन जने दी माया, शोभा सुरत

चौथा पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज माया अहंकार चुकावे तज काम कामनी मोह तजे ता अंजन माहि निरंजन पावे तज मान अभिमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिव लावे नानक साचा मन वसे साच सब

क्या मेवा क्या त्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज खाली चीजें भोग विलास, क्या लश्कर क्या नेब खवासी आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है, हुक्म मने सिरदार दर दीवानी है, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बिचार सबक सुनाया, एक होए असवार इतना साखती,

पत्थर पाला क्या करे, खुसरे क्या घरवास, कुत्ते चंदन लाई है, पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाई है।

वेदा गंध बोले सच कोए, मोया गंध ने की सत होए, एक गंध वरते संसार, मूरख गंध पवे मोह मार, नानक आखे एवो विचार, सिफती गंध पवे दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार।

सतगुर पिछे पज पवे एहा करनी सार। सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारण हार। सच्ची दरगे मनियन गुर के प्रेम प्यार। गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार। श्लोक महला पहला हम जे जिमी दुनिया पीरा मसालता राया। मेरवद बादशाह अफजू खुदाए एक तू ही महला पहला। ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साधका तरा अस एक दिगर कोई। एक तुई महला पहला। ना दादे दिहंग आदमी ना सप्त जेर जिमी अस एक दिगर कोई। एक तुई महला पहला। ना सूर सस मंगलो ना सप्त दीप नह जलो अन पौन फिर ना कोई। एक तुई महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आसवसे अस एक जिगर कोई। एक तुई महला पहला। परंगे ना गिरा जर द्रप्त आब आस्कार।

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमति आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम पुलाणिया विष्टा अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए।

रहा, काव थान तिना मास्थ वाले एह चलाए रहा, नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असगा, कीड़ा खाप दे पात साई लस्कर करे स्वाहा, जेते जी जीवे ले साहा जीवाले ताके असाहा, नानक ज्यों ज्यों

आधार जीवा दाता मरे न कोए, नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी। पूरे गुर की कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम से आई है, दूजी

है कर्म पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाइए मुट्ठी तंदे चोर महल ना पाइए इन्हें चित कठोर सेव गवाइए जित काट सच न पाए सो पन कढ़ाइए क्यों कर पूरे वट तोल तुलाइए कोई ना आखे तत हो मैं

बुझे पावना, खर दर्शन के पेख किसे सच समावना, सच्चा पुरुष अलग शब्द सुहावना, मन्ने नाम विसंख दर्जे पावना, खालक को आ

दोहा सुरिया आपे खसम देखे कर वो पाए, नानक एवे जानिए सब किस किसे रजाए। महला दूजा, नानक परखे आपको ता पारख जान, रोग दारू दोवे बुझे ता वैक्ष जान, वासना करी मामला जाने मेहमान, मूल जान गला करे हान लाए हान, लब न चले सत रहे सो विष्ट परवान, सर संदे आगास को क्यों पहुंचे बाण, अग्गै ओ अगम है वाहे दड़ जान। पौड़ी, नारी पुरख प्यार प्रेम सिदारिया, करन भगत दिन रात न रहनी वारिया, मेला मंज निवार

सवा लिया निडरिया डर लग गर्व से गालिया नावो पुला जग फिर बेतालिया। श्लोक महला तीजा पैर च जमे पै मरे पी पो मन में होए नानक पैर च जे मरे सहला आया सोए। महला तीजा पैविन जीवे बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैविन जे मरे मोह काले उठ जाए। पौरी सतगुर होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुर होए दयाल ना कबू चूरी है सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुर होए दयाल ता हर रंग मानिए सतगुर होए दयाल ता जमका डर के हा सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख दे सतगुर होए दयाल ता नव निध पाईए सतगुर होए दयाल ता सच समाई है। श्लोक महला पहला सिर खोहाए पिए मलवानी जूठा मंग मंग खाई फोल फदीहत मो लैन परासा पानी देख सगाई पेड़ा वांगी सिर खोहायन परियन हाथ सुहाई माऊ पियू किरत गवाए टब्बर रोवन ताही ओना पिंड ना

सिर पर चलिए सही है पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पाओ राख्या पाए सवार। रहाओ कै तन अगन पखे पै नाल, कै पाओ कड़िए सब दुसवार। कै बिन कारक कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह स्यानप पवे न पाओ। नानक मन मुख बोल।

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आखा समान, फिस विच भूख बहुत नैसान।

सबना का सोए जाके दी जंत तन माल नानक आखण दुखम विचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख

देही माटी बोले कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन। मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार। जय कारण पट तीरथ जाही, रतन पदार्थ पट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीकर हो दी वक्त न जाने। हाउ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नजर न आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन गूजे माने नाओ। ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ। तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले।

लिख हुकम संजोगी गण दस द्वार पंचवसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस पारे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साग मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन तन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कै लागू पाए। गौड़ी महला पहला।

वाह वाह साची मैं तेरी टेक, हो पापी तू निर्मल एक राव, अग्न पानी बोले पड़वाओ, जेवा इंद्री एक सुआओ, दिस्त विकारी ना।

जय रहाओ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कर कर ते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विसार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो कर कर जाओ, किस जाचो नहीं को थाओ, नानक गुरुमत।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुर मिले त दुगदा पागे, कमल विगास मन हर

किरत पया नह मेटे कोए क्या जाना क्या गए होए जो तिस पाना सोई हुआ अगर न करने वाला दुआ न जाना कर्म केवड़ तेरी दात कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ तू एवड़ दाता देवन हार सोत ना ही खुद भगत पंडार किया गर्भ न आवे रात जियो पिंड सब तेरे पास तू मार दिवाले बक्स मिलाए जो पावी त्यो नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरे गुरमत दे परोसे तेरे तन में मैल नाही मन राता गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत शरणाई गौड़ी महला पहला जिन अपख कहाया अप्योपी आया हम कै विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर वास सहज सुभाए मिले सावास जाए सवारे सांझ बिहाल इत उत मन मुख बांधे काल एनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला।

सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा करना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत पास्त पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जां कह हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत पाया रह सुखाली, बाजी एहो संसारो, लग लोभ मुक्त।

हाँ तुद आसा मेरी काया, तू सुन सिखा मारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुटर होई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जा किछ लिया, तामन पल्ला पाया, हल्क न सोबा।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना रहाओ। साओ हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जा रे। जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले। गौड़ी चेती महला पहला, अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना। मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी।

साधना अमृत केल करे नित पामन अवर लुटेन सो पंच जना। ताहे मड़ोली लूटिया देहोरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा।

राखने री सूजस नाही लज टूकस मूसा पाई रे। मनमुख करे ते का दुख लागे गुरुमुख मिले बढ़ाई रे। जो तिनकी आसोई हुआ कितना मेटिया जाई रे। सुबर भरे ना होवे ऊने जो राते रंग लाई रे। तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किस पाई रे।

जीवड़ा अगम बराबर तप है पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राती गौड़ी बै

तरे अंश न चाहया जाए, अंश को चाहन जो गए से आए अंश गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पागत होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई दे।

अंत न पारा वार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुरु मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसे सत सोए, साच वसे साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणे कोए, जीवे दाता देवन हार, नानक हरना में लगे प्यार। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा,

पूरे पाग मिले गुर आए साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए गुर ते सांत वसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए। बाद गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सत्य सच्ची पत होए। किसनो कही है दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे सा।

जाते है, सब किस साचा आपे आते है। कर्म होवे सत्संग मिलाए, हर गुण गावे बैस सो खाए, रवाओ जलो ए जेवा दूजे पाए, हर रस न चाखे फीका आलाए, बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाख्या सहज सुदाए, गुर कृपा ते सच समाए, साचे राती गुर शब्द विचार, अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए, उंदे पांडे टिके ना कोए, गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास।

दावत रहे जिस सतगुरु पावे मन संराता नाम सुहावे रहाओ एक दावे एक पगत करे नाम न पावे बिन असनेह सच्ची पगत गुर शब्द प्यार अपना तिर राख्या सदा उर्धार पगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच तपे बहुत दुख पावे नचिए टपिए पगत न होए शब्द मरे पगत पाए जन सोए पगत वचल पगत कराए सोए सच्ची पगत विच्चों आप खोए मेरा प्रभु साचा सब विद जाने नानक बक्से नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे देव डियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मित धारा गुर अंकत मार जीवा लनहारा मन असाध साधे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुख एव मन।

नानक गुरुमुख नाम पछाणे गौड़ी ग्वारे री महला की जा होमे विच सब जग बोराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना संदा करत्या अन दिन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरुमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरुमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हो मैं मार गुरु शब्द पछा।

हर कृपा ते हर वसै मन आए। राम राम करत्या सुख सांस शरीर, अंतर वसै न लागे जंपीर, आपे साहेब आप वजीर, नानक सेव सदा।

जित सेवे दरगह पप परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुद आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुर सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

तेरी अकथ कथा गुर शब्द बखानी रहाओ। जय सतगुर तै सत्संगत बनाई, जय सतगुर सहजे हर गुण गाई, जय सतगुर तहां हौं मैं शब्द जलाई, गुरमुख सेवा महली थाउ पाए, गुरमुख अंतर हर नाम वसाए, गुरमुख भगत हर नाम समाए,

साई कहा गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई आपे सुतिया देह जगाई किसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम समाए नानक नाम रते हर नाम समाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मनमुख सूता माया मोह प्यार गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार से जन जागे जिन नाम प्यार सहजे जागे सवे न कोए पूरे गुर से बूझे जन कोए रहाओ असंत अनाड़ी कदे न बूझे कथनी करे ते माया नाल लूझे अंग अज्ञानी कदे न सीजे इस जुग में राम नाम निस्तारा बिरला को पाए गुर शब्द विचारा आप करे सगले कुल उधारा इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई कली का जन्म चंडाल कह कर होई नानक नाम बिना को मुक्त न होई गौड़ी महला तीजा ग्वारे री सच्चा अमर सच्चा पातशाह मन साचे राते हर वे पर

परमे आवे परमे जाए ते जग जन्मिया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप फुला के प्रभ आप फुलाया तिहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विचों परम चुकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए गुरु सेवा ते मन पति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सो जी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न सेवे आ जाए हों मैं माया महा बिख खाए पुत कुटुंब गृह मोहया माए मन मुख अंधा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर सबदी होए गुरमत विरला बूजे कोए नानक नाम समावे सोए नानक नाम समावे सोए गौरी ग्वारे री महला तीजा गुर सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अखुट नाम तन हर कोट न होई ऐसे सवा सुख दर शोभा होई ए मन मेरे परम न कीजै गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ सतगुर सेवे से महापुरुष

सेवे सदा मन दासा, होमे मार कमल प्रगासा, अनहद वाजे निज करवासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आस वखाणी। हम दिन जपे हर सारंग पानी, नानक नाम रते ने केवल निर्वाणी। गौड़ी द्वारे री महला तीजा, सतगुरु मिले बड पाग संजोग। हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए। जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा। गुर कृपा से किने विरले चक डीठा, कर्म कांड बहु करे अचार। बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास। जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण। जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है, क्या धरती मदे पानी नाही। जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया, बिन पगा बरसत फिराही।

पुरुष होए के क्या होए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माही समाही। इतने जन्म फूल परे से जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया उमरप जन्म न आही। गौड़ी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए, मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निदान ले दरगे ले छबाए। रहाओ लक्ष चौरासी परम दे मन हस आवे जाए, गुरु का शब्द न चीने हो फिर जो नहीं पाए, गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए, अंदिन पगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार, जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार। गौड़ी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया, तेव कड़े गुण समले सौरे वास पाया, गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया। ससुरे पेय पिर वसे कहो कित विद पाये, आप निरंजन अलख है आपे मेलाये। रहाओ आपे ही प्रभु देह मत हर नाम ते आये, वड़पागी सतगुरु मिले मुख अमृत पाये। हो मैं दुबदा बिन सजाए सहजे सुख समाये, सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये। मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान ए आने, सतगुर सेवा ना करें फिर पछताने। गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने, मेरे करते ए वह पामदा मन मुख परमाने। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा, हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभु जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागन महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत बिचारा, मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा, शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा। तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित विद पाई है संत जनो जिस देखो जीवा, हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा। रहाओ हर हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गतकीनी हर रस गुर ते पाया, मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता

हर शरणागत राखले हो, मूड मुगद निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमति, हर हर मन प्याया सज्जन हर प्रभ पाया, हर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती, हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन, जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, चौथा चौक दे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। पंडित खास सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया, मैं मूरख हर हर जप पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी, हर पद मन में

सूद वैस पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तब पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन बासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बने आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम

प्रीत गुरसिख मुख पाए। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल तारा। नरपत प्रीत माया देव पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा। नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे, गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे। जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए। भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए। हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोच पूर हमारी। रहाओ सचवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे। गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए। हृदय बिबसे देखे माए, गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए। और सब प्रीत माया मोका चा, बिनस जाए कूड़ा कच पाचा। जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी। जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी। गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई। राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया। अंदिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग तूर जिना मुख लाई। तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई, ते हर दरगे मुख।

कृष्ण बल पद्र गुरु पग लग त्यावे, नानक गुरुमुख हर आप तरावे, नानक गुरुमुख हर आप तरावे, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रब रया बनवारी, हर आपे तप

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रास दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग स्यो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वनज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा दाती नेड़ ना आया और वनज करे वपारिये अनंत तरंगी दुख माया ओए जे है वनज हर लाया फल से हा तिन पाया हर हर वनज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक सा।

आए। हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिड़ाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर से।

अत बुरा, जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदब मेरा सखा।

तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुबत है मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़ खुशी मन अन रस लाया।

गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा क्या मोह ले बोले गुण विहून नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा सब जियो पिंड मुख नक दिया वर्तन तो पानी अन थाना कपड़ पहनन दिया रस अन पोगानी जिन दिए सोचित न आवे।

अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के।

त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की, गुर सिख रखे जी नाली, जैसे काकी तीस बतीस है, विच राखे रसना मास रत केरी, कोई जानो मास काकी के किछ हाथ है, सब वसगत है।

जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति।

मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ, कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा, इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा, हर भगत दृढ़ आवे हर भगत सुने, तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवे, हर लाभ नित दृढ़िए, जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही, नानक तिस गुर मिल उदरे।

गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा, हर रंग पीनी मेरी चोली, अपने हर पद की हों बोली, जब हम हर सेती मन मानिया, कर दीनो जगत सब गोल अमोली, रहाओ करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली, हर हर रूप सब जोत सवाई, हर निकट वसे हर कोली, हर हर निकट वसे सब जग के, अपरंपर पुरख अतोली, हर हर प्रगट कियो गुरु पूरे, सिर वेचियो गुरु कह मोली, हर जी अंतर बार तुम शरणागत, तुम वड पुरख वडोली, जन नानक अंधे हर गुण।

कित मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर राम में नाम समाते रहाओ। हर हर नाम हर हर जग अवकद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से, जो गुरमत राम रस खाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख सरनाते, दुर्मत मैल गई सब तिनकी, जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप, आप प्रभ ठाकुर, तुम जेवड अवर न दाते, जन नानक नाम ले ता जीवे, हर जपिए हर

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूर मुगद असुद मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने।

ज्यों पानी कागद बिनस जात है त्यों मनमुख गर्भ गला डे। हम जाने कछु न जाने आगे ज्यों हर राखे त्यों ठाडे। हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिर साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है। राव सात हर रस सा

दुख जन्म मरण पाव खंडा है। अविनाशी पुरुष पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ग्रह मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम।

तक पाग सबागे। राम गुरमत हर लिव लागे, राम गुरमत हर लिव लागे रहाओ। सत पुट रमैया रमत राम राय, गुर शब्द गुरु लिव लागे। हौ मन तन देवो काट गुरु को, मेरा प्रम को गुरु बचनी पागे। अंधियारे दीपक आन जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे। अज्ञान अंधेरा बिनस बिनास्यो, कर वस्त लही मन जागे। साकत बदक माया तारी, तिन जम जोहन लागे। उन सतगुर आगे शीश ना बेचिया, ओए आवे जाए अपागे। हमरा बिनो

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया, मेरा जियो पिंड सब।

आया। हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद। गुरमत मनुआ गावे बद पागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जुहवा हर गुण गावे। मन रस रसक हर रस आघाने फिर बौर न पूख लगावे। कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे बिन कृपा नाम न पावे। जन नानक कहो हर कृपा तारी मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदु जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा। बद पागी मिल रामा गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। बद पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो। मेरा मन तन हर रंग पिन्ना आवो संतो मिल नाम जपाहा। विच संगत नाम सदा लैलाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा। सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो। मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया। हर अमृत उठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी माज महला चौथा। आओ सखी गुण कामन करीहा जियो। मिल संत जना रंग माने रलिया जियो। गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो। हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो। मेरे मन तन प्रेम लगा हर टोले।

मन अंधन अनग्रह जियो हर पायरा वद पा गई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे देखे हर आपे कार लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इकना फक्का पाया जी।

मेरा मन तन बहुत बहरा गया मेरे गोविंदा, हर बाजू तन कुम लैनी जियो, संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा, मेरा हर प्रभु सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख बिहानी रहनी जियो, मैं मिलो संत मेरा हर प्रभु सज्जन, मैं मन तन पुख लगाया जियो, हूँ रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो, हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आशा।

हो तुद बिटड़ियो सदवारी जियो मेरे मन तन प्रेम पिरम का मेरे गोविंदा हर पूंजी राख हमारी जियो सतगुर विष्ट मेल मेरे गोविंदा हर मेले कर रह बारी जियो हर नाम दया कर पाया मेरे गोविंदा जन नानक शरण तुम्हारी जियो गौड़ी माज महला चौथा चोजी मेरे गोविंदा चोजी मेरे प्यारिया हर प्रभ मेरा चोजी जियो हर आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा हर आपे गोपी खोजी जियो हर आपे सब कट पोगदा मेरे गोविंदा आपे रसिया पोगी जियो हर सुजान ना भुलई मेरे गोविंदा आपे सतगुरु जोगी जियो आपे जगत उपायदा।

जियो। हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो। हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो। हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप अधूरी जियो। हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप वजाए त्यों वाजे जियो। हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर सब जी हर प्रभ गाजे जियो। आपे शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो। वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो। मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो। हर हर नाम जियो प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो। क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो। हर मिलो संत जियो मन लगा पाओ जियो, गुर शब्दी पाये हर प्रीतम राओ जियो। वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो। हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम।

मन अंदर अमृत गुरमत हर मंगवा जियो, मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा हर

इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना ग्रे मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुन।

आप कर उपाया लख चौरासी जोन परमाया साध संग पयो जन्म परापत कर सेवा पद हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभिमान जीवत मरहे दर्द।

सदा अविनाशी, गुर के बचन कति जम फासी, गुर का बचन जी के संग, गुर के बचन रचे राम के रंग, जो गुर दिया सो मन के काम, संत का किया सत्कर्मान, रहाओ गुर का बचन अटल अछेद, गुर के बचन कटे प्रम पेद, गुर का बचन कतो न जाए, गुर के बचन हर के गुण गाए, गुर का बचन जी के साथ, गुर का बचन अनाथ को नाथ, गुर के बचन नरक ना पवे, गुर के बचन रसना अमृत रवे, गुर का बचन प्रगट संसार, गुर के बचन न आवे हार, जिस जन हुए आप कृपाल, नानक सतगुरु सदा दयाल, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, जिन कीता माटी ते रतन, गर्भ में राखिया जिन कर जतन, जिन दीनी शोभा वड्याई, किस प्रभ को आस पहरते आई, रमैया रेन साध जन पावो, गुर मिल अपना खसम ते आवो, रहाओ जिन कीता मूड ते बखता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवे निध पाए।

गुरुका शब्द अमृत रस चाख, अवर जतन कहो कौन काज, कर कृपा राखे आप लाज, क्या मानस कहो क्या जोर, चूठा माया का सब शोर, करण करावन हार स्वामी, सजल कटा के अंतर जामी, सर्व सुखा सुख साचाए हो, गुरु उपदेश मने में ले हो, जाको राम नाम लिव लागी, कहो नानक सोता।

क्रम सो लागो रंग हर हर नाम जपत जन तारियो अगन सागर गुर पार उतारियो रहाओ कर कीर्तन मन शीतल भये जन्म जन्म के

सिमर सिमर सिमर गुणतास, एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौरी ग्वारेरी महला पंजवा, अगले मोए से पा

सिर ऊपर ठाडो तब हराए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतुर सियाणा, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता चोला। रहाओ जो बोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे, अगन शीत का लाह।

कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जाके हृदय वसे दुख दर्द ते नानक नसे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना अघाना अनक रूप देख नहीं पति।

त्रिग तन त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कैसिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बैस

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कौन सो विद जित राम गुण गाए, कौन सो मत जित तरह ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो बिखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो वलेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग कह नाही नेर, लख चौरासी परम का फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस भोग।

जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा, जो तुद पावे सो सच कर्मा, सर्व निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास, मन तन निर्मल होए हर रंग।

प्यारी ए रस राती होए तृप्तारी रहाओ हे जिवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतहु जाइए साध संगत।

हर गुण दावत रसन अमौली बनस्पत मौली फल फूल के दे ए रस राती बोर न छोड़े आन न रस कस लवे न लाई कहो नानक गुर पे है सहाय गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा मन मंदर।

कवन बपारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे, कवन सो जन जो सौदा जोरे,

संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन तृप्त अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दोहूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का।

माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीवे प्रभ ओट तुम्हारी। रहाओ व्यापक अंग बुद्ध का माता, व्यापक पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापक हस्त कोड़े अरबस्ता, व्यापक रूप जोबन।

व्यापत कर्म करे हो फासा, व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा, आचार व्यवहार व्यापत ए जात, सब कुछ व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, तहु नानक जे तू

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तने जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे। संत सभा तो सदा जयकार, हर हर नाम जन

संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब कर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल से आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक।

अब मत दिन सी दुष्ट बिगानी, जब के सुनिया हर जस्तानी, रहाओ सहज सुख आनंद निधान, राखना

पार ब्रह्म परमेश्वर क्या गुरु पूरे ते मत पाए रहाओ करण करावन हार दयाल जी जंत सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

नानक नाम मिले वडियाई। गौरी द्वारे री महला पंजवा, जी जुगत जा कह है हाथ, सो सिमरो अनाथ को नाथ, प्रभ चित आए सब दुख जाए, तय सब दिन से हर कह नाए।

प्रभ सेवक साचा वे साहो गुरपूरे रथ दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे महला पंजवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुर की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध कै संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका नहीं सुमार जिसे प्राप्त किस गुर दे नानक बिरथा कोई नहे गौड़ी द्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत होए तत्काल बिनस जाए माया जंजाल रसना रमो राम गुण नीत सुख पावो मेरे पाई मीत लिख लेखन कागद मसवाणी राम नाम हर अमृत

माया मगन न सचुए मोह है, उदरे आप करे संसार, राम नाम जप के कंकार, आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश, जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जपे भगवान, आप पैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हो तिस

किरत संयोग सती उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हाथ जल जाये, प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये। शील संयम प्रिय आज्ञा माने, किस नारी को दुख न जमाने। कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया, तन सती दरगे परवानिया। गौरी द्वारे री महला पंजवा, हम तनवंत पा

ता मेरे मन पया निदाना। रतन लाल जाता कछु न मोल, परे पंडार अकूट अतोल। खावे खर्चे रल मिल पाई, तोट ना आवे वद दो जाए। कहो नानक जिस मस्त

सतगुर अपने कौ बलिहार है, छोड़ न जाई सर पर तार है। रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई ना कही जाए, छोड़ मान हर

को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपतायो जाका तहे दर्गे चले सो किसको नजर ले आवे तले जाका सब किस

सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए, ताको चिंता कतहु नाहे, जाके दिन सो मन से फरमा, ताके कछु नाहे डर जमा, जाके हृदय दियो गुरु नामा, कहो नानक ताके सगल निधाना, गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन में थाना, गुर प्रसाद किने विरले जाना, सहज

जिस कर कृपा सतगुरु मिले दयाल, तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता रहा दूजा। गौरी महला पंजवा, आपन तन नहीं जाके दरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं का को लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किस जिसका।

से कर तब कुशल समाना, एकाटेक मेरे मन चीत, जिस किस करना सो हमरा मीत, रहाओ मीत हमारा वे परवाह, गुर कृपा के मोहे असनाहा, मीत हमारा अंतर जामी, समरथ पुरुष

त्रिगत जोन ते मंदा कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया, केवल नाम रिदमाए समाया। गौड़ी महला पंजवा, काकी माई काको बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

वड़ा जिन राम लिवलाई रहाओ भूमिया भूम ऊपर नित लुजे छोड़ चले कृष्णा नहीं बुझे कहो नानक ये तत विचारा बिन हर भजन ना।

पूर्ण राज योग हर के मार्ग पतित पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सद वसै हदूरा कहु नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा। संत की तूर मिटे अगकोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एकंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय ले संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म किस केते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा। हर गुण जपत कमल परगासे हर सिमरत त्रास सब नासे सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जाके हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा। एक सो जाका मन राता विसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मने कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जाके हर तन सो सत्साओ गुरपूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा। नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा पाग नाम संग ताका मन लाग गौड़ी महला पंजवा। संत प्रसाद हर नाम से आया तब के तावत मन तृप्त आया।

मेरी चिंता सब तज अनाथ एक शरण आयो ऊंच स्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसिया करन हार नानक मन।

चरण ठाकुर के मार्ग कहावो पलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

आओ हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, इस जन दुख निकट नहीं आवे। हर की टहल कर जन सोहे, ताको माया अगर न पोहे, मन तन मुख।

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपुरा पेटिया लिव लाए रहाओ, हर का नाम दियो गुरु मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेजम जाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताते बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप, गुरु

पर मृतक देह साध संग बिहुना आवत जात जोनी दुखीना रहाओ। अनेक वस्त्र सुंदर पहराया जो डरना खेत माहे डराया सगल शरीर आवत सब काम नेफल मानुक जपे नहीं नाम कहो नानक जा को कहे दयाला साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारे आवन जान रहे सुख सारे तय दिन से निरपो हर के आया साध संग हर के गुण गाया रहाओ। चरण कवल रिद अंतर तारे अग्न सागर गुर पार उतारे बूढ़त जात पूरे गुर कांडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक किस गुर बलिहारी जिस पेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा साध संग ताकी सरनी परो मंतन अपना आगे तरो अमृत नाम पीवो मेरे पाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। तज अभिमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कारो सास सास प्रभ मने संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसे प्राप्त जिस

अमृत दृष्ट संत जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव, रहाओ मिट गई चिंत पुनी मन आशा, करी दया सतगुरु गुण पासा, दुख नाठे सुख आए समाए, कील ना परी जा।

सगल रोग का बिल स्या खाओ। सैंक सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौरी महला पंजवा, पले दिन पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओ बेला को हों बल जाओ, जित मेरा मन जपे हर नाओ। रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी, जित रसना उचरे हर हरी। सफल ओ माथा संत नमस्कार, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा।

गुरु का शब्द रास मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन भगवंत नाही अनकोए, मारे राखे को सोए रहाओ, गुरु के चरण हृदय उर्धार, अगन सागर जब उतरे पार, गुरु मूरख्यों लाए ध्यान, ईहा ऊहा पावे मान, सगल त्याग गुरु शरणी आया, मिटे अंधे से नान सुख पाया, गौड़ी महला पंजवा, जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसे मन आए।

जाकी दृष्ट सदा सुख होए, साजन मीत सखा कर एक, हर हर अक्षर मन में लेख, रव रया सरबत स्वामी, गुण गावे नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, तै मैं रचियो सब संसारा, तिस पौ नाही जिस नाम अधारा, पौ ना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना, रहाओ सोग हरख में आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभु पाना, अगन सागर महा व्यापे माया, से शीतल जिन सतगुरु पाया।

तुम मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे। पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सतरास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा। हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी। रहाओ नाम बिना नाही।

जो कुछ वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्स पाये वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुखने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाये, कर कृपा प्रभ दिनों सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बनाए, सर्व कल्याण वसे मन आए।

पूरे सतगुरु मिल सारे गोविंद गुण गावो मेरे पाई मिल साधु हर नाम से आई रहाओ दुलभ दे होई परवान सतगुरु ते पाया नाम निशान हर सिमरत पूरन पद पाया साध संग तय परम मिटाया जत तत दे

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवा। करे दो कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बादा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस

हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरख विदाता रहाओ, संते संग बैस गुण गाए, ताका रंग ना उतरे जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से

आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ, साध संग कछ पौ ना पराती, गुण गोपाल गाये दिन राती, कर कृपा प्रभु बंदन छोटे, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस की रह जननीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता

किस क्यों आलस क्यों बने माए, खसम विसार आन कम लागे, कौडी बदले रतन त्यागे, रहाओ प्रभु त्याग लागत अनलोभा, दास सलाम करत कत सोबा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसे न जाने स्वान, कहो नानक हम लून हरामी, बख्श ले हो प्रभु अंतरगामी। गौरी महला पंजवा, प्रभु के चरण मन माए ध्यान, सगल तीर्थ मजन स्नान, हर दिन हर सिमरन मेरे पाई, कोट जन्म की मल ले जाए, रहाओ हर की कथा हृदय माहे बताए, मन बाँचत सगले फल पाए, जीवन मरण जन्म परवान, जाके हृदय वसे भगवान, कहो नानक से जन पूरे, जिना प्राप्त साधु पूरे। गौड़ी महला पंजवा, खादा पैन दा भू कर पाए, किसनो जो है दूत धर्म राए, किस क्यों बेमुख जिन जियो पिल जीना, कोट जन्म पर मैं बहुजूना, रहाओ साकत की ऐसी है रीत, जो किस तरह सगल विपरीत, जियो प्राण जिन मन तन तारिया, सोई ठाकुर मनो विसारिया, बदे विकार लिखे बहु कागर, नानक उदर कृपा सागर, पार ब्रह्म तेरी शरणाए, बंधन काट करे हरनाए। रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, अपने लोभ को की नोमीत, सगल मनोरथ मुक्त पद दीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोए न होए, रहाओ अपने स्वाय हृदय ले तारिया, दुख दर्द रोग सकल बिदारिया, रसना गीदी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम, अनेक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस अमृत।

0: औषध मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कहो नानक अटल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुरु मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संजम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै साई मान मोह होए गुर परम देख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का ठौर न ठाओ चरण कमल सो लागी प्रीत आन सुखा नहीं आवे चीत सदा सदा सिमरो प्रभु स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पैर संगी बटवारे कर कृपा प्रभ ले निवारे ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूरन प्रभ सोए रहाओ महातप सागर संसार प्रभ खिन में पार उतारन हार अनित बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाए उकत स्यान किसके कछ नाहे कर कृपा नानक गुण गाहे गौड़ी महला पंजवा
1: थाती पाई हर को नाम
0: विचर संसार पूरन सब काम वड पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहता पाये रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार पाव सागर चढ़ उतरे पार साधु संग करो सब कोए सदा कल्याण फिर दुख ना होए प्रेम भगत पद

रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा, जग में आया सो परवान, कट कट अपना।

साज तूर कर सुध मन जाई, अनक जला जे तो वै देही, मैल न उतरै सुध ना तेही। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पौकाल, मुकत पुगत जुगत हर नाम।

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की कैद रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारे।

हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंग मिजाजे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते प्रम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी मैला पन्नवा, उद्यम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पय आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कार्य आए, केतत साध संग गई बलाए, रहाओ, नेत्र पुनीत ते खत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस।

अखिर पै बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन चीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे, सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सो मन माने, अदाज बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे, गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोविंद पार ब्रह्म पूरा, किसे अराध मेरा मन कीरा रहा, अंदिन जपो गुरु गुरु नाम, ताके

ते माई प्रभु की शरण उभरे सब कोए करण कराव पूर्ण सच सोए रहाओ अब मन बसिया करने हारा कै दिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निर्भोगाई। गौड़ी महला पंजवा, उज बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत जह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करुणा में साजन नीत।

सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नामा रस माए सो प्रसन्न पय केशवा से जन हर गुण गाए मात पिता सुत।

कौ संत मिले वडपागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोह सगल त्यागी जो प्रभु की हर कथा सुनावे हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटियो पुरुष रसिक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा निकसरे पंखी सिमर हर पा

है कोई संत मिला वे नेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की अनक पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा। संत प्रसाद दाए गुण सादर जन्म जन्म को जाप बहोरा। अनद सुख पेटत हर।

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो मैं पाई माया मोह सबो जग सोया तिहु परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त बिन पंच दुहेले ओ बस्त अगोचर ठाई जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई।

सहज पया प्रम खिन में नाता निर ज्योति ज्योत समाये राव दूजा गौरी मेला पंजवा ऐसो परचो पायो करी।

गुरका शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निर्भव संग तुम्हारे बसते इहो डर कहां ते आया रहाओ एक महल तू होए अफारो एक महल निवानो एक महल तू आपे

रोजाने जैसा पेच करावे बाजीगर ओ तैसो ही साज आने अनुक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप

तू फिर कह रहे आओ पशुआ रहा जो जाने तू अपने काजे सो संग ना चाले तेरे पशुआ नांगो आयो नाग सुदासी फेर फिरो अरकाल ग्रसुआ देख देख रे कसुम की लीला राज मात तिन्हों लो हसुआ।

जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पर सो तरिया संत संग पूर्ण आशा। ताके चरण परो ता जीवा जन के संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवध जो दिस है सब किछ जुग में तातया नाम निधान।

पंच चेले मिल पे इकतरा एक के वस किए दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया सहज सुख सोकीनी पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय पौ नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी पथ विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वद पागी पे तै माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक पर दासा।

तुम प्रवराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहि है प्रगट प्रभु हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रप्राण अधोरी नानक को प्रभु की जय कृपा उन संतन के संग संगो।

रखा सब कुछ तुम्हारे हाथ ऐसा निधान देहो मोको हर जने चले हमारे साथ निर्गुण आरे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जाते संत प्रसाद नान खर पेटे मंतन शीतल कराते।

तै मंद खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे

परम सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ मा कष्ट काते खिन पीतर रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राख पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत।

जीत जन्म के रतन अमोलक साध संगत जप एक किना रहाओ सुख संपत बनता विनोद छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चलियो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन कर संग रूलिया मोहे मोया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौड़ी महला पंजवा मन तर कर दे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक।

अमित जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया, मारे पंच दिखा दिया, गुर कृपा ते दल सा दिया, बख्शीश बजो मिल एक ना।

पीरे ओला नाम का अवर जे कर्म करावनो तिन में पव है जाम का रहा अवर जतन नहीं पाये वदे पाग हर के आये।

राम सेवक पैर कीन, लख चौरासी जोन फिरे, गोविंद लोक नहीं जन्म मरे, बल बुद्ध सियान पहुँ में रही, हर साध शरण नानक गही। गौड़ी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाये, नीत नीत हर सेविये, सास सास हर त्याये, रहाओ संत संग हर मन वसे, दुख दर्द अनेरा प्रम नसे, संत प्रसाद हर जाती है, सो जन दुख ना व्यापी है, जा को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अगन के, नानक को प्रभु।

तू गुर प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम निध पाया सो

गौड़ी महला पंजवा जा को बिसरे राम नाम ताहू को पीर साध संगत मिल हर रवे से गुणी गहीर रहाओ जा को गुरमुख हृदय बुद्ध ताके कर तल नव निज सिद्ध जो जाने हर प्रभ तमी किस नाही ताके कमी करने हार पछानिया सर्व सुख रंग माणिया हर तन जाके गृह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै।

पान सब का खाना रहाओ। ऐसे है रे खसम हमारा, खिन में साज सवार नहारा। काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा।

अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लोरे, रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे, प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग थे कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए।

रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरी है रहाओ, जो ते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाये, जो हो दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद पाये, मेरे मन नाम ले जम बन के छूटे, सर्व सुखा सुख पाये, शेर स्वामी सतगुर दाता, मन बंचत फल आये, नाम इष्ट नीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले।

सुंदर नारी अनेक प्रकारी पर गृह भिखारी बुरा पला नहीं सुझिए, बुरा पला नहीं सुझिए। अनेक बंधन माया परमत परमाया गुण निज नहीं जाया मन बिछे ही मैं लुझिए। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया।

आवे दुख में पंथ पहान रहाओ सेवक सेवक सदा सेव तेरे संग बस्त है पाल कर सेवा तू साध की हो काटिए जम जाल होम जग तीरथ किए बुझ हो में बदे विकार नरक सुरग दोए पुंचना।

0: मैं कैसो कह पुकार नाम कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार।
1: राग गौड़ी माला में

करे हरख सोग हान मिर्त दुख सुख चित संसर गुर मिले रहाओ जौ लो हों किस सोचो चितो तौ लो दुखन परे जो किरपाल गुर पूरा पेटिया सो अनद सहजे जेती स्यान कर्म हों किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिखेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान परे पोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो त्यागियो मैं गुरु मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो रहाओ मान अभिमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपो पे संत प्रम डार्यो पूरन सर्वाग्यो जो किस करते कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो साध संगत पर साध संतन के सोयो मन जाग्यो जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो नाम रंग सहज रस माने।

थिया। सतगुर सब समाया रहाओ, लाठी पूख त्रिसन सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिप अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेटियो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पे बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ। शास्त्र सिमरत वेद विचारे, माँ पुरखन यूं कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहाँ स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मनमोहन, पूरन होत न कामा, जलतो जलतो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की।

हर दिन अवर क्रिया विरथे जप तप संयम कर्म कमाने एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संयम में रहता तिनका आद

गो मनो गुमानी गौड़ी माला पन्यवा। माधो हर हर हर मुख कही है हम ते कछु न होवे स्वामी, ज्यो राखो त्यों रही है रहाओ, क्या किस करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा, पूरन खत्म हमारे। करो कृपा सर्व के दाते एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पे अपना नाम जपावो। रागोड़ी माज महला पन्नवा ओंकार। सतगुरु प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वचल तेरा बिर

एहो जियो वताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो कोठी पंडित वेद खोजंता जी।

जिन प्रभ त्याया सो सो बावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, खुद दिन कित बिद करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिद संदा जियो, पेट दर्शन इहो सुख लइए जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, इहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन हित प्यारे जियो, मन तन तेरा इहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरण आई जियो, जिस मिले है मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो, नाम निरंजन एक निवलागी जियो, गुर पूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साहु भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच

माया मोहड़िया देव जार सारता से अखी जिखड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहा इकस दो चौ क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसियड़ा का विरली जाए उठी भगत सच्चे दर्श होंदे आनंद करें।

आओ जित कट वसे पार ब्रह्म कोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाद पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप तत्ती वाव न लग गई सतगुर रखे आप गुर नारायण दय गुर गुर सच्चा सृजन हार गुर तुठे सब किस पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिसते सोई पाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीवी है पव जल पई है पार मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रात नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबात गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया।

पिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंध सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जाचते।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनस पागो रहाओ, सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर्ष सोगते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एव खेल कथन है किन्हो गुरमुख जाना, गौड़ी मैला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

शरणाई गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एन इस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुन गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यो, ए विद आप बंधावे, मिर्ग तृष्णा ज्यो चूठो इहु जग, देख ताक उठतावे, भुगत मुकत का

जन नानक हर पै दयाला तो सब विद बन आए गौड़ी महला नावा। साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काए गवाओ। राव पतित पुनीत दीन बंद हर।

मोह माया पुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी मैला नामा को माई पूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर निमक न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बन ता स्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ ता स्यों

साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोग मोह माया ममता सुन औ बिकियन की सेवा, हरख सोग परसे जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब क्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा के लोग मोह फुन कैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तें बौरा, एनक औद कटे नहीं जाने पयो लोग संग होरा। रहाओ जो तन ते अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इनमें कटते रो रे नाहिन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तैहारियो गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, और सकल जग माया मुहिया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जात गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गा।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ इक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पहे सूहा रंग माया नगर पई दिख ठाक रहाया उलट पई जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साध रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आता।

गुरमुख दी सह सह सुभाए, सेवा सुरत एक निगलाए। सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार पर होए। एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए। कृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सहज सुभाए। गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए। तन में साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निज खाओ। प्रेम परायण प्रीतम राओ, नदर करे ता बूझे नाओ। माया मोह सर्व जंजाला, मन मुख कुचील कुछ तेज कराला। सतगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला। गुरमुख बूझे एक लिलाए, निज कर वासे साज समाए। जमन मरना ठाक रहाए, पूरे गुर के ए मत पाए। कथनी कथो ना आवे और, गुर पुछ देखिया ना ही दर होर। दुख सुख पाने तिसेर जाए, नानक लीश कह लिगलाए। गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास। काम क्रोध अहंकार

तरण गगन ने देखो दोए, नारी पुरुष सब आई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवे खसम एको जान, गुर के शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त पेर क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार सात उधार है, रहाओ जिसके अंतर सात वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राम सत एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछला मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सत जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम सुपाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हों में मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, सीमा गही व्रत शील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप न देखं, जोगी को कैसा डर होए, रूख बिरख गृह बार सोए, रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच विवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप तरह पितरी निस्तारे, सतगुरु सेवे सो जोगी होए, पैरच रहे सो निरपो होए, जैसा सेवे तैसो होए, नर नहीं केवल निरपो ना हो, अनाथे नाथ करे बल चाओ, पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ, अंतर बार एको जाने, गुर के शब्द आप पछाने, साचे शब्द दर निशाने, शब्द मरे तिस निज कर वासा, आवे ना जावे चूके आसा, गुर के शब्द कमल पर गासा, जो दी सह तो आस निराशा, काम क्रोध बिख भूख से आसा, नानक बिरले मिले उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिले सुख होई, दुख विसरे पावे सत सोई, दर्शन देख पई मत पूरी, अखट मज्जन चरने तूरी, रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जेवा सूची हर रसारा, सत करनी अब अंतर सेवा, मंत्र तास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तै तै साचा, बिन बूझे जगत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख बिरला बूझे कोई, कर कृपा राखो रखवाले, बिन बूझे पशु पे बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख करो अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे, आत्म चीने सो तप विचारे, साच हृदय सच

वेद की विपत पड़ी पछतानिया, जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया। ऐसा गर्व बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्व निवार है। रहाओ बल राजा माया अंकारी, जगन करे बहु पार असारी। दिन गुरु पूछे जाए प्यारी, हरी चंद दान करे जस लेवे। दिन गुरु अंक ना पाए अपेवे, आप पुलाए आपे मत देवे। दुर्मत हरनाख दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ परहारी। प्रहलाद उधारे कृपा तारी, पूलो रावण मुग्ध अचेत। लूटी लंका शीश समेत, गर्भ गया बिन सतगुर हेत। शैत बाहो मद कीट में खासा, हरनाखस ले नखो विदाता। दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संध काल जमुन संगारे। रकत बीज काल नेम विदारे, दैत संगार संत निस्तारे। आपे सतगुर शब्द विचारे, दूजे पाए दैत संगारे। गुरुमुख साच पगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पथ खोई। राम न जानिया करता सोई, जन को दुख पचे दुख होई। जन में जय गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम पुलानिया। इक तिल पूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई। राम ना छीनिया अपनी पथ कोई, बिन जगदीश ना राखे कोई। बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीरज हर नाए। नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला। चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो। बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरों क्या ओढ़ दिखावो। बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला। लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला। नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी। बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली। एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली। हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे। बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद्ध सिद्ध बुलावो। ताज कुल है सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो। खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा। बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हो में ममता गुर शब्द विसारी। गुरमत जानिया हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी। गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जानत अवरे। पर पंच ब्याज त्यागे कवरे, पाय मिले सच साचे सचरे। ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मल तोई। रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जाए।

काम चित है काम अनहितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर त्रिपत ना कभू होई, पर पर पोथी सिमरत पाठा, देख पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बौ नाटा, जो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, जो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्ताता, गौरी मैला पहला, हट कर मरे ना लेखे पावे, वेद करे बहु पसन लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसारे सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, किसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, किसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे, किसको वाहो वाहो जे मेल मिलावे, वाहो वाहो किसको जिसका इहो जियो, गुर सब जी मत अमृत।

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी महला पहला हो मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरुमुख भगत बिरले मन मानिया। हो करत नहीं पत पाई है, हो मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हो मैं कर राजे बहुत आवे, हो मैं खपे जन्म मर आवे। हो मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है। अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे। हो कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे। जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हो मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौरी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम। मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है। नेचल कोय न दिसे संसार है, अप्रयो काल कूड़ सिर मार है। नेचल एक सच्चा सत सोई, जिन कर साजी तिन्हें सब गोई। ओ गुरुमुख जापे ता पत होई, काजी शेख पेख फकीरा। वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा। काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख बैनी। बिन शब्दे मूठे दिन रैनी, फिर दे साच वसे हर नाए। काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौरी महला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई। रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैठे काल न जो है। मन मुख को आवत जावत दुख मोह है। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैठ सहज कर रही है। हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल ने चल नहीं डोले। गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तप विरोले। सतगुरु देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, ओजन नाम निरंजन सार। परम हंस सच जोत अपार, जह देखो तह एक अंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरु चरणी। मन से मन मानिया चूकी अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जग संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सत सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। गौरी महला पहला राम नाम चितरा पैजा का, उपजंप दर्शन की जय ताका। राम ना जपो अपार कुमारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा। रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, इत कट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार। जिनके हृदय हर हर सोई, जिनका दर्द परस सुख होई। सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे। सो बूझे जो सतगुर पाए, हो मैं मारे गुर शब्दे पाए। अर्ग उर्द की संग क्यों जाने, गुरुमुख संग मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए,
प्रभु होए दयाल नानक जन करिए हम पापी निर्गुण को गुण करिए प्रभु होए दयाल नानक जन करिए सोलह अष्टपदिया।

इस पद जो अखाए ले सो गुरु हमारा, नानक कीने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परने पूले आवो जाओ, मन सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव। सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सत गुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा सात द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा रहाओ। गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किस कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग्यों लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर के शब्द सच लिवलाए। हो मैं मैला यो संसारा, नित तीर्थ नावे ना जाए अहंकारा, बिन गुर पेटे जम करे खुआरा। सो जन साचा जे हो मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरे सगले कुल तारे, माया मोह नटबाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई। नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवे सेवड पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अनदिन भगत हर नाम दृढ़ाया। रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पढ़ वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत नाचीने बन्ने पंड पराला, मनमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए। माया का मोहताज पंडित कहावे, बिखिया राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरुमुख जम काल

परम पुनाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सहे सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द बजाए, सतगुरु ते कवन

बंधन ना टूटे मुक्त न पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुगमाए, गुरुमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वरताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुबाए, गुरुमुख साथ रहा लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर न कोई, नानक गुरुमुख बूझे कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरुमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे, अंदिन हृदय जपो जगदीसा, गुरुमुख पावो परम पद सुखा रहाओ, हृदय सुख पया प्रगास, गुरुमुख गावे सच गुणतास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास, जीवन मुक्त गुरुमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वस्या सच सोए, गुरुमुख मन वेदिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए, तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करें गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए, गुरुमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंदिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी, हों मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास, गुरुमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

शब्द मन रंगिया लिव लाए, निज कर वस्या प्रभ की रजाए, सतगुरु सेवे जाए अभिमान, गोविंद पाईए गुणी निधान रहाओ। मन बैरागी जा शब्द पौ खाए, मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए, गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए, मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए, त्रिग पौ जीवन जित हर नाम न लगे प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोगवार, तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए, सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए, हर नाम बिना मैं अवर न कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई, हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम ले विलाई, गुर मिलिए हमको शरीर शुद्ध भई, हौ मैं तृष्णा सब अग्न बुझई, बिन से क्रोध खिमा गह लई, हर आपे कृपा करे नाम देवे, गुरुमुख रतन को विरला लेवे, नानक गुण गावे।

सतगुर ते जो मोह फेरे ते वे मुख बुरे दिसन अंजन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार।

सत संगत मिलाए प्रभर हृदय हर गुणसार रहाओ। से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन। जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय तार। नाम मिले पत पाए नाम मने सुख होए सतगुर के नाम पाए कर्म मिले प्रभ सोए। सतगुर ते जो मोह फेरे ओए प्रम दे ना टिकन तर्क असमान ना चले विच विस्ता पहे पचन। इहो जग परम पुलाया मोट गौली पाए जिना सतगुर पेटिया तिन नेड़ ना पिटे माए। सतगुर सेवन सो सोहने हों मैं मैल गवाए सबद रते से निर्मले चलने सतगुरु पाए। हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बस।

मन करहला गुरु गोविंद संभाले रहाओ। मन करहला विचारिया मन मुख पाथिया महाजाल, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाले। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुरु पाले, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल। मन करहला वट पाथिया हर एक नजर निहाल, आप छड़ाए छुट्टी है सतगुरु चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखालिया हर दास करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड़ विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला बट पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ तारिया जम मारे अड़ा जम काल। अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वड पागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। रागौड़ी ग्वारेरी मैला पंजवा अष्टपदियां।

जब यो मन में करत गुमाना तब यो बावर फिरत बिगाना जब यो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको यो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा मेर तेर जब इन्हें चुकाए कांते इस संग नहीं बहराए जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अर खेदा।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना ने

प्रभु न तर कवन शब्द जित दुर्मत हर रहाओ। इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिनस बिताला, गिर तर तरण गगन अर्तारे, रवसस पवन पावक नीरारे, दिनस रैन बर्त अर्पेदा, सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा, तीरथ देव देहरा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती, तोती दंडौत प्रसादन पोगा, गमन करे गो सगलो लोगा, जात वर्ण तुर्क अर हिंदू, पस पंखी अनेक जोन जिंदू, सगल पसार दिसे पासारा, बिनस जाए गो सगल आकारा, सहज सिफत भगत तत ज्ञाना, सदा आनंद नेचर सचताना, तहां संगत साध गुण रसे, अनपौ नगर तहां सदवसे, तह पौ परमा सोग न चिंता, आवन जावन मृत न होता, तह सदा आनंद।

जो इस मारे तिसे वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई। ऐसा कोई जे दुबदा मार दवावे, इसे मार राज जोग कमावे। रहाओ जो इस मारे तिसको पौना है, जो इस मारे सो नाम समाहे। जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगे सिजे। जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता। जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति। जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नहीं चलतनी। जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा। जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाए न पड़े, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल कृपा निज, इस पै खलासी होई।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत। हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग। जाके काम उतरे सब भूख जाके काम ना जो है दूत। जाके काम तेरा वड गमर जाके काम होवे तू अमर जाके।

एक हैं आप अनेक हैं पांच, जा की दृष्ट होए सदा निहाल, मन मेरे कर्ता की काल, ना को चतुर ना ही को मूढ़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही ला।

बोले कूर साकत मुखकारा, बिन सिमरन गर्दब की न्याई, साकत थान परिष्ट फिराई, बिन सिमरन कूकर हरकाया, साकत लोभी बंद न पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सत्संग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवा, गुर के बचन मोह परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई, गुर के बचन से आयो मोह नाओ, गुर प्रसाद मोह मिलिया छाओ रहाओ, गुर के बचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी, गुर के बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर के बचन मिटिया मेरा परम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन कीनो राज जोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर के बचन पाया नाउ निद, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा, गुर के बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी मैला पंजवा, तिस गुर को सिमरों सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरे

खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, से होए भगत जिना कृपारिया, हों वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की और संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी ना है हर पूर पंडारिया। चौ दिस जपिए नाव सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अकथ कथारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लगा रतन।

नारायण हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, राव तज हो मैं गुर ज्ञान पजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दी सह सो संग न गयो, साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रव रहयो, कोट मदे किने गुरमुख लहयो, हर संतन कर नमो नमो, नौ निद पावे अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो, जन्म मरण दो ते रहयो, दुख अंधेरा करते मिट्यो, गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परयो, जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी, हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सुख पायो, रहाओ बल तो जल तो तौ क्या, गुर चंदन शीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरो, चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना कर्म सुच, प्रभ गह पूजा अपायो, पौ खंडन दुख पंजनो, भगत वचल हर नायो, अनाथ नाथ कृपाल दीन, समरथ संत ओटायो, निर्गुनी आरे की बेनती, देहो दर्स हर आयो, नानक शरण तुहारी ठाकुर, सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा, रंग संग बिखिया के पोगा, इन संग अंध न जानी, हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी, रहाओ हौ सूरा प्रधान हो, को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना, मन में होए गुमानी, जो उलझायो बाद बुद्ध का, मर्त्या नहीं विसरानी, पाई मीत बंदव सके, पाछे तिन्हों को संपानी, जित लागो मन बासना, अंत साई प्रगटानी, आंग बुद्ध सुच कर्म कर, ए बंधन बंदानी, दयाल पुरख।

सिगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे। नानक सा तन

बिन करवास नाही पुछो सखी सहेलिया, बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमती सो जानिया, नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम फिर रावेहा, गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया, निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

हम कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहसी, मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती, रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन कर।

हुन ना प्रभु जियो एक लड़ी बनवाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सा तन मिले।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बेबाने नानक सच कर शब्द सिंजापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अंदिनो जिस बाज वखर कोई न सूजे नाम लेवो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम।

नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए। ता मिली है हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए यूं मिली है माए तासा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती गुर के शब्द विचारे। नानक कामन हर वर पाया गुर के पाए प्यारे। गौड़ी महला तीजा

चित लाये सदा सुहागण जा सतगुर सेवे गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामण ना प्यारी जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागण सदा रंग राती साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है दुबदा मार निवारे नानक कामण हर भर

गुर शब्द सेवे सच समावे, विच्चों हो मैं मारे हर का नाम हृदय वसाए, ऐसा करे सिगारो नानक कामन।

अन्न ना पानी, पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे, दिन फिर क्यों सुख पाये। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे, ज्यो मिले तिवें मिलाये, आपे मेल ले सुखदाता, आप मिलिया करे आए, नानक कामन सदा सुहागन, ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस दे दीजियो, हर कैसे सुवाए, मन मोहन मोह लिया जियो, दुबदा सह समाए, दुबदा सह समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए, एहो शरीर पूर कुसत परिया, गलताई पाप कमाए, गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजे, बिन भगती मैल न जाए, नानक कामन पिरे।

मिलिए प्यारे अंदिन दुख निवारे अंतर महल फिर रावे कामन गुरमति विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागन गुर कै हेत अपारे आवो दया करे जियो प्रीत मत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे सच शब्द सिगारे हों मैं मारे गुरमुख कार सवारे जुग जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर विचारे मनमुख काम व्यापी मोह संतापी किस आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाउ न पाए बिन गुर अत प्यारे मुंद एयाणी पोली निगुणिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शन हारा अवगुण बख्शन हारा कामन कंत प्यारा कट कट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाए सतगुर बूझ बुझाए सदा आनंद रहे दिन राती अन दिन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सातन नौ निद पाई गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरते जियो क्यों कर दुत्तर तरिया जाए राम नाम कर बोहे था जियो शब्द खेवट विच पाए शब्द खेवट विच पाए हर आप लंगाए इन विद दुत्तर तरिये गुरुमुख भगत प्राप्त होवे जीव त्या यों मरिये किन में दाम नाम किल विख काटे पय पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पय मनूरा स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी हो मैं ताप संसारे जो आया सो सबको जासी उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे आप तरह कुल तारे नानक नाम वसै कट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसार।

दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम वापारा, राम नाम वापारा अगमा पारा, गुरमति तन पाई है सेवा सुरत भगत के साची, विचों आप गवाई है हम मत हीन मूरख मुगद अंधे, सतगुरु मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे, अंदिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो, आपे शब्द सवारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो, जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे, हर आप सवारे आपे भगती लाए, आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए, आपे गुण दाता अवगुण काटे, हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहार।

है। जहाँ साध संत एकत्र हो गए हैं तहाँ तुझे त्यावे कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू माने एक जी अवर सब राली माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया तुद बचन गुर के वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन तुद सत्संगत त्यावे दर्श त्याना मोहन जम नेड़ ना आवे तुद जपे निदाना जम काल तिन को लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराधे से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्शो ज्ञाना बिनवंत नानक राज निह चले पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फल्या।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौरी महला पंजवां श्लोक। पतित असंख

संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधो प्याए मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराधिये जम पंथ बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिये कल मले दहता शुद्ध करता दिन सरण आराधो बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाये तम अंग कूप ते उधार नाम मन वसाय सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया बिनवंत नानक।

प्राण मन तन जीव दाता बेअंत अगम अपारो शरण जोग समरथ मोहन सर्व दोख बिदारो रोग सोग सब दोख बिनसे जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समरथ सब कल धारी गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जाके प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिनवंत ना।

कह सखी वस आया फिर छोड़ न जाई तेह रीत पली भगवंत नानक जरा मरण पे नरक निवार पुनीत कर किस जनत सुन सखिए ए पली बेनंती ए हो मतांत पकाये सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाये कल कलेश मिटे क्रम नासे मन चिंदिया फल पाये पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आये सखी इच्छ करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया।

सुन सकिए मेरी नींद भली, मैं आप नड़ा फिर मिलिया। प्रमुख होयो सांत सह स्वामी, परगास तया कौल खिलिया, वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंधक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और अवरया दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं साध सतगुर नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

एक एक बखान नो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत पर ओवन हारा तीन तीन त्रै गुण विस्तार निर्गुण ते सरगुण दिष्टार सगल पाप कर करे उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहु पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कछ व्यापत प्रगट प्रताप पाहु को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहां पुकारते माया मोह सब कूर

क्रिया मनुआ तन नहीं बांचे सुर्ग ना आचे अत प्रिय प्रीत साध रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहो जो एक छाद अनकते न जाहो जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनिक पेख

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक। किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रव्याप, पस आपन हो।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देऊ।

माते या माया में जन्मे मरना, जो जो हुक्म तिवे त्यों करना, को ऊन ना को पूरा, को सुगर ना को मूरा, जित जित लावो तित।

को गमिय जास रसन हर हर जस पनिय आए बसे साधु के संगे आम दिन नाम त्यावे रंगे आवत सो जन नामे राता जाको दया मया विदाता एक आवन फिर जोन ना आया नानक हर के दर्श समाया श्लोक यास जपत मन होए आनंद बिनसे दूजा पाओ दुख दर्द किसना बुझे नानक नाम समाओ। पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो

एक नाम ले मने परो। यैया जन्म नहारी है गुरपुरे की टेक, नानक ते सुख पाया जाके ही रे एक। श्लोक। अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के बीत, गुरपुरे उपदेशया नानक जपिए नीत। पौड़ी। अंदिन सिमरो तास को जो अंत सहाय होए, ए बिखिया दिन चार छे छार चलो सब कोए, ताको माप

पौड़ी थका खूना कछ नहीं तिस समरथ के पाहे जो देना सो दे रहे हो पावे तहते जाए खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनद स्यो जाको होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद न दुख न दानते।

लोग आस अनित गुरुमुख मिटा नानक नाम अरोग पौड़ी गद्दा गोविंद गुण रमो सास सास जपनीत कहां विशासा देह का बिलम न करहो मीत न बारक न जोगने न वृद्धि कच बंद ओ बेरा न बूझिए जो आए परे जम

फूले को मन जो आवे सरना, नाम तत्कल मह पुनः चरना, काल काल अनेक पछतावे, बिन हर भगत कहाँ थित पावे, कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक गाने काले सब दिवस सास,

काल के जो साकत प्रभु कीन अनेक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जी।

सभागा चार कुंट दह दुष्क्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिन सो सब दुआ साध संग मन निर्मल हुआ।

पौड़ी जज्जा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी।

बिनस्तो कास्यो करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंध कूप ते ते कढ़ो जे होवो सो प्रसन्न। ज्ञान

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवाने डेरा ने चल सच।

रेण दिन सिमरत रहे सो प्रभु पुरुष अपार। रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक। तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, नानक प्रम को काटिए चूके जमकी जो। पौड़ी। तत्ता कांस्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राए, फल पावे मन बांचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गत पावे मत हुए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले गृह जो बन ने राज, संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप, प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक। था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ, संच संच साकत हुए नानक मा

जाके मंत्र नाम बसाही, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

छोड़ी। पप्पा परमित पार न पाया, पथित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपह मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पाँच सौ छ

पौड़ी। बब्बा परम मिटावो अपना, या संसार सगल है सुखना। परमेश्वर नर देवी देवा, परमेश्वर साधिक ब्रह्मेवा। परम परम मानुख डह काए, दुत्तर महा बिखम ए माए। गुरु

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

दुख सुख हुआ के समत बिचारा, नरक सुर्ग रहत अवतारा। ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख विशेखा। ओआ रस में ओआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे। नानक ते बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया। याहू जतन कर होत

याहो तरन तारन समराथा राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जवनाई नानक ते मत प्रगट।

विद ना बनाए, गुरपुरे संजम कर दिया, नानक तो फिर दुख न थिया। श्लोक वासुदेव सर्वत्र में ऊन न कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काय दुराए। पौड़ी वा वैर न करिए काहू, खट खट अंतर ब्रह्म समाऊ, वासुदेव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गवया। वैर विरोध मिटे ते मंगते, हर कीर्तन गुरुमुख जो सुनते, वर्ण चिन्ह सगले ते रहता, नानक हर हर गुरुमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बिहानिया, साकत मुगदिया जान, रलक मुए जो त्रिखावंत, नानक कीर्त कमान। पौड़ी राड़ा राड़ मिटे संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बस्यो रिद माही, हुआ की राड़ मिटत बिन साही। राड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है अहं बुद्ध विकारा, राड़ा गुरमुख राड़।

मैं खसमता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो अगनता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे शरण परो हर राय उकत सियानक सगल त्याग नानक ले समाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुकम न प्रपति आना सहस पाठ करें चतुराई संग तुहारे एक न जाए। सो सो जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख ना।

पौड़ी। हेरो काट काट सगल कै पूर रहे भगवान, होवत आए सद सदीव दुख पंजन गुर ज्ञान। हौ छुट तै होए आनंद ते, हौ नाही तै आप हटे दुख जन्म मरण संत संग परताप। हित कर नाम दृढ़ दयाला, संतै संग होत कृपाला, पूरे कछु न किन्हू किया, नानक सब कछ प्रभ।

मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताए न जानत तत् लाहा माया कारने दैद स्टूडेंट जाए देवन हार दा तार प्रभ निमख न मने बसाए लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हो संग बिहाए खुद पावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक पावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। श्लोक हाथ पीत खेलत हस्त परने जन्म अनेक पव जलते काडू प्रभु नानक तेरी टेक। पौड़ी खेलत खेलत आयो अनेक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए खिमा गई सच संचयो खाए।

खरा दिलासा गुर दिया, आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप, आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी। अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे, अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना, अक्षर मुक्त जुगत पै परमा, अक्षर कर्म कीर्त सुच परमा, दृष्टमान अक्षर है जेता, नानक पार ब्रह्म निर्लेपा। श्लोक। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, पुस्तक कह न जाए मुख।

हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है भी होवन हार हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत।

कर जामे। अपनी गतमुक जानो आपे आपन संग आप प्रवराते, तुमरी युस्तक तुमते होए नानक अवर ना जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल।

नाल अष्टपदी रमैया के गुण के प्राणी कौन मूल से कौन दृष्टानी जिन तू सास सवार सिंगारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोगन पोजन सुख सूद दीर्घ पया ऊपर साख सैन मुख पियाओ बैठ को देन ते निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद पोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा जीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूर अंग व्यापे नानक काज लेहो प्रव्यापे आद अंत जो राखनहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंदा जान दूरे जाकी टैल पावे दगे मान किसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदा

समाये पिस्तारे चंदन लेप उतारे धोए दर्द प्रीत पसंद संग होए अंधकूप में पतित विकराल नानक काट लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेट अंतर मल माया छप सुनाए कछ करे छिपाया बाहर ज्ञान त्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुहान अंतर अगन बाहर तन सुहारा जल पाथर कैसे करे अथाहा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक ते जन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लिहो और निभावे कहां बुझारत बूझे डोरा निष्कैय तो समझे पोरा कहां विषण पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुरभंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहा उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे संग सहाय सो आवे ना चीत जो बैराई तासो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सुख गनेरे।

सारा जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर साहले अज्ञानी मनी रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास ना होवे जिसकी बस किस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल।

आए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारत दाम। तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कह बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंध लावत। जाननहार प्रभु प्रवीन, बाहर पेख न काहू कीन। और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख करे संसार।

मान है आपसे आप तर्क निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाप श्यान सगल ते रहते सब कुछ जाने आत्म की रहत जिस पावे किसने लड़ लाए थाम सनंतर रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक।

सब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वारी मन तिस प्रभु को कभू ना बिसारी।

जी प्रसाद तेरी पत रहे, गुर प्रसाद नानक जस कहे। जी प्रसाद सुने करन नाद, जी प्रसाद पेखे विस्माद। जी प्रसाद बोले अमृत रसना, जी प्रसाद सुख सहजे बसना।

अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान। साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निवेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है।

साधु कै संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सो बासुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध कै संग कलू खत हरे, साध कै संग नरक पर हरे। साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मन से बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध कै संग लगे प्रभ मीठा, साधु कै संग कट कट जीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संग।

दर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म

सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम सर्व में पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

अष्टपदी, कहीं कोट होए पुजारी, कहीं कोट आचार व्यवहारी, कहीं कोट पै तीर्थवासी, कहीं कोट वन क्रमे उदासी, कहीं कोट वेद के स्रोते, कहीं कोट तपीसर होते, कई कोट आपम ध्यान तारे, कई कोट कब काब विचारे, कई कोट नर्तन नाम दियावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट

श्री छत्र सगल समग्री अपने सूत धारे, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे। कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र।

प्रभ पावे ता पतित उधार है, आप करे आपन विचार है। दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी। जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवरना आवे। कहो मानक ते क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, ज्योतिष पावे सोई करे। अनजानत भिक्षा में रखे, जे जानत आपन आप बचे। पर में पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कल कृपा।

नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राग अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत।

त्रिन समान का संग न जावे। बहुलस्कर मान को ऊपर करे आस, पल पीतल कांता होए विनाश। सबके आप जाने बलवंत, छिन में होए जाए पसमंत।

प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। सहस खटे लख ओठ तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग दुखिया के करे, नह तृप्त आवे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी किसे प्राप्त होए।

चार अष्टपदी। संत के दुखन आरजा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए। संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे। संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जो लवे। संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन जगत जोन किरमाए। संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले। संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए। संत दुखी कथाओं को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे। संत का निंदक महा अपताई, संत का निंदक खिंच न पाई। संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज से हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे का उसका भी होय मोख। संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित। संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग है।

संत के दोखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दोखी की पूजा ना आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा। संत के दोख ना त्रिष्ट कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया किरत ना मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तुसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास विरास। सब कछ वरते तुसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड पागी नानक जन से श्लोक। तजो सियानक सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी मानुक की टेक बिरती सब जान, देवन कोई क्या भगवान। जिस कह दिए

कहते पाप जपी है हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मखा बड़ता गीते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक को एक एक पछाने इत उत कियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपन आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अंजन कीर्तन केवल ख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा किसकी कटिए जन की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक से न लागे दुख जिसको हर प्रभु मन से त्यावे सो संत सुहेला नहीं बुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तक सब बुझिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई अस्थूल न किस जन्म न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आप अनेक जुगत रखाप उथाप अविनाशी नाही किस खंड तारण तार रहे ब्रह्मांड अलख अभेद पुरुष प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो शोभावंत सगल संसार उदर तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदारन प्रभु के सेवक दुख विसारन आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जप पे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करें बड़ पागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान जो किस करे सो प्रभु के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुबाए हो वै सो होए करने हार पछाने सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिस माहि समाए ओए सुख निदान उन्हू बने आए आप उसको आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जान नहार जाके सिमरन उदरी नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए किस दिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सो है तनवंता होए क्या को गर्भ है जा सब किस किसका दिया दर्भ है आप सूराजे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावे जे को होए बहदा तार किस दिन हार जाने गावार जिस गुर पर साल तू तहो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन जो पाखान नाल चढ़ तर प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर जो अंधकार दीपक करगास गुरु दर्शन देख मन होए विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे क्यों साधु संग मिल जो प्रगटावे इन संतन की बाचो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिललाये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख पर देवन हार अवर त्याग तू किसे चितार जो कछ करे सोई सुखमान पूला काहे फिरे अजान कौन बख्त आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पथ से ती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अभिमान लो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाभ के संत संचाल अवर त्याग दिखिया जंजाल
तन तन कहे सब कोए, मुख ऊजल हर दरगे सोए, क्यों वा पार विरला वा पार है, नानक ता कह सब बलिहार है। चरण साध के तोय पियो, अरब साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवावट पागी पाइये, साध संहर की संगाइये, अनेक विघन के साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस चाखे, ओट गई संतें दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवालंहार, पूखे को देवत आधार, सर्व निधान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लेना पाए, सब किस किस का ओ करने जोग, किस दिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबसे ऊंच निर्मले करनी, पर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोदन निर्मल थिया, जा के मन गुर की प्रतीत, किस जन आवे हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए ते लोए, जा के हृदय को होए, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सतमुख कैत, साची दृष्टि साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोदन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभु भिन्न, तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अभिनय।

सब पाप मिटावे। अवर से आप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा नाग, आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाव। अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरे, गुर वचनी हर नाम उचरे। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हाटे। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड़ पागी है। सतगुर सिख का हल्क पलक सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है। गुर के गृह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए ने कामी, किसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मतले। बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म जन राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कच भरम। सह स्यान लया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेखत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगे गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन सुन तो खातम कपियाने। पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। जेबा एक पुस्तक अनेक, सतपुरुष पूरन विवेक। काहू बोल न पहुँच प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनेक भगत बंधन मुक्त करे, चरण कमल हृदय सिमरे। सब बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने। क्यों हर रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण पास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तहते नासे। तपत माए ठाड वरताई, अंग भया दुख ना ठे भाई। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पहुंचू का निरपौ होय बसे, सगल व्याद मनते खैन से। जिसका साथ तिन कृपा भारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके क्रम गवन, सुन नानक हर हर दस श्रवण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाकार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोए, सर्व निरंतर एक को सोए। पोत पोत रव्या रूप रंग, कहे प्रभा फाद कै संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो धनसार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपास सब मीत विसारो, चरण कमल में उधार। करण कारण सो प्रभ संगरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वत। यो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंठ उठ भावे, सो तन हर सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करे पली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी। अनेक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए।
सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगे परवान। मंत्र बोधो हर कह नाए, दैर्ज स्थावत आवे ठाए। ताको बिघन ना लागे कोए, जा कह हृदय बसे हर सोए। कल पाती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पौ बिन सह पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। चित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। त्यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सासत वेद विचारे। हर की पगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। संग ना चाल तेरे धना, तू क्या लगता में मूर्ख मना। सुत मीत कुटम अर्बनता, इनसे कहो तुम कवन सना था। राज रंग माया विस्तार, इनसे कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, चूठा डंप चूट पासारी। जिन जिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, पगत बिना भो डूबे स्याने। हर की पगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारे चीत। चरण कमल वाको मन माहे, जन्म जन्म के किल विट जाए। आप जपो अगरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुबह नानक गुन गाओ। गुन गाव तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं विख फैल। हो है अचिंत बसे सुखनाल, साफ ग्रह सर नाम समाल। छाड़ स्यान सगली मना, साफ संग पावे सत घना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगे जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सालाए, एको सिमर एको मन आहे। एक के गुण गाव अनंत, मंथन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भये, एक अराज प्राशक गए। मंथन अंतर एक प्रवराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभु आया, परया को शरणाए। नानक की प्रभु बेनती, अपनी पगती लाए। अष्टपदी जाचक जन जाते प्रदान, कर कृपा देवो हर नाम। साजना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो, साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यावो। चरण कमल सो लागे प्रीत, पगत करो प्रभु की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रसार। प्रभु की दृष्टि महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ता में, पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग। परे शरण आम सब त्याग, अंतर प्रगास आम दिन लिवलाग। बल पागी जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख क्रम गया। इच पुनी सरदा सब पूरी, रव रया सब संग हजूरी। जिस पासा तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे की आ जाने।

जी अगन में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जी बिखते काटे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुरपुर है सत्य है बुझाया प्रभ अपना नानक जन के आया साजन संत करो यो काम आम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाओ आप जपो अवरह नाम जपाओ भगत पाए तरिया संसार बिन भक्ति तन होसी चार सर्व कल्याण सुख निदनाम बूढ़त जाप पाए विश्राम सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणकास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एहि सुआओ नेत्रों पेट दर्श सुख होए मन विकसै साध चरण तोय भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा सर्व कृपाल आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जप है सो हो पुनीत भगत पाए लावे मनहित हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निमित हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग कर देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सर्गुण निर्गुण निर्...

फिर जाप अष्टपदी जब अकारना दृष्टि ताप पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वरण चेन न जापत तब हर्ष शोक कोप से व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत को किसको बनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकत को कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभु होए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या चोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान

बहु बेअंत उठते ऊंचा नानक आपस को आते पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप पुण्य तह पई कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार।

ज्ञान आपन खेल आप कर देख है, खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप, जय पसरे पासा संत प्रताप, दो पासा आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतक करे अनंत चोज, आपे रस को गन निर्जोग, जिस पावे तिस आपन ना इलावे, जिस पावे तिस खेल खिलावे, बेसुमार अथा अगनत अतोल है, जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानक एको पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कहे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार, जा तिस पावे ता श्रेष्ठ उपाय, अपने भाणे ले समाए, कुमते पिन नहीं किछ होए, आपन सूत सब जगत परोए, जा को प्रभु जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तप का देता, नानक सगल श्रेष्ठ का जेता, जी जंत्र सबका कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे, तिस तज अगर कहा को जाए, सब सिर एक निरंजन राय, जी की जुगत जा के सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ, गुण निदान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार, पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होत कृपाल, अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप, प्रतपाल है जी अनुभव पात, जो जो रचियो सो तिस एहतियात, जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करे हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक इक जान्या, जन लागा हर एक कहनाए, तिसकी आसना बिरथी जाए, सेवक को सेवा बने आए, हुकम बूझ परम पद पाए, किसते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बस्या निरंकार, बंधन तोर पे निर्वैर, अन दिन पूजे गुर के पैर, ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले, साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभु परमानंद, राम नाम तक करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार, अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ, आठ पैर प्रत्येक खोनेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ, हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उद्धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे तिस साज परीखिया, मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहुँचाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभे खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बौर न आवे जाए, तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उबरे राखन हार ध्याए, निरपौ जपै सकल पौ मिटे, प्रभु कृपा से प्राणी छुटे, जिस प्रभु राखे तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटे अंकार, तिस जन को कोई न पहुँचन हार, सिर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन देखत उदरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रदान, जिस मन बसे सोत निहाल, ताके निकट नावत काल, अमर पे अमरा पद पाया, सात संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रगटी था, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक स्पट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है, नवनिध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तहनाद, कह न जाई अचरज विस्माद, तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत, तरण माए आकाश दयाल, सर्व लोक पूरन प्रताल, बन तिन पर्वत है।
पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम। पौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट बह दिसे समाहे। तिस्ते पिन नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नाम सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सोर नक्षत्र में एक। बाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडोल न कभू डोले। सर्व तला कर खेले खेल, मोल न पाई है गुणे अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तार दे हो स्वामी ओत पोत। गुरु प्रसाद धर्म का नाश, नानक तिन में यो विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी यह रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार सब जाने। अंतर बसे बार भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सर सत, किस तब ते सगली उत्पत। तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार। अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस नहीं मिलाए। कौन निकट कौन कही है दूर, आपे आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूत आप वर्तारा, सर्व नैन आप देखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब के मद अलिप तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इसते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा। आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच। ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर वो ता सो जी पाए। तिस ताकि या सब परवान, गुरु प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस पर साथ सब जगत तराया। जन आवन का यह सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक किस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख।

संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद।

अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत।

शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजे, प्रगटे गोपाल महंत के माथे, नानक उदरे तिनके साथे, शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिराए, मिट गए बैर पहे सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव, आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निभी खेप हमारी।

होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊंच पाए अस्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद्ध नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध,

पास सुंदर चतुर तट का बेता सुंदर सी एक दृष्टेता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा से जम से छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए।

जन्म मरण बहु जोन प्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त न रंच नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक खट शास्त्र ऊंचो कहे अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ के द्वार। पौड़ी खस्तम

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर जस

आए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार। आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राय, दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए। आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवा।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल पौड़ी। अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिद, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत्र, सगल धर्म पवित्र स्नान।

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इक ठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब में पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एव धर्म।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस को खै, गुर पूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईए। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अकत उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन नाम मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरख सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसादियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुरख।

कुंठ प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दशे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ टेक जल थल वन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

नाम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रमन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभु।

को उपदेश है को दृढ़ है तिसका होए उदार। किलबिख का तय होई निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुख ऊज।

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर

हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार हो मैं मैल बिख उतरे हर अमृत हर उद्धार सब कार्य तिनके सिद्ध हैं।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विच्चों तिस्तिया न कोए, सतगुर सबना दा कला मनाएंदा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुरु नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए, नानक करता सब किछ जानदा जिदू किछ गुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साहिब

जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे, गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निर्भय निर्वैर निरंकार, जिन जपिया एक मन एक चित तिन लत्ता हो मैं पार, जिन गुरुमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास, सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुण तास, जन नानक नाम त्याय तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे, जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, तिन के मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए, ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगे सच्ची पहनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए, जा सतगुर सराफ नदर कर देखे स्वावगीर सब उगर आए, ओए जेहा चित में नित तेहा पाएन, ओए ते हो जेहे दैव जाए, नानक दोही श्री

करे कनेरियां, जे कारवत होवे साई खाए, बिन सतगुर सोजी ना पवे, अहंकार न विचों जाए, अहंकारियां नो दुख भुख है, हाथ तड्डे कर कर मंगाए, कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, मुलम्मा पाज ले जाए, जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुर मिले प्रभ आए, ज्यो लोहा पारस पेटिए, मिल संगत सुवरण होए जाए, जन नानक के प्रभ तू तनी, ज्यो पावे तिवे चलाए, पौड़ी जिन हर हृदय सेविया, तिन हर आप मिलाए, गुण की साज तिन स्यो करी, सब अवगुण शब्द जलाए, अवगुण विकण पलरी, जिस देह सो सच्चे पाए, बलिहारी गुरे आपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए, वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए। श्लोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, जो अंदिन हर हर नाम ते आवे, हर हर नाम रमत सुत संजम, हर नामे ही तृप्तावे, हर नाम तान हर नाम दीबाण, हर नामो रख करावे, जो चित लाए पूजे गुरमूरत, सो मन इच्छे फल पावे, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार दिवावे, फिर ओ वेला ओ हथ ना आवे, ओ अपना बीजिया आपे खावे, नरक कोर मुह काले खड़िया, ज्यो तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरणी पवे, ता उबरे जा हर हर नाम से आवे, हर बाता आख सुनाए, नानक हर करते एवे पावे। महला चौथा। पूरे गुर का हुक्म न मन्ने, ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिकमाया, उस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे, अनहोंदे झगड़े दे उस दे गल पाया, ओ गल परोसी करे बहु तेरी, उस दा बोलिया किसे न पाया, ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन, उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया, गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते, उस दा पाक छड़ गुर पाक बह जाया, जो गुर गो पे अपना सो परा नाही पंचो, उन लाहा मूल सब गवाया, पहला आगम निगम नानक आप सुनाए, पूरे गुर का बचन ऊपर आया, गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की, मन मुखा ओ वेला हथ ना आया, पौड़ी सच सच्चा सब दू वड्डा है, सो ले जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईदा, सच सच्चा सतगुर इके, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंजे दूत कीते वश के, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे, तिन अंदर पूर फिट फिट मोह फिके, ओए बोले किसे न पावनी, मोह काले सतगुर ते चुके। श्लोक महला चौथा। हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसानी लाया, गुरमुख बख्त जमायन, मन मुखी मूल गवाया, सबको बीजे अपने पले नो, हर पावे सो खेत जमाया, गुर सिखी हर अमृत बीजिया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया, जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करते मार कढाया, किरसानी जमी पाओ कर, हर बोहल बख्श जमाया, तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन, जिनी सतगुर पुरख ते आया, जन नानक नाम अरादिया, आप तरिया सब जगत कराया। महला चौथा। सारा दिन लालच अटिया, मन मुख होरे गल्ला, राती ऊंगे दबिया नवे, सोत सब चिल्ला, मन मुखा दे सिर जोरा, अमर है नित देवे पला, जोरा दा आखिया पुरख कमाव दे, से अपवित अमेद खला, काम व्यापे कसुद नर, से जोरा पुछ चला, सतगुर के आखे जो चले, सो सत पुरख पल पला, जोरा पुरख सब आप उपायन, हर खेल सब खिला, सब तेरी बनत बनावनी, नानक पल पला। पौड़ी तू वे परवाओ अथाओ है, अतुल क्यों तुलिए,
सेवड पागी जे तुद त्याइंदे जिन सतगुरु मिली है। सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है सतगुरु की रीस है। होर कच पिच बोल दे से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है, ओना अंदर होर मुख होर है। बिक माया नो चक मरदे कड़ी है, श्लोक महला चौथा। सतगुरु की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले। जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सत्य वख कड्डे जजमाले। सत्यार सिख बह सतगुर पास, कालन कूड़ियार न लबनी कितए खाए पाले। जिना सतगुर का आखिया सुखावे नाही, तिना मोह पलेरे फिरे दे गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से कितरक वेरायन मनुख बेताले। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, ओह आप वरते अपनी वथ नाले। जन नानक इक ना गुर मेल सुख देवे, इक आपे वख कड्डे ठगवाले। महला चौथा। जिना अंदर नाम निदान, हर तिनके काज दे आंदे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंग कर बैठा पास। जा करता वल ता सबको वल, सब दर्शन देख करें सावास। साहो पात साहो सब हर का किया, सब जन को आए करें रह रास। गुरपूरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया। गुरपूरे दान दिया हर नेचल, नित बख्शे चढ़े सवाया। कोई निंदक वड्याई देख न सके, सो करते आप पचाया। जन नानक गुण बोले करते के, भगतानो सदा रखदा आया। पौड़ी। तू साहिब अगम दयाल है वरदाता दाना, तुझ जेवड मैं होर को दिस न आवई। तू है सुगड़ मेरे मन पाना, मो कुटंब दिस आमदा। सब चलन हारा आवन जाना, जो बिन सच्चे होरत चित लाए दे। से कूड़ियार कूड़ा तिन माना, नानक सच त्याए तू। बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। श्लोक महला चौथा। अगो दे सत पाओ ना दिच्चे, पिछो दे आखिया कम ना आवे। अध विच फिरे मन मुख विचारा, गली क्यों सुख पावे। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे। ता प्यो पीवे शब्द गुर केरा, सब कारा अंदेशा परम चुकावे। सदा आनंद रहे दिन राती, जन नानक अंदिन हर गुण गावे। महला चौथा। गुर सतगुर का जो सिख आखाए, सो पलके उठ हर नाम से आवे। उदम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृत शरण आवे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविक पाप दोख ले जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बेंदियां उठदियां हर नाम से आवे। जो सास दिरास से आए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक तूर मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे। पौड़ी। जो तुद सच त्याए दे, से विरले थोड़े। जो मन चित इक अराध दे, तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े। तुदनो सब त्याए दी, से थाए पए जो साहिब लोड़े। जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे, से मोए मर जम्मे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कडे मुख खोले। मन खोटे दया विछोले। श्लोक महला चौथा। मल जूई परया नीला काला, खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुखैनो पाया। पास न दे कोई बहन, जगत में गू पड़ सगवी। मल लाए मन मुख आया, पराई जो निंदा चुगली। नो वे मुख कर कै पेजिया, ओथे भी मुह काला दुआ वे मुखा दा कराया। पढ़ सुनिया सबत जगत विच पाई, वे मुख सने नफरे। पौली पौदी फावा होए कै उठ कर आया। अगे संगति कुड़मी, वे मुख रलना ना मिले। ता वोटी पतीजी फिर आन कर पाया।
हलत पलत दोवें गए नित पुखा फूके तिहाया। तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया। जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो साचे मार पचाया। एहो अखर तिन आख्या जिन जगत सब उपाया। महला चौथा साहिब जिसदा नंगा पुखा होवे तिसदा नफर किथों रज खाए। जे साहिब कै कर वथ होवे सो नफरे हथ आवे। अनहोंदी किथों पाए जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगिए। सा सेवा औखी होई नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की। फिर लेखा मंगे न कोई पौड़ी नानक विचारे संत जन चार वेद कहंदे। भगत मुख है ते बोल दे से वचन हो वंदे। प्रगट पहारा जापदा सब लोग सुनंदे। सुख ना पायन मुगद नर संत नाल खांदे। ओए लोचन ओना गुणे नो ओए अंकार सरंदे। ओए विचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे। जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे। वैर करें निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे। जो जो संत सरापिया से फिरे पवंदे। पेड मुंडा हूं कटिया तिस नाल सुकंदे। श्लोक महला चौथा। अंतर हर गुरु त्याए दा वड़ी वड़ियाई। तुस दित्ती पूरे सतगुरु कटे नाही इक तिल किसे दी कटाई। सच साहिब सतगुरु के वल है ता चक चक मरे सब लोकाई। निंदका के मोह काले करे हर करते आप वदाई। ज्यो ज्यो निंदक निंद करे त्यों त्यों नित नित चढ़े सवाई। जन नानक हर आराध्या तिन पैरी आन सब पाई। महला चौथा। सतगुर सेती गणत जे रखे हलत पलत सब तिसका गया। नित चहिया पाए चगू सुटे चखदा चखदा चढ़ पया। नित उपाव करे माया तन कारण अगला तन पी उड़ गया।

सब पाप जगते का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ताके हु सेती रल गया, जे गुर की सरणी फिर ओह आवे ता पिछले अवगुण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याय दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोचिए ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ओना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की ते

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कार्य सब सवारे जो इच्छे सो फल पाए सी पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरु सिख मित प्यारे। महला चौथा जिनको आप दे वड्याई जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए डरिये ता जे किछ आप दू कीचे सब करता अपनी कला वधाए देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए अपने आप भगता की रख करे हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोका ले कराए सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई हर कीरत भगत नित आप कराए अनदिन नाम जपो गुर सिखो हर करता सतगुर करी वसाए सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मोह कढ़ाए गुर सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा गुर का जयकार संसार सबत कराए जन नानक हर का दास है हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी तू सच्चा साहिब आप है सच था हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे सच देवे सच वणंज लें गुण कथे निरारे सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लिखारे। श्लोक महला चौथा जिस अंदर ताप पराई होवे किसदा कदे न होवी पला उस दे आखे कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया कर्म करती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए गला ऊपर तपा

जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आप सुनाए। मैला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर टोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मोह फिके थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना से लेंदे तहां फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे, नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आखिया को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख ना सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत दुआई। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर दिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। कुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की वड्या

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें जिसके मस्तक हाथ तरया गुर पूरे सो पूरा होई गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे तैज रखे प्रव सोई पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले विण काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ को टोया कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना होया।

चरण तोया, गुर सतगुरु पिछे तर गया, जो लोहा कार संगोया, जन नानक नाम से आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागनी, जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एवो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सत्य की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या, इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस तिन कह हृदय है, जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगह ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपो नाम से आया, तिनको पो कोई ना है, हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पे नाई है, जिन हर उठा मन माहे, ओए आप करे सब कुटम स्यो, तिन पिछे सब जगत छड़ाहे, जन नानक को हर वेल जन, तिन वेख वेख।

0: से जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वै पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुरु अमर है, जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु, ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मनमुख हारिया, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेले उन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर पावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए सी। जिन रखन को हर आप होए, होर के सी चक चक जाए सी। जन नानक नाम ते आए तू, हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा। गुर सिखा के मन पाव दी, गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की, नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर, तिन सब आन निवाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर, तिनके सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले, बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन, जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आप सलाही सिर्फ सच, सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया, से तृप्त रहे आघाई। एहो हर रस से ही जान दे, ज्यो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया, मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टो सद कुम कोलिया। हर मेलो सज्जन पुरख मेरा, सिर तिन विट्टो तन रोलिया। जो सिख गुर कार कमावे, हों गुलम तिना का गोलिया। हर रंग चलू ले जो रते, तिन पिन्नी हर रंग चोलिया। कर कृपा नानक मेल गुर पै, सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा। औगुणी परया शरीर है, क्यों संतो निर्मल होए। गुरमुख गुण वे हाजी है, मल हों मैं कड्डे तोए। सच वणन जै रंग स्यों, सच सौदा होए। तोटा मूल न आवई, लाहा हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया, जिना तुर लिखिया।

मन वसै सच सच्चा हर रखवाले, सच सच्चा जिनी अरादया से जाय रले सच नाले, सच सच्चा जिनी न सेविया से मनमुख मूड बेताले। ओ आल पताल मुंह बोल दे ज्यों पीते मदमत वाले।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया, ओए पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया, हर नाम दृढ़ावे हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया, गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया, तुद आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया, तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया, कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मोह जम मारिया, तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया, सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हिरदय नाम समारिया, जन नानक के गुर सिख पुतो, हर जप्यो हर निस्तारिया, महला तीजा, हौ मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया बिकार, सतगुर मिले ता नदर होए, मन मुख अंध अंधियार, नानक आपे मेल ले, जिसनो शब्द लाए प्यार, पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे, जिन्नी इक मन इक अरादिया, तिनका कंध ना कबहू छिजे, तन तन पुरख सवास है, जिन सच रसना अमृत पिजे, सच सच्चा जिन मन पामदा, से मन सच्ची दरगह लिजे, तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे, श्लोक महला चौथा, साकत जाए निवे गुर आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़ आरे, जा गुर कहे उठो मेरे पाई, बह जाए कुसर बगुलारे, गुर सिखा अंदर सतगुर वरत, चुन कड्डे लद्दो वारे, ओए अग्गे पिछे बह मोह छुपाए, ना रलनी खोटे आरे, ओना दा पख सो उथे नाही, जाए कूर लैन पेडारे, जे साकत न रखावाये, लोचिये बिख कड्डे मुख उगलारे, हर साकत सेती संग न करियो, ओए मारे सिरजन हारे, जिसका यो खेल सोई कर वेखे, जन नानक नाम समारे, महला चौथा, सतगुर पुरख अगम है, जिस अंदर हर उर्धारिया, सतगुरु नो अपड़ कोई ना सके, जिस वल सिरजन हारिया, सतगुरु का खड़क संजो हर भगत है, जित काल कंटक मार विडारिया, सतगुरु का रखन हारा हर आप है, सतगुरु के पिछे हर सब उबारिया।

रंग सुभाए सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विस्त

बहु रोल कचोला गुरमुख जापै शब्द लिव लाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए ज्योतिष पावे सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किछ जानदा जो जी अंदर वरते तू करता आप अगणत है सब जग विच गणते सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बनते तू कट कट इक वरतदा सच साहिब चलते सतगुरु नो मिले सो हर मिले नाही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाइए चित क्यों सास गिरास विसारिये बहंदिया उठदिया नित मरण जीवन की चिंता गई इहो जीड़ा हर प्रभु वस ज्यों पावे त्यों।

दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे लय जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन, तिना दरगे लय छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए मतहारी, कूड़ कुसत उह

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

आपो आपनी आपे पछताणी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े काणी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान।

पंजवा अब खद सबे की त्यन निंदक का दारू ना है आप पुलाए नानका पच पच जोनी पाहे पौड़ी पंजवा तुस दिता पूरे सतगुरु हर तन सच अखुट सब

खांदे सुख ना पाएन मुगद नर संत नाल खांदे ओए लोचन ओना गुणा नो ओए अहंकार सड़न दे ओए बेचारे क्या करें जा पाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे न संदे वैर करन निर्वैर ना।

पंजवा गुरु नानक हर नाम दृढ़ाया पन्नन करण समरथ प्रभ सदा समाले मित्र तू दुख सबाया लथ। महला पंजवा खुद आवंत ना जाने लाज कुलाज कुबो

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरख सुने

सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे, गुर सिक्खा की काल सच्चा थाए पावे। विन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिक्खा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना

जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवर तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों।

हर हर नाम जो जन जपै सो आया परवान, तिस जन के बलिहारणे जिन पजिया प्रभ निर्वाण, जन्म मरण दुख कटिया हर पेटिया पुरख सुजान, संत संग सागर तरे जन नानक सच्चा तान। महला पंजवा, पलके उठ पराहुना मेरे घर आवो, पाओ पखाला तिसके मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ सरना।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर भेटिया।

नानक नाउ जो पंदो तिस्तानी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी। सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी। तोसा दिच्चे सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी, मूल न उतरे पुख। नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया। पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरत अपना बिनसे सब मंदा। पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वत्सल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा। नानक जा

नानक सह सह गंत। महला पंजवा विसारे दे मर गए मर भी न सके मूल, वे मुख होए राम ते ज्यो तस्कर उपर सूल। पौड़ी सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, जल थल मैयल पूरिया कट कट हर पणिया, ऊंच नीच सब इक समान कीट हस्ती बनिया, मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया, तुस नानक देव।

विखय कौड़तन सगल माहे जगत रही लपताए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाम पौड़ी। ए निशानी साधकी जिस पेटत तरिय जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिय पव सागर संसार बिख सो पार उतरिय हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिय।

तिस मन वसिया सोए पौड़ी। सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाव मिठा, साध आया तिन हर जना चख सादी डिठा। पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा, एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा। हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवां।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान होए।

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनी है हर मंतन संदड़ी वथ। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद ना छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोज कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तो वे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटी है मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक खणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजै जाए तिथाओ मौजूद।

चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी हंसा से ती चित उलासे कुकर दी ओडारी पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

पंजवा जाचक मंगै नित नाम साहिब करे कबूल नानक परमेसर जजमान तिसे भुख ना मूल। पौड़ी मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम स्यों ए हस्ती कोड़े राज मिलक खुशियां कणी त्याए मुख ना मोड़े टाडी दर प्रभ मंगना दर कदे ना छोड़े नानक।

14 अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सो

तू सतगुर हौ नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौरी कबीर जी, जब हम एको एक कर जानिया, तब लोगे काहे दुख मानिया। हम अपत्ते अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। रहाओ हम मंदे मंदे मन माही, साँझ पात काहू स्यो नाही। पत

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिय पाई, खुश रह क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्रात स्नान कराही।

मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण।

राजा रंक दो मिल रोई है, जो पैरसना राम न कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो। रहाओ जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कौ का की माया। जस जंती मह जियो समाना, मुए मरम को का कर जाना। हंस

तट तीरथ नहीं मन पतियाए, चार अचार रहे उर्झाए, पाप पुन दोए एक समान, निज कर पारस तजो गुण आन, कबीर निर्गुण नाम न रोस, इस पर चाहे परच रहो एस। गौड़ी कबीर जी, जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना।

आई, लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन

ता सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभ कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद कै पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाथे ही गै मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगति आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हो तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत वर्ष तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी। काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब को जाने, मुआ कबीर रमत श्री राम। गौड़ी कबीर जी। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उरवार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई।

टुके। जमते उलट पए हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। बैरी उलट पए हैं मीता, साकत उलट सुजन पए चीता। अब मोहे सर्व कुशल कर मानिया, सांत पई जब गोविंद जानिया। रहाओ तन में होती कोट उपाद, उलट पई सुख सह समाद। आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब

जिन राम जानिया तिने पछानिया, जो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुखमन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रवो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी।

मोल अब मोहे राम अपना कर जानिया सह सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ ब्रह्म कथ कथ अंत न पाया राम भगत बैठे कर आया कहो कबीर चंचल मत त्यागी केवल राम भगत निज पागी गौड़ी कबीर जी जिहे मरने सब जगत तरासिया सो मरना गुरु शब्द प्रगासिया अब कैसे मरो मरन मन

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए, रहाओ काको जरे काए हुए हान, नटवट खेले।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे। विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जाने पे हो, ए मन लीन पे।

कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग जग को ठगोरी लाई, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई। रहाओ कौन को पुरख कौन को नारी, या तत लेहो।

पाई, जन्म मरण कट परम गत पाई, रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए, अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार, चरण कमल स्यों लागे।

दृढ़ाई। पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक, थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक, मुए फुन सूतक।

हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोग गुण से क्या कहिए, जो प्रभु किए भगत ते बाज।

कोई। कुशल कुशल करते जग बिन से कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम।

गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माए निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेदिया पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागी गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर मानिया।

पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो, तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बन जारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटवा।

पंडित गुणी सूर हम दाते एक कहें बद हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने बिकारा हर पद दृढ़ कर रही।

जोड़न हारो सदा अतीता ए कही है किस्माहे। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग होए विनाशी काको ठाकुर।

मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिये तोल न तुलिये पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई।

होए महोए जित कट नाम ना उपजै फूट मरे जन सोए सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ साध मिले सिद्ध।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो विसारे रे हीरा लाल।

उनमत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न तारियो रे स्वाद लुबत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बिकारियो रे कर्म पाग संतन संगाने कासट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म प्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिल।

राम नाम तन कर संचौने सो तन कथि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है। रहाओ इस तन कारण शिव सनकादिक खोजत पै उदासी। मन मुकंद जेहबा नारायण परे न जमकी फासी। निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा। जलत अम्ब थम्ब

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुबद ना त्याग दयो، जो जो कर्म किए लालस्यों ते फिर ग्रह परयो، भगत बिन बिरथे जन्म गयो، साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहो रहाओ۔ ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किन्हें ना कराओ लयो، तैसे प्रमत अनेक जून में फिर काल हयो۔ या तन जोबन अर सुत दारा पेखन को जो दयो، तिन ही माए अटक जो उर्जे۔

सतगुर ओट लयो गौड़ी। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं ना ही कछ आए न मोरा, तन तन सब रस गोविंद तोरा। रहाओ इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंक की बार गगरिया फोरी। कह कबीर इक

रास रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देखना हरखिए विपत देखना रोए ज्यों संपै त्यों

पूर्णा पीजे पग न खिसे, हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे, बेग मिली जय अपने राम प्यारे। रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण, हर की

कहां पया नर देवा तोखे क्या जल बोरियो गया था जीरे जाहेगा मैं जाना अब जत समझ आना जत जत देखो।

परम प्रकट होए नाचो, या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंगते डरपे, सती के सांचे पांडे डगमग छादरे मन बहुरा, अब तो जरे मर...

नाम तेरा आधार मेरा जो फूल गई है नार, कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन में प्रमत नंद बहु ठाकोरे, भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहाँ थोरे। रहाओ संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी।

ता वैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए, हृदय शुद्ध जो निंदा हुए, हमरे कपरे निंदक तोए, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माए हमारा।

बांधी बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुसे कर जाई। रहाओ पंच पहरुआ दर में रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चित होए रहो तौले परगास उजारा। नौ कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई कैत कबीर नवे कर मूसे दसवें सत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर

दिखै रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पहे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थानाना। ते बड़ पाग बस्यो मन जाके कर्म प्रदान मथाना ना। काट सकत

जहें अबोल तह मन ना रहावा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार। बटक बीज में रव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे, कछ कछ पायो पेद। उलट पेद मन बेदियो, पायो अपंग अछेद।

लिख अर मेटे ताहे न माना, ओंकार लखे जो कोई सोई लख मेटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा।

टट्टा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के न जाही, देख अटल टल कतह न जावा, रह लपट कट पर चो पावा। ठट्ठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा, जिन ठग ठग गया।

नानवे ना फुन संचर है तन जन्म ताही को गणे मारे एक तज जाए कणे तत्ता अतर तरयो न जाई तन त्रिभवन में रहो समाई जो त्रिभवन तन माहि समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थत्था अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आ

अब पौ पान परोसो आवा जो बाहर सो पीतर जानिया पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने मरमी होए सो मन को जाने मत कोई मन।

निरोधो कट पर चै जो उपजय पाओ पूर रहा तह त्रिभुवन राव खखा खोज पर जो कोई जो खोज

वारे अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना जब ही होए तब है मन माना।

सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार, जा कह जी जय।

अंतरजामी राम समारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपो शब्द तत निज सार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पै मन निर्मल, हर कीर्तन में

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहु न बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति, राम गुसैया जी के जीवना मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहा, मेरी हरो विपत जन करो सुभा।

सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारिय कट पीतर विविध विकार, शुद्ध कमन पर होए वो सुच कुंज।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोनिया मन

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा।

गुर प्रसाद वसे मन आए, दुख अनेरा विचों जाए। साच प्यारा आप करे, अवरी को साच न दे, जे किसे दे।

इत रंग नाचो रख रख पाओ, सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ, नानक आखन वीरा वीर, इत रंग नाचो रख रख पैर, आसा मैला पैला, पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया, अंधुले दे दिस मुंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया, क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए, रहाओ जी उपाय जुगत हथ कीनी, काली नाथ क्या वड़ा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्व निरंतर रव रहा, नाल कुटम साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, और पखलाए जे असी किया,

भनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सास सुहागण होए, आशा मेला पहला गृह बन समतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेक बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा

सिंध तन मन हर पै आगे जिंद झूठ विकार महा दुख दे देख वरन दिसे सबके जो उपजे सो आवे जाए नानक अस्थिर नाम रजाए आसा मेला पहला एको सर्वर कमल अनूप सदा भी

जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निधान, हर बार जिन पाया तन नारी, हर स्यो राती शब्द विचारी, आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे, हमरी जात पथ सच नाओ, कर्म तर्म संयम सत भाओ, नानक बस

एक तरण गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत पौ।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला तो किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरुमुख सच लही है, अकत कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार, शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ अठ मज्जन हर रस।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले तहु मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा करे।

ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पद मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग पगत हर रंगा, अंदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम पगत जन रहे मिरारा। पूती काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अपार।

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक कह।

मन आए नजर करे सा सतगुरु मिले सनमत नानक पौ जल करे हासा मेला पहला पंच पदे दुध बिन तेन पंख बिन पंखी।

अंध जीव रख नाही, तन्नी पवन न वाजे, चरनी चले पजूता आगे, बिन सेवा फल लागे, अखर बिरख बाग पोए चोख।

सब जप तप जिस हर हृदय अलखा व्यवहार नानक राम नाम मन राता गुरमत पाए सहज सेवा आशा महला पहला पंच पदे।

जा पंच राशी ता तीर्थ वासी कुंगरू वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसियो आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी।

कोई नदर करे मेलावा होई राव सरोरड़े तन साथ पछाणिया सहज सुभाए अपना फिर जानिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामण कंते मन भावे कहत नानक पै पाव का करे सिदार सभी से जैरवे पकार आशा महला पहला।

कह कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जय देखा तह को सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेत समूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक।

एक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश। इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मेला पहला लख लख

लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जीवस है नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमसो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक थे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राओ सच्चा नावन तासी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कभू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े छोड़ विलायत देश बहे, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए। साध सहज सुख रस कष्ट जियले, कापड़ छोड़े।

सूत पोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवे नानक जात कैसी आसा कर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासे फिर ना रहे जैसे पवे उदासे मन मेरा दयाल सेती फिर ना रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ फूल माला गल पहरोगी हारो मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिगारो पंच सखी हम एक पतारो पेड़ लगी है जीड़ा चालना।

इमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेजे आवे ता नानक भोग करे। आसा मेला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिए भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला पुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाउड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

मां हंडाव जो किछ करे पला कर मानो सहज जोग निध पाव। बाबा जुगता जियो जुग।

शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादन सिंगी शब्द सदा तुम सो है एन स्तूर नादन पक विचार ज्ञान मत दंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं ऐसा मेला पहला गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है।

परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त वैकुंठ करे क्या सिख तीरता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर जोगी खीवा अमृत धारे आशा मेला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने ते की दर्द न आया करता तू सजना का सोई जे सकता सकते को मारे काम रोस न होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसने सा पुरुष।

जेको नौत आए वड्डा साध करे मनभाणे खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ताक छुपाए नानक नाम वखाणे।

पाए। जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुगाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बक्स मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत्सर हर जल नाया, दुर्मत महल सब दुर्त गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण बिगाड़े, दूजे पाए आत्म संगार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, पुस्तक निंदा गुर समझण आई, इस युग में लाहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, एथों छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा।

तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई। सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोय सम कर।

प्यार तुरो फुरमाए, बिन सबदे को थाए न पाए, करने की रत नाम वसाए, आपे देवे टिल न पाए, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे वपार।

सुहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चित लाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुथाली अंदिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची जिस

हे कर्म कमाए सब दे ऊंचो ऊंचा होए नानक साथ समावै सोए आसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुधाए गुर कै पैसा चै साठ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपनी पथ खोए मेरे मन हर जप सदा।

अंतर निर्मल अमृत सरनाए, सदा सूचे साथ समाए। हर सब वेखे सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जा जाओ तै वेखा सोए, गुर बिन दाता अवरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवन हार, नानक बख्शे बख्शन हार, आसा मैला तीजा। गुर सायर सतगुर सच सोए, पूरे पाग गुर सेवा होए, सो बुझे जिस आप बुझाए, गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे, अंधन जागे वेखे सच सोए, रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए, पूरे गुर पे सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाने, आवन जान रहे फिर नाम समाने। जम्मा मरना है संसार, मनमुख अचेत माया मोह गुबार, पर निंदा बहुकूर कमावे, विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए, गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए, पौना मन्ने सदा सुख होए, नानक सच समावे सोए, आसा मैला तीजा। पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद, सतगुर पेटे गुर गोबिंद, ना फिर मरे ना आवे जाए, पूरे गुर ते साच समाए। जिनको नाम लिखिया तुरलेख, ते अंदिन नाम सदा त्यावे, गुर पूरे ते भगत विशेख, रहाओ जिनको हर प्रबलय मिलाए, तिनकी गहन गत कहीं न जाए, पूरे सतगुरु दित्ति वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाए। जो किछ करे सो आपे आप, एक कड़ी में थाप थाप, कह कह कहना आप सुनाए, जे सो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए, जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए, ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड होर पर नाही कोए, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरे शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा मैला तीजा। नृत्य करे बहु वाजे बजाए, यो मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए, अंतर लोभ परम अनलवाओ, दीवा बले न सोजी पाए। गुरमुख भगत कट चानन होए, आप पछाण मिले प्रभ सोए, रहाओ गुरमुख निरत हर लागे पाओ, पूरे ताल विच्चों आप गवाए, मेरा प्रभ साचा आपे जान, गुर के सबल अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार, गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए, पाखंड भगत निरत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी पव जल तरे, गुर के बचन भगत खाए पाए, हर जियो आप वसे मने आए, हर कृपा करे सतगुरु मिलाए, नेचल भगत हर स्यो चित लाए, भगत रते तिन सच्ची सोए, नानक नाम रते सुख होए।

होई गुर प्रसादी मन से हर बूझे सोई मैं समुदाता एक है और ना ही कोई गुर कृपा ते मन से ता सदा सुख होई रहाओ इस युग में निरपो हर नाम है पाई है गुर विचार बिन नामे जम के बस है।

जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई, नानक नाम सलाए तू गुरमुख गत होई। आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तू करता सत्यार में डासाई

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सब ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा सा हर दूजा महला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुख नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुहाई, हमारा तरह हर व्या समाई, हम हर स्यों तरह किया मेरी हर केक, मैं हर दिन पक तरह

कहे मन खोट कमाहे, हम हर्ष्यों तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है। ये सब तड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा पाओ तड़े बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अहंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तड़ा कर्म सब श्रेष्ट जिने आवे। आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ। मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वडपाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपूरे नानक हर पाया, गुरपूरे नानक हर पाया। आसा मेला चौ

आ जाए वडे पाग गुरमुखर पाए नाम हीन कालक मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाप कर पाया नानक गुरमुख नाम दिवाया आसा मेला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण कर्म।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत कट कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा। पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उठापे, नानक नाम देवे हर आपे। आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई। हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही। मारिया काल जम कंकर पुयंगा, रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई। गुर सिखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने। जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग हो मैं वड ऊंचे। नानक नाम जपे सच सूचे, आसा मेला चौथा। हर हर नाम की मन भूख लगाई, नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई। नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता, नाम जपो नाम में सुख पावो।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पास बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए चरबेल। पाया नगर में कर्म हर बोवो हर जा में हरिया खेत मनुआ सिर बैल मन जोवो हर सिंचो गुरमत जेत। जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी जो देहो मति तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा कब को पाले कुंगरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह न सको जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा। कब को मेले पंच सत गायन कब को राग तुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे कब को हाथ पसारे हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे तब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे लोक पति ने ना पत होए जन नानक हर हृदय सद त्यावो ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो सोई फल पाओ फिर भूख न लागे आए। आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत पले तुद पावे जिनकी पत पावे खाए। नानक आत्मा राजे हर गुण जो आखे त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए हर अपने गुण गाहक वनज ले जाए।

गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है, गुर पूरे साबास चलन जानिया, लाहा नाम सो सार सबद सुनाणिया रहाओ। पूरब लिखे देह से आए माया, चलन आज के कल।

जीवन मरण सुख होए जिना गुरु पाया, नानक सच्चे सच सच समाया। आसा मेला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी बुझ सच समाया, जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर्श चैस्यार मेल बुलाया राव, अंतर नाम निदान गुरु मुख पाइए, अंजन नाम से आए हर गुण गाइए, अंतर वस्त अनेक मन मुख नहीं पाइए, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआइए, नानक आपे आप खुआइए, गुरमत मन पर गास सच्चा पाइए। राग आसावरी कर सोलवा के दूसरा महला चौथा सुधंग इको अंकार सतगुरु प्रसाद। हूँ अन दिन हर नाम कीर्तन करो, सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहा, हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हूँ एक खिन, जैसे हंस सरवर बिन रह न सके।

हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान। आसावरी मैला चौथा माई मेरो प्रीतम राम बताओ री माई। हों हर बिन खिन पल रह न सकूं जैसे कर हल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके तैसे मोय हर बिन रह न जाए। राज करण जगदी सुर प्यारे मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक कै मन अंध होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस पौ बोस दिखाया, पाई मीत कुटुंब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे, ऐसा देख विमोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा।

इक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे। तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए, त्रै गुण मोहे मोहा आकाश, हम

जो तू कहे सो कार कमावा जन नानक गुरुमुख नेड़नावा। आसा मैला पंजवा ससु ते फिर की नीवाक देर जिठानी मोई दुख संताप।

दुखिया त्यागी लोगारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साध पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राति तन सुहागन।

हर सेती ओर है समाए आपा मैला पंजवा निज तगती सीलवंती नार रूप अनूप पूरी आचार जित ग्रह वसै सो ग्रह सो बावंता गुरमुख पाई किने विरले जनता सो करणी कामन गुरमिल हम पाई जज काज परथाए सुहाई रहाओ जिचर वसी पिता के साथ टीचर कंक बहु फिर उदास कर सेवा सब पुरुष मनाया गुर आनी कर में सा सर्व सुख पाया बत्ती सुलखणी सत संतत पूत आज्ञाकारी सुगर स्वरूप इस पूरे मन कंत स्वामी सगल संतो की देर जेठानी सब परवार माए श्रेष्ठ मत्ती देवी देवर ज्येष्ठ तन सो गृह जित प्रगति आए जन नानक सुखे सुख विहाए।

तप तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, पर थाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै नाले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुन उपदेश सतगुर पे आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाए अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा मैला पंजवा परदेश चाग सौदे को आया, वक्त अनूप सुनी लभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन यो

अमोल रत्न अमोलारास विष्ट सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल चीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सहा पूरे बक्सिंद सौदा गुरमुख किने।

ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਪਏ ਗਤ ਸੰਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ।

तावत रहे एक एक बूझिया, आए बसे अब ने चल खाए, जगत उदाहरण संत तुम्हारे, दर्शन पे खत रहे अघाए, जन्म दोष परे मेरे पाछे, अब फकरे ने चल साधु पाए, सहज तुन गावे मंगल मनुआ, अब ताको फुनकाल न खाए, करण कारण समरथ हमारे, सुखदाई मेरे हर हर राय, नाम तेरा जप जीवे नानक, ओत पोत मेरे संग सहाय, आशा मैला पंजवा, अरड़ावे बिललावे निंदक, पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ, जे कोई उसका संगी होवे, नाले ले सिदावे, अनहोंदा अजगर पार उठाए, निंदक अग्नि माए जलावे, परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते, सो नानक आप सुनावे, भगत जना को सदा आनंद है, हर कीर्तन गाए बिकसावे, आसा मेला पंजवा, जो मैं कियो सगल सिदारा, तो भी मेरा मन ना पतियारा,

वस्त्र विकोखन सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पथ शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु पावा ता सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिलबे एहो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

गली गर्भ है मुख गोवे ज्ञान, सब विद कोई लोभ स्वान। काकर पैर है पोगे पोग, आचार करें शोभा में लोग, चोआ चंदन सुगंध विस्थान।

कृपा तुझ पे दाम, सील बिगाड़ो तेरा काम। जा को दृष्ट मया हर राय, साबंदी ते ले चढ़ाए, साध संग मिल हर रस पाया, कहो नानक सफल ओ काया। सब रूप सब सुख बने सुहागन,

में चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अब सब मुख पाया, गुर सब दी रस अमृत पीवे। रहाओ काची मटकी बिनस बिनासा, जिस छूटे तृप्ति तिस निज पर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला, तरन पड़े तिस लगे न काला, क्रमत फिरे तिन किछु न पाया, से अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर कमाल, नानक गुर मिल पे निहाल, आसा महला पंजवा, उतरी तेरी बिद कर थाती, जान सत कर

0: अस्त रख परे ते चान, इस ऊपर ले राख्यो गुमान। एक वस्त बूझे ता हो वे पाक, बिन बूझे तू सदा न पाक। कहो नानक गुर को कुर्बान, जिससे पाये हर पुरुष सुजान। आस्था महला पंजवा, एक तुके चौक दे।
1: एक कड़ी दिन सुनो तो बहुत दिहारे।

सब अंत न जाने पंच दूत मिल फिर विछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

जन बकरा मोको कहाँ डवाई रहाओ हर मेरी ओट में हर का तान हर मेरा सखा मन माहे दीवान हर मेरी पूंजी मेरा हर वे साहो गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो गुर कृपा से ए मत आवे जन नानक हर के अंक समावे आसा मैला पंजवा प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई सतगुर सेव सब फल पाई मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ चरण कमल रिद अंतर धारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सह सुवाए आसा मेला पंजवा कर कृपा हर प्रगति आया मिल सतगुर तन पूरा पाया ऐसा हर तन संचिय भाई कहे न जाने जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कत हो न जा रहा कोट न आवे निकुट न जाए खाए खर्च मन रहा अगाए सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना इस तन से सब जग वरसाना तिन हर तन पाया जिस खूब लिखे का लेना जन नानक अंतवार नाम गहना आसा मेला पंजवा जैसे किसान बोवे किसानी काची पाकी बाढ़ परानी जो जन में सो जानो मुआ गोविंद भगत अस्थिर है।

कर में वस्त बाहर उठ जाता सुनी न जाई सच अमृत का था वार करत चूठी लग जाता रहा वजो साहिब का सेव बिरानी कैसे गुने अच्छा दियो प्राणी तिस्यो लूक जो सद ही संगी कामना आवे सो फिर मंगी कहो नानक प्रभु दीन दयाला ज्यो पावे त्यों कर प्रतपाला आसा मेला संजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम बिन हर नाम अवर सब छोरा त्रित अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत पंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल सो लागो मान सतगुर तू ठै कीनो दान नानक को गुरु दीक्षा दीन प्रभ अविनाशी कट कट चीन आसा महला पंजवा अनद विनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप संवारिया।

साध संगत निर्बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पन्यवा बुद्ध प्रगास कई मत पूरी तांते बिन सी दुर्मत दूरी ऐसी दुर्मत पाई ने बूढ़त कोर अंधकूप में निक्षो मेरे पाई रे राव महा अगा अगन का सागर गुरबोहित सारे रत्नागर दुत्तर अंध बिखम ए माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जात पाप कछ उक्त न मोरी गुरु नानक शरणागत तोरी आसा मेला पन्यवा तिप दे दूजा हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन में लह जाता हर रस के माते मन सदा आनंद

जाए, हर साधु हर समाए, लाख करोड़ी मिले न के, जिसे प्राप्त तिस ही दे, नानक चाक पहे बिस्माद, नानक गुरते आया साद, ईत ऊत कछ छोड़ न जाए, नानक गीदा हर रसमाहे, आसा मेला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटके दुर्मत अपनी धारी, होए

आज्ञा मान भगत हुए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा महला पंजवां दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौद संगत भज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तप संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा, शरण करे।

उठत सोवत जागत विसरना ही तू सास गिरा साराओ राख राख शरण प्रभ अपनी अगन सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुर हम तुमरे बाल गोपाला आसा मैला पन्यवा हर जन लीने प्रभु छड़ाए प्रीतम सो मेरो मन मान्या पाप मुआबिक खाए प्रभाव पाला ताओ कछु न व्यापे राम नाम गुण गाए बाकी को चित कछु न लागे चरण कमल शरणाए संत प्रसाद पै कृपाला होए आप समाए गुण निधान नित गावे नानक सह

मेरे संग पयो मन निर्मल गुरपुरे लेखिन में तारे रहाओ सबकी रेन होए रहे मनुआ सगले दिशे मीत प्यारे फल मदे रविया मेरा ठाकुर दान देत सब जी समारे एको एक आप एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जन एक नाम त्याए बहुत उधारे गैर गंभीर बेअंत गुसाई अंत नहीं किस पारावारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याय त्याय प्रभु को नमस्कारे आसा मेला पन्नवा तू बेअंत अविगत अगोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करे चतुराई जा सब किछ तुझे मझार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार।

करे सास सास समारे न पूरे अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी हृदय अंतर।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूप वंत जो आनी बहुत दर्भ हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत।

कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे सत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुर मिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा महला पंजवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद प्रम में सोई सगल जगत कंद अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रेह प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सुख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करे करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नानक।

खूब किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत हूँ नाही खसमे एवे पाना, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख मांगा। संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई। आसा मेला पंजवा बार तोए अंक।

कहां छुपाया, कूड़ कपट बंश निमुनिया दाला, बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले आसा मैला पन्नवा। उदम करत हो गए मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जना ले वसगत राखे मन में एक अंकारे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु अनहद शब्द बजावे, रहाओ प्रथमे मन पर बोधे अपना पाछे अवर रिझावे, राम नाम जप हृदय जापे मुक्ति सगल सुनावे, कर संग साधु चरण पखारे संत तूर तन लावे, मन तन अर्थ करे गुर आगे सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पे खेलाए सरदा ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी नृत्य नरक निवारे नानक गुरु मुख जागे आसा मैला पंजवा।

आई रे आज के बस गुर कीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज फूनिया छपरा थामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा अचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चूपी निर्नो पाया रे माल गुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया रे।

मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पई थियो सुख निधान नाम प्रभ तुमरा एहो अविनाशी मंत्र लियो कर कृपा मुझ सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो तन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मेल लियो तन सो कल युग साध संकी

नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा पासा मेला पंजवा। कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साध संग हर पाये, खोल किवार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म ना आये। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हरोरे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ताके संग तरोरे। राव महा उद्यान पावक सागर भय, हरख सोग में बसना, सतगुर पेट पया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना। तन तन थाप कियो सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पय जन मुक्ते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राखनहार, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब कुमरा दाते, नानक सब कुर्बाने। आसा महला पंजवा, मुह मलन नींद के छुटकी, कौन अनग्रो पयोरी, मां मोनी तुद ना व्यापे, तेरा आलस कहां गयोरी। राव काम क्रोध अहंकार गाखरो, संजम कौन छुट्योरी, सुर नर देव असुर त्रै घनिया, सगलो पवन लुट्योरी। दावा अग्न बहुत तृण जाले, कोई हरिया बूट रहोरी, ऐसो समरथ वरण न साको, ताकि उपमा जात न कहोरी। काजर कोट में पई न कारी, निर्मल बरन बन्योरी, महामंत्र गुर हृदय बस्यो, अचरज नाम सुन्योरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन, अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक।

हर रस बिन सब स्वाद फिक्रिया, माया चलिया बिकार बिखलिया, शरण नानक प्रभु पुरख दयालिया, आसा मेला पंजवा, एक बगीचा पेड़ कन करिया, अमृत नाम कहा मैं फलिया, ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाये पद निर्वाणी, आस पास दिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाओ, सिंचन हारे एक है माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफल नाकाई, अमृत फल नाम जिन गुरते पाया, नानक दास तरी तिन

जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण, जाको मिलियो नाम निधाना, पंत नानक का पूर खजाना, आसा मैला पन्नवा। तीर्थ जाओ ता हो करते, पंडित पूछो ता माया राते, सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता, रहाओ शास्त्र वेद पाप पुन विचार, नरक स्वर्ग फिर अवतार।

नानक नित इवै त्याई गत होवै संतै लग पाई आसा मैला पंजवा उठत बैठत सोवत त्याई मार्ग चलत हरे हर गाये श्रवण सुनी जय अमृत कथा जास सुनी मन होए आनंदा दुख रोग सगले मन लखा राव कारज काम बाट काट जपी जय गुर प्रसाद हर अमृत पी जय दिन सरैन हर कीर्तन गाय सो जम जम की वाट न पाये आठ पैर जिस विसरे नाही गत होवे नानक तिस लग पाए आसा मैला पंजवा जा कै सिमरन सुख निवास पई कल्याण दुख होवत नास अनद करो प्रभ के गुण गावो सतगुर अपना सब सदा मनावो रहाओ सतगुर का सत शब्द कमावो फिर कर बैठे प्रभ अपना पावो पर का बुरा न राखो चीत तुमको दुख नहीं पाई मीत हर हर तंत मंत गुर दीना इन सुख नानक अनदिन चीना आसा मेला पंजवा जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत ओ चौकुंत माने।

सगल सृष्ट पुआ के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू ना आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, अब प्रभु नानक नीचे लागे, आसा मेला पन्यवा, एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम समारो, राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रताप साध के संगे, हर हर नाम ते आवो रे रहाओ, सगल समग्री जाके सूत करोई, कट कट अंतर रव्या सोई, ओ कट पर लो खिन में करता, आप अलेपा निर्गुण रहता, कर्म करावन अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी, आसा मेला पन्यवा, कोट जन्म के रहे पवारे, दुर्लभ देह जीती नहीं हारे, किलबिक बिना से दुख दर्द दूर, पय पुनीत संतन की तूर रहाओ, प्रभु के संत उदाहरण जोग, इस पेटे जिस पुर संजोग, मन आनंद मंत्र गुर दिया, कृष्ण बुझी मन ने चल किया, नाम पदार्थ नौ निज सिद्ध, नानक गुरते पाई बुद्ध, आसा मेला पन्यवा, मिटी त्यास अज्ञान अंधेरे, साध सेवा अग कटे कनेरे, सुख सहज आनंद घना, गुर सेवा ते पय मन निर्मल, हर हर हर हर नाम सुना रहाओ, बिन सो मन का मूर्ख टीठा, प्रभ का पावना लागा मीठा, गुर पूरे के चरण गए, कोट जन्म के पाप लहे, रतन जन्म इव सफल भया, कहु नानक प्रभ करी।

तारे जाग रे मन जागन हारे बिन हर अवर नाव सकामा झूठा मो मिथ्या पसारे राव गुर की बाणी स्यो रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए गुर बिन दूजा नाही थाओ गुर दाता गुर देवे नाओ गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप आठ पैर नानक गुर जाप आसा मेला पंजवा आपे पेड़ विस्थारी साथ अपनी खेती आपे राख जत कत पे खोए कै ओही कट कट अंतर आप।

रहा हो। मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी नाम तेरे की आस मन धारी। जप तप संयम कर्म न सादा नाम प्रभु का मने अरादा। किछु न जाना मत मेरी थोरी बिनवत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवा हर हर अखर दोए माला जपत जपत पै दीन।

पुत कते न डोले कहु नानक जो राचे नाए हर माला ताके संग जाए आसा महला पंजवा जिसका सब किछ तिसका होए तिस जन लेप न व्यापे कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन के अत निर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहा व्यापे माया नाम निधान जाके मन माहे तिसको चिंता सुखने नाहे कहो नानक गुरु पूरा पाया परम मोह सगल बिन साया।

मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सतगुर मंता, सोई सत सत है सोए, सिमर सिमर रख कंठ करोए, कहो नानक तो।

जागत भगत सिमरत हर राते रहाओ मोह परम बहु जोन को आया अस्थिर भगत हर चरण से आया बंधन अंग कूप गृह मेरा मुक्ते संत बुझे हर नेरा कहु नानक जो प्रभु शरण आये इहां सुख आगे गत पाए आसा मेला पंजवा तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे।

मेरी गत तक तू परवान, तू समरथ मैं तेरा तान, अन दिन जपो नाम गुण खास, नानक की प्रभु पै अरदास, आसा मैला तन्यवा। रोवन हारे झूठ कमाना, हस हस सोग करत दे गाना, को मुआ का कह कर गावन, को रोवे को हस हस पावन, रहाओ बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुँचना मुका फिर पछताना, त्रयो गुण में वर्ते संसारा, नरक सुरग फिर अवतारा, कहो नानक जो लाया नाम, सफल जन

तूफान निसारे हो, खिसर गयो फूम पर डारे हो, साध मोए लादी अंकारे, दोष नाही प्रभ करने हारे, साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिरजन हारे, आशा मेला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे, जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवे तेरी माया, सिमरत नाम सगल रोग खया, रहाओ अनेक दुख देवे अवरा को, पहुँच न साके जन तेरे को, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जाए, केवल नाम हृदय में दी जाए, आशा मेला पंजवा, मन तृप्ता नो मिटे जंजाल, प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद पली बनी, जाके गृह सब किछ है, पूरन सो पेटिया निरपैतनी रहाओ, नाम दृढ़ाया साध कृपाल, मिट

को जन पूरन रहे अघाई, कछु न कोरा हर पगतन को, खात खर्चत बिलछत देवन को, रहाओ जाका तनी अगम गुसाई।

जा को दया करो मेरे स्वामी, कहो नानक नाही तिन कामी। आशा मैला पंजवा, जो मैं अपना सतगुरु त्याया, तब मेरे मन महा सुख पाया, मिट गई गणित बिना।

उनके संग तू रखी पलोल, उस बिना तू छुटकी रोल। उनके संग तेरा मान महत, उनके संग तुम साख जगत।

कमाए, जोड़ बिछोड़े नानक थाप, अपनी कुदरत जाने आप। आसा महला पंजवा, ना ओ मरता।

ता हमको तृष्णा जा ओ निर्मल ता हम जतना हम किछ नाही एक ओही आगे पाछे को सोई नानक गुरु खोए परम पंगा हम ओए मिल होए इकरंगा आसा महला पंजवा अनेक पांच कर सेवा करिए जियो प्राण तन आगे करिए पानी पखा करो तज अभिमान अनेक बार जाइए कुर्बान सारी सुहागण जो प्रभु पाई तिसके संग मिलो मेरी माई रहाओ दासन दासी की पनिहार उनकी रेण बसे जी नाल माथे पाग तब पावो संग मिले स्वामी अपने रंग जाप ताप देवो सब ने मां कर्म कर्म अर्पो सब हो मां गर्भ मोह तज हो रेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आरा दो दिन सरेन ए सेवा सादो करे कृपाल गुप्त।

पाई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो वजी वधाई रहाओ। ऐसी सुंदर मन को मोह है बाट काट गृह बन

अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया। आखा मेला पंजवा, आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संकन

प्रत पाले प्रभ आप कट कट सारी है, जिस मन उठा आप किस ना विसारी है, जो किस करे सो आप आपन पाणिया, भगता का सहाय जुग जुग जानिया, जप जप हर का नाम कदे न चूरी है, नानक दर्श किया।

जन्म मरण दुख लाथे, रहाओ दूजा पासा मेला पंजवा। निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मोत रंग माने फिर बहुर बहुर पछतावे। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया, रहाओ पलक दृष्ट देख फूलो आ।

प्रीतम प्रत्येखन का चाओ। दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन तन तेरा तू प्रभु मेरा हमरे बस किछ नाहे। ज्यों ज्यों राखे त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विकसाते मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम को नाफे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक पाग। आप कृपाल कृपा प्रभु तारी सतगुरु बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरुदेव मल मूत मूड जे मुग्ध होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब सृष्ट धरता सब मेरे आसमाए। परम राजा विस्माद हुआ सब पई पैरी आए। सत युग त्रेता द्वापर कणी है कल युग उत्तमो जुगा माहे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए कोई न पकड़िए किसे।

सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पुनीत संगारे, जन्म पवनते नरक पड़नते तिनके कुल उधारे। कोई न जाने कोई न माने से प्रगट हर द्वारे।

मोह कुटुंब बिखे रसमासे मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे कर कृपा राखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा तिप दे ओहा प्रेम पिरी रहाओ कनक माणिक गज मोतियन।

चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाहि नानक तप्त हरि मिले प्रेम प्रिय आशा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए ना रहाओ ईते ऊते कट कट कट कट तू ही मोहिना कारण करना कारण करना एक है सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोएना आशा मेला पंजवा हर हर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाए ओ अगे अतोला प्रीतम पाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा मेला पंजवा अपनी भगत निवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ हुए सका।

गुण रस रस गावे। एक आशा दर्श प्यासा आन न पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे। आशा महला पंजवा। एक सिमर मन मानी रहाओ, नाम ते आवो हृदय बसावो, तिस बिन को नाही, प्रभ सरनी आये सर्व फल पाये, सगले दुख जाही, जीवन को दाता पुरख विदाता, नानक कट कट आही। आसा मेला पंजवा। हर बिसरत सो मुआ रहाओ, नाम ते आवे सर्व फल पावे, सो जन सुखिया हुआ, राज कहावे हो कर्म कमावे, बांध्यो नलनी प्रम सुआ, कहो नानक जिस सतगुरु पेटिया, सो जन ने चलतिया। आसा मेला पंजवा। कर चौथा

समाए प्रभ तुमरे दर्श बिन सुख नाही वर्त नेम संयम कर थाके नानक साध शरण प्रभ संग वसै आसा मैला पंजवा कर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद विकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही कर जावे लोभ बिखिया बिखे लागे हिरवित चित दुखाही खिन पंगुना के मान माते असुर जाने नाही रहाओ वेद शास्त्र जन पुकारे सुने नाही डोरा निप्त बाजी हार मुका पछतायो मन पोरा दान सगल गैर वजह परया दीवान लेखे ना परया जिह कारज रहे ओला सोए कामना करया ऐसो जग मोहे गुर दिखायो तो एक कीरत गाया मान तान तज

प्यास लागी, हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो, नानक दीन शरण आए गल लाए आसा मैला पंजवा। तो बिखम गार तो रह आस प्यास तो मोह, परम ही ते हो रह राव, काम क्रोध लोभ मान ए ब्याद छोरे, संत संग नाम रंग।

काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहाओ। तज मान मोह विकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभु गोपाल दीन दयाल पतित पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूरन भाग आसा मैला पंजवा हर्ष शोक बैराग आनंदी खेल री दिखायो रहाओ खिनहु पै निरपै खिनहु।

गोविंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कहया सोचित थर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी राओ, पंकज मोह सर हां, पग नहीं चले हर हां, गह दियो मूड नर हां।

मना रहाओ। टूटे अन परानहा, रवयो सर्व थानहा, लहो जम पयानहा, पायो पेड़ थानहा, तो चूकी सगल कान।

अर्थ अभेविये हां पासों प्रीत कर हां बिनस न जाए मर हां गुरते जान्या हां नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आज्ञा सत सहो हां मन है निधान लहो हां।

तिस निकट ना कदे दुख हा, जो हर हर जस सुने हा, सब को तिस मने हा, सफल सो आया हा, नानक प्रभ पाया मेरे मना, आसावरी मैला तन्यवा। मिल हर जस गाये हा, परम पद पाये हा, उआ रस जो विदे हा, ताको सगल सिदे हा, अन दिन जागया हा, नानक बड़ पा।

उजड़ पर मैं रहे न पाई, बिन बूझे को थाए न पाई, नाम बिहुने माथे छाई, साठ तनी जग आए बिनासा, छूटस प्राणी गुरमुख दासा रहाओ, जग मुहे बांधा बहुती आसा, गुरमति इक पे उदासा, अंतर नाम कमल पर गासा, तिनको नाही जम की त्रासा, जग त्रिय जित कामन हितकारी, पुत्र कलत्र लग नाम विसारी, वृथा जन्म गवाया बाजी हारी, सतगुरु सेवे करनी सारी, बारों हो मैं कह कहाए, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए।

नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो ना कहे आ जाई, अकथ कथो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सुख रजाई, सब दुख मेटे सा चैन आई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साथ सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, त्रिभुवन सूजे आप गवावे, बाणी बूजे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सवारण हारा, आसा मैला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन माने सच

जमन मरना हुकम पछाण राव माया मोह जग बांदा जम काले बांदा छूटे नाम समाले गुर सुख दाता अरना पाल हालत पलत निभी तुझ नाल सबद मरे ता एक लिवलाए अचर चरे ता कर्म चुकाए जीवन मुक्त मन नाम वसाए गुरमुख होए ता सच समाए जिन तरसा जी गगन आकाश जिन सब थापी थाप उथाप सर्व निरंतर आपे आप किसे न पूछे बख्शे आप।

जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर पेटे सब फिरे अंकारी। जग दुखिया सुखिया जन कोए, जग रोगी भोगी गुण रोए। जग उपजे बिन सह पत खोए, गुरमुख होवे बूझे सोए। मह गो मोल पार अपार अटल।

है जिस वेदन होए जिस बीती जाने प्रभ सोए आपे करता करे सोए जीवत मरना तारे तरना जय जगदीश परम गत सरना हों बलिहारी सतगुर चरणा गुर बोहित शब्द पै सरना निरपौ आप निरंतर ज्योत बिन नावे सूतक जग छोत दुर्मत बिन सह क्या कह रोत जन्म मुए बिन भगत सरोत मुए को सच रोवे मीत त्रै गुण रोवे नीता नीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सोपो कृष्ण प्रीत पीतर एक अनेक असंख कर्म तर्म बहु संख असंख दिन पै पगती जन्म बिरंथ हर गुण गावे मिल परमारंथ आप मरे मारे भी आप उपाय थाप उथाप श्रेष्ठ उपाय ज्योति तू जात शब्द विचार मिलन नहीं प्रात सूतक अगन पखे जग खाए सूतक जल थल सभी थाए नानक सूतक जन्म मरी जय गुरु प्रसाद।

कर शिव सहज कर गुर करतार आसा मनसा शब्द जलाए राम नारायण कहे कहाए गुर ते वाट महल कर पाए।

सांच अकूट पंच तीन नव चार समावे तरण जगन कल तार रहावे बाहर जातो उल्ट करावे मूर्ख हुए ना आखी सूजे जेवा रस नहीं कहया बूजे बिक्का माता जग से लूजे उत्तम संगत उत्तम होवे गुण को पावे अवगण तोवे।

पावे बालक बिरद न सुरत प्राण पर जो बन बूढ़े अभिमान बिन नावे क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज न जाना परम फुलाना फिर पछताना गल फाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर पागे सतगुरु राखे सेवड़ पागे।

गुरुमुख राम नाम कृपा से खोजत पावो सहज हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साच पछाणे अंतर की गत गुरुमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाणे। निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे। सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहाँ नाम मिले तह जाओ। गुर प्रसादी कर्म कमाओ नाम मेरा ताहर गुण गाओ। गुर सेवा से आप पछाता अमृत नाम बसे।

उठै सदा सुख आ गए। मन चंचल विद नाही जाने, मनमुख मैला शब्द ना पछाणे, गुरमुख निर्मल नाम बखाणे, हर जियो आ गए।

अवर्ण औषद संत न मंता, हर हर सिमरन किल विखानता। तू आप बुलावे नाम विसार, तू आपे राखे कृपा धार। रोग परम पेद मन दूजा, गुर बिन परम जपे जप दूजा। अमद पुरख गुर दर्शना देखे, विन गुर शब्दे जन्म के लेखे। देख अचरज रहे विस्माद, कट कट सुर नर सह समाद। पर पुर पार रहे मन माही, तुम संसार अवर को नाही। जाकी भगत हेत मुख नाम, संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहज ध्यान, छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान। ना जम दूत दुख तिस लागे, जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त पए हर रंग। आसा महला पहला इक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने। दुख मिटे सच शब्द पछाने, राम जपो मेरी सखी सखैनी। सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी राव। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अरनार। बंधन कर्म तर्म हो किया, बंधन पुत कल

बंधन सा संचय तन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन वेद बाद अंकार, बंधन बिन सह मो विकार। नानक राम नाम शरणाई, सतगुरु राखे बंद ना पाए।

तिन गल सिलका पाया तुतन मोत्सरिया तन जोबन दोय वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूता नो फुरमाया ले चले पत गवाए जे तिस पावे दे।

कहां सो तेग बंद गाडे रड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे जिसे नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई, एक कड़ी में थाप उठापे, जर वंड देवे पाई, राव, कहां सो कारगर मंडप महला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान संगोली हरमा।

राह में तेग वगाई, ओमी तुपक तावन चलाई, ओमी हस्त चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगे पाटी तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अगर तुरकानी, पटियाणी ठकुरानी, एक ना पेरण सिर

कोई पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई ओही ओही क्या करो है होसी सोई तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई तंदा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो।

अंतर पंडित पौंदे जोयसी नित पड़े पुराना अंतर वस्त न जाननी कट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न चीने तामसी काहे पै उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द न छूट ही तम आवे जावे एक गिरही सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे गुरते दर कर जानिए।

दर्शन दीजै, गुरमुख नाम त्याइए, मन मंदर पीजै रहाओ, कूड़ा लालच छोड़िए, तो साच पछाणे, गुर के शब्द समाइए, परमार्थ जाने, यो मन राजा लोभिया, लुभ तो लोभाई, गुरमुख लोभ निवारिए, हर्षो बनियाई, कल्लर खेती बीजिए, क्यों लाहा पावे, मन मुख सच ना पी जई, कूड़ कूड़ गडावे, लालच छोड़ो अंधे हो, लालच दुख पारी, साचो साहिब मन वसे हो मैं बिकमारी, दुबदा छोड़ कुआटड़ी मूसोगे पाई, एनस नाम सलाहिए सतगुरु शरणाई, मन मुख पत्थर सैल

हुक्मे ही सिर मार बंदर वाणी है, लाहा सच में आओ मन वसाई है, लिखिया पल्ले पाए गर्व मंजाई है, मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है, साहिब हृदय वसाए ना पछोता वही, गुनहा बख्शन हार शब्द कमावही, नानक मंगे सच गुरमुख काली है, मैं तुझ बिन अवरना कोई नजर निहाली है, आसा मेला पहला, क्या जंगल टूटी जाए मैं कर बन हरियावला, सच टिके कर आए शब्द उतावला, जह देखा तह सोए अवर न जानी है, गुर की कार कमाए महल पछाणी है, रहाओ आप मिलावे सच तामन पावे।

नाले गुरमुख वस्त पछाणिए अपना कर पाले जम्मन मरना आखी है तिन करते किया आप गवाया मर रहे फिर मरना किया साई कार कमावनी तुर्की फुरमाई जे मन सतगुरु दे मिले किन कीमत पाई रत्ना पारक सोतनी तिन कीमत पाई नानक साहिब मन वसै।

खबर नहीं पाई, कृपा ते सुख पाया साचे परखाई, गुरबिन किने न पायो केती कह कहाए, अलप दिखावे वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए, मन मुख जे समझाइए पी उजड़ जाए, बिन हर नाम न छूट सी मर नरक समाए, जन्म मरे परमाई।

जिस पाप कर आए नानक सिर दे छूटी है दरगे पत पाए आसा मेला पहला रूड़ो ठाकुर मारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे पाक सतगुर मिले पाई पद निर्वाणी मैं ओ लगिया ओ

आप गया सोजी पई गुर सब्दी मेला रहाओ। हौ मैं गर्भ गवाये पाये विचार, साहिब स्यों मन मानिया दे साच आधार। एन इस नाम संतो किया सेवा सच्चाई, ताको विघ्न न ला।

नित नित खरा संभालिए, सच सौदा पाइए, खोटे नजर न आवनी ले अग्न जलाइए। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है फल अमृत होई। अमृत फल जिन चाखिया सच रहे अगाई, जिन्ना परम न भेद है हर रसन रसाई। हुक्म संजोगी आया चल सदार जाई, औगुण यारे को गुण नानक है सच मिले वडाई। आसा मेला पहला मन रातो हर नाए, सच वखाणिया लोकां दा क्या जाए जा तुद पाणिया। जो लग जियो प्राण सच दियाईए, लाहा हर गुण गाए मिले सुख पाईए। रहाओ सच्ची तेरी कार दे दयाल तू, हौ जीवा तुझ सलाहे।

दर सेवक दरवान दर्द तू जान ही, भगत तेरी हैरान दर्द गवावही, दर गए नाम हदूर गुरमुख जान सी, वेला सच परवान शब्द पहचान सी, सत संतोख।

दास तुम्हारे हृदय सिद्ध प्राण आधारी ताके रूप न जाही लखने क्या कर आस विचारे तीन गुणा तेरे जुगी अंतर चारे तेरिया खाने कर्म होवे ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब चेहरा क्या को करे प्राणे जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाने नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आवन जाने जा तुद पावे ता गुरमुख बूझे होर।

तेरा किया सब साचा, देता साच वखाणी, जा को सच बुझावे अपना सहजे नाम समाणी। आसा मेरा तीजा सतगुरु हमरा परम गवाया, हर नाम निरंजन मन वसाया, शब्द कीन सदा सुख पाया।

गुर सेवा से सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवट पागी जे गुर सेवा लाए, हम दिन पद सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

कर कृपा नाम मनवसाए, एहो सिर दीजे आप दवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चा शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलानी, बिन नामे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख समाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंधन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरु।

जान सोई, कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी, नानक बिन सतगुर वस ना आवनी, नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा। करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही, गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही, सतगुर ते हर पाई है पाई, अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई। रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडा।

नानक नाम से आए तू दर सच्चे तोबा पाई। आता मेला तीजा आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई, हर रस चाखे मुक्त भये जिना साचो भाई, हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ये बिखिया माए उदासा रहा, बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई, नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा, नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई, नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई, बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई, नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई, जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किछ नाम है।

बोले नानिवे दूजा पाव सुहाओ यो मनुआ क्यों कर वसावे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर के प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागनी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागनी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंतर

हाँ हाँ कर दी सब फिरे बिन सब दे हो न जाए, नानक नाम रते तिन हो मैं गई सच्चे रहे समाए। आसा मैला तीजा सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए। ए मन रूड़े रंगुले तू

अपार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कै पै पाए जो रते सिफती सत समाओ पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

सच सुवाए, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी ते तिसे न जाननी बिन नावे सब चोर। एक गुण विहाजे अवगुण विकणे, गुर के सह सुवाए, गुर सेवा से ना पाया बुठा अंदर आए। सबना का दाता एक है सिर तंदे लाए, नानक नामे लाए सवारियन सब दे ले मिलाए। आसा मेला तीजा सब नामे नो लोच दी, जिस कृपा करे सो पाए। बिन नामे सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए, तू बेअंत दयाल है।

मेल लह एक दरगह मार कडे कूड़ियार एक तुर पवित पावन है तुझ नामे लाए गुर सेवा ते सुख उपजे सच्चे शब्द बुझाए एक कुचल कुचील।

भक्ति सार ना जाननी मनमुख अहंकारी, तुरु आखो आयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत ना हो वही, ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन रस में पोलाया बिन नामे दुख पाए, सतगुर पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साद पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अंदिन सदा जल्दी।

सस्य सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देवे बीरा तो पड़या रहाओ ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई एना अखरा में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख न होई उड़े उपमाता की जय जाका अंत न पा

गोविंद गर्भ पया कर पांडे जिन आवी साजी चारण वाह तही किया कग्गे काल सेवक जे काले शब्द गुरु के लाग रहे बुरा पला जे समकर जाने इन विद साहिब रमत।

टट्टे तंच करो क्या प्राणी, कड़ी के मोहत के उठ चलना, जुए जन्म ना हारो अपना, पाज पड़ो तुम हर सरना, ठट्ठे ठांड वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डड्डे डंफ करो क्या प्राणी, जो किछ होआ सो सब चलना, तिसे सिरेवो ता सुख पावो, सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम

कंतना कब हूं मैं मिलिया। पप्पै पाप साव परमेश्वर वेखण को परपंच किया। देखे बूझे सब किछ जाने अंतर बाहर रव रया। फफे पाही सब जग पासा जम के संगल।

साई पुत्री जजमान की सा तेरी एत तान खा दे तेरा जन्म गया मम्मे मत हिर लई तेरी मूड़े हों मैं वड्डा रोग पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कक्के काम क्रोध परम्यो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुणे तू बहुत पुकारे।

तन पिरह मेला होए स्वामी, आप प्रभ कृपा करे, सेजा सुहावी संग पिरके, सात सर अमृत भरे, कर दया मया दयाल साचे, शब्द मिल गुण गावो, नानका हर वर देख बिगसी, मुंद मन उमाहो, मुंद सहज सलो नड़िए, एक प्रेम बिनंती राम, मैं मन तन हर भावे, प्रभ संगम राती राम, प्रभ प्रेम राती हर बिनंती, नाम हर कै सुख वसै, तो गुण पछाणे ता

जब तप कर कर संयम था की हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन सतगुरु बूझ बुझाइए।

सच साहिबो आद पुरख अपरम करो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछाने।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम, अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम। अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे प्यारो, आवन जावन ठाक रहा है गुरमुख तत् विचारो। साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वड्याई, नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई। सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम, मन तन रव रहा जग

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेर ना आवे जमन मरण तिना काचू का जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया तिन

हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे। एनस नाम तिसे का लीजे, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम पुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी औगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया, हर जियो मेल प्यारे राम। सा तन हर

गुरमुख हुकम पछाणे, जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी आम दिन हर लिव लावे। जै जै मन तू तावदा तै तै हर तेरे नाले, मन स्याणप छोड़िए।

क्यों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गारब अटिया गारब लद्या जाए माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाए गारब लागा जाए मुगद मन।

हर नामो हर नाम देवे मेरे प्राण वसाए राम। हर हर नाम मेरे प्राण वसाए सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर।

नानक मन तन अर्प गुर आ गए जिस प्राप्त सो पाए। रतना रतन पदार्थ बहु सागर परे आराम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा, हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप ना रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरमत राम पर गाता, नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम विसारिया से मन मुख मूर अपागी राम, तिन अंतरे मोह व्यापे खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूर पै अपागी जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करें अभिमानी हर रामो नाम चुराया, महा बिकम जम पंथ दुहेला कालू खत मोह अंधियारा, नानक गुरु।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होवा जित राम नाम पर गा।

हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख बिनासन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो, गुरुमुख हर पढ़िए गुरुमुख हर सुनिए, हर जपत सुनत दुख।

लिख पाए जियो। हर नाम पदार्थ कलयुग उत्तम, हर जपिए सतगुर पाए जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। हर प्रीत लगाई हर नाम सिखाई, प्रमचू का आमन जान जियो।

किन विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर से आया सुर पाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन प्रधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर सबदी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग वड पागी हर रस पाया, से तन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगे।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जग मरण ना पाया नित आप लुकाया, मत जम पकड़े ले जाए जियो, हर अंतर बाहर हर प्रभ एको, इहो जियड़ा रखिया ना जाए जियो, क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय, जिसकी वस्त सो ले जाए जियो, मन मुख करण

जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पे दे जान जियो हर दरगे पे दे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया हर जन प्रभ रल एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो।

सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जाजी आपे मांजी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आपे तारन तारे कहो नानक सौ कर में बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौन दे मेरे कर में आई राम सब किच मैं सब किच पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गलत मिटाई चूकी ताई कदे न व्याते मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अत्रज शोक बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिध पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा में गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सांत मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता आता महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड पागी सत्संगत पाई राम वड पागी पाए नाम ते आए लाखे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया पै कर कृपा मेले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता कट कट रग रहा सब थाई पूरन पुरख विदाता गुरपुरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी रात कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ वड पागी पावा राम हर तूड़ी नाई है मैल गवाई है जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बौड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर शरण करिए अपने प्रभु भावा आसा संत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आम ना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे जीठा राम राजे हर कट कटे जीठा अमृत तो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा ज्यों राती जल माछली त्यों राम रस माते

लाए हर रत्न पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ ना कथो जाए। प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संगराती माछली नानक हर माते। चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे। सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानी है हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंग मानी है। प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे। ताथी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला। सुख सहज आनंद कनेरे पति पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा। आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक। जा को पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह पेटक साथ संगात। संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आच नहीं मन ऐसी प्रीत हरे। अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे तरे। खिन नाहे तरी है प्रीत हरी है सिगार हगरस अर्पी है। जह दुख सुनिए जम पंथ पणिए तह साध संग ना डरती है। कर कीरत गोविंद गुणिए सगल प्राचत दुख हरे। कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे। जैसी मछली नीर इक खिन भी ना जीरे मन ऐसा निहो करे हो। जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो। हर प्रीत करी जय इह मन दी जय अपलाई है चित मुरारी। मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी। गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा। कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो। चकवी सूसने हो चित वे आस पणी कर दिनियर देखिए। कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए। हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुणिया। अज क्या रंग लायो मोह रचायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़िए चरणी अब टूटस मोह जो किती है। कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरुण पतार उर्जी तिर शिव यो मन लाल दी जय। मन लाल दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा अवर न दिसे। कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय ऐसी मन प्रीत की जय। आसा महला पंजवा श्लोक। बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे। छंत जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटाकार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जा को सेवे
लक्ष्मी अनकपाक गुप्त प्रगट जाको अराधे पौन पानी दिन सुरात नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बसद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत पुराण चतुर्वेद खस शास्त्र जाको जपात पतित पावन भगत वछल नानक मिलिए संग साथ जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवा तेती न जाय गनी अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी तिहो दान मान नानक पाए शीश सादे तर चरनी ऐसा मेला तन्यवा श्लोक उद्यम करो वड पागियो।

नानक जिस सिमरत सब सुख होवे, दुख दर्द परम जाए। संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए, पेट साधु संग जमपुर ने जाइए। दुख दर्द ना कहो व्यापे, नाम सिमरत सब सुखी, सास सास आराद हर हर त्याए, सो प्रभु मनमुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध, कर दया सेवा लाइए। नानक प्रेम पे चरण जम पे, नाम जपत गोविंद ने अलसाइए। पावन पतित पुनीत नाम निरंजना, परम अंधेर बिना

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोय आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरन हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नान पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत अराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नान स्वयं पै चरण जम पै भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया आसा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जहाँ कह गए हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूरन सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरबचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा को राम पतार का कैमद घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु वचन जाने जाको राम पतार का अंग घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप से आगी है तब आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु वचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूरन आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु वचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर

संत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहुना पावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समरथ अगत अबार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सट कठोर कुलहीन व्यापक मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप तावे खिसै जोबन बलै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रमारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारी उधारे पगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पावन बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा पुरुष पते भगवान ताकी शरण गही निपो पे प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंधक जानिया गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाय आप भये राम नाम उरहार बिक के दिवस गए गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय नानक नाम ते आए पूरन साध संग पाई परम गते जय देखो तय संग एको रव रहा पट पट वासी आप विरले किने लया जल कल मैयल पूर पूरन कीट हस्त समान्या आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रहा दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पातरे दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन चुपुन्नी कुल संभुआ सब तरे दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा मैला पंजवा संत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत चंत पिन्नी रैनड़िये चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही इक्खिनो तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे बिन हंस नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चार मंगल रस भरे अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया बिन हंस नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी रस प्रेम परी कछ बोल न जाने गुण गुड़ गुपत अपार करते निगम अंत न पावे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पाने बिन हंस नानक रंग राती
प्रेम सहज समाने। सुख सोए लड़े हर गावन लागे, साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे। सुख सहज सरसे हर नाम रहसे, प्रभ आप कृपा सारिया। हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिन से आए सहज पाए, सगल निध प्रभ पागे। बिनवंत नानक शरण स्वामी, सदा हर जन पागे। आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया, तैं क्या चिर लाया। मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया। करें पाप अमित्या, तन पसंद तेरी जमे हेरी। काल बकड़े जितया,

मैं अंत जाई पाया, बिन वंश नाम सुख सहज मेला, प्रभु आप बनाया नरक ना दिखड़िया। सिमरत नारायण जय जय धर्म करे दूत पहे पलायन, परम तीरज सह सुखिए साथ संगत हर पजे, पर अनुग्रह राख ली ने मोह ममता सब सजे, गय कंठ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिन वंश नाम सिमर स्वामी सगल आस पुजायण। निज सिद्ध चरण गहे ताके हाकारा, सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा, गह पुजाली ने नाम दीने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापे अम्यो हर रस्ता क्या, साध संगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखारा, बिन वंश नाम सर्व स्वामी बहुर जमना उपारा। आशा महला कन्या दिन रात कमायो सो आयो माथे, जिस पास लुकाएंदड़ो सो वेखी साथ है, संग देखे करण हारा काय पाप समाय है, सुकृत की जय नाम ली जय नरक मूल न जाये, आप पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पज साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते, बल वंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा, दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है, मेरे साथ संगे पद निसंगे कुल समूह तारी है, सिर साधिक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजी है प्रभ एक करने हारा, खोट न की चई प्रभ पर खिनहारा, पूर्ण कपट कमाऊ गड़े जन्म है संसारा, संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक से आया, तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ सुनाई आया, जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा, बिन वंश नानक टेक जन की चरण कमल आधारा, पेट हर संगौरड़ी अब फिर किछ नाही, माया रंग जेते से संग न जाही, हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए, हर एक बिन कछ अवर नाही पाव दुतिया जालिए, मीत जोबन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही, बिन वंश नानक वड पाग पाई है सुख सहज समाही। आशा महला पंजवा छंक पर अठवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। कमला परम पीत कमला परम पीत हे तीक्षण मद विपरीत, हे अवध अकाल जात गैबर बन कोर गैबर बन कोर, हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खात, दिन खात जात बिहात सब बिन मिलो प्रभ करना पते, जन्म मरण अनेक बीते प्रे संग बिन कछ नह गते, कुल रूप तूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कौन मात, पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात, मीना जल हीन मीना जल हीन हे ओह बिछरत मन तन खीन, हे कत जीवन प्रिय बिन होत सनमुख सहबान सनमुख सहबान, हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत, प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना, पलका ना लागे प्रे प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना, श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत, कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत, अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात, हे प्रीत कमल बंदावत आप चात्रिक चित प्यास चात्रिक चित प्यास, हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल्पीवत बिन सतताप, ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन सन अतकना, सुंदर चतुर सुजान स्वामी कवन रसना गुणपना, गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप, नानक जम पै पतित पावन हर दर्श पे सतमें।

सुंदरतम ध्यान सुंदरतम ध्यान हे मन लुबद गोपाल ज्ञान हे जाचक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पूजंतिया हर कंठ लागे दिन सुबागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन रंग नानक मेरी आस पूरन।

0: सूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वासलोकानाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यश राजा की तुनी श्लोक महला पहला
1: बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूर चढ़े हजार इते चानन होंदिया गुरु बिन को रंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबुआर ज्यो सुने अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिया फुलिया बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन जिठो चाहो दाता करता तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सत्यायन सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतने आओ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कार न कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दू जाए एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्मे करे विनाश इकना पाने कढ़ लए इकना माया विच निवास ए पे आख न जाते जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानिए जा को आख करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओ कह सच्चे ही सच

चुन वक्कडे जिज मालिया थाव ना पायन कूड़ियार मौका ले दो जुक चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिख नामे करम बालिया। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद तोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत